सुप्रभात, ये आकाशवाणी है और आप सुन रही हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की तिथि 11, तदनुसार 2 सितंबर वर्ष 2026। प्रातः के 5:58 और 25 सेकंड हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज के कार्यक्रमों का प्रसारण आरंभ होता है। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। प्रातः के 6 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक सहायता, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण के मापने योग्य सुधार हो सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकियों को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कल केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में चिन्हित 100 जिलों में योजना में तेजी लाने, योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करने और किसानों के लिए जिला स्तरीय प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से अगले महीने 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। नई भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी पर अंकुश लगाना, चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों में स्थिरता लाना है। नई समय सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यापारी चीनी के भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक नहीं रख सकता और देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता। सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया जा रहा है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हित के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत बेल्जियम के बीच आपसी साझेदारी को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण अवसर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 6:05 हुए हैं। समय है भक्ति रचनाओं के कार्यक्रम वंदनवार का। इस कार्यक्रम के लिए आइए चलते हैं विविध भारती मुंबई।

लीजिए सुनिए चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है, दुनिया एक महान व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जब तक आप खुद अनुभव नहीं करते तब तक आप कुछ नहीं सीख सकते। आप सुन रहे थे चिंतन, अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाएं।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय,
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:30 हुए हैं। झरोखा में प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण, लेखा जोखा आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का।

कार्यक्रम विवरण के तुरंत बाद 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। संगीत सरिता का समय रहेगा 6:45 का और आज की संगीत सरिता में आप सुनेंगे श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना का भाग दो। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुना करते हैं 7:00। 7:30 समय रहता है कार्यक्रम हम है राही प्यार के का।

8 बजे समय रहता है समाचार प्रभात का, यानी हिंदी में समाचारों का। त्रिवेणी कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:15 पर विविध भारती मुंबई से। 8:30 पर होगा नई फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। हमारा दैनिक कार्यक्रम आज का अखबार लेकर हाजिर होंगे सुबह 9:30 पर। सुबह 10 बजे और दोपहर 12 बजे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। आज 10:05 पर आप सुनेंगे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा हमारी थालियों से गायब होता पोषण। प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां आप सुनिएगे प्रातः 11 बजे। 11:15 पर होगा गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुरबहार। आज दिन है बुधवार और आज के दिन 11:30 पर आप सुना करते हैं स्वास्थ्य संबंधी हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम संजीवनी। 12:05 पर कार्यक्रम होता है यादों की महफिल और ये कार्यक्रम आप सुनते हैं विविध भारती मुंबई से। दिन में 1 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। प्रादेशिक समाचारों का समय होगा 1:05 पर हिंदी में और 1:10 पर पंजाबी में, जो कि हम अपने जालंधर केंद्र से रिले करेंगे।

सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दिन में 1:30 पर। 2 बजे कार्यक्रम होगा त्रिवेणी। हिंदी में समाचारों का समय 2:15 का रहेगा। 2:30 पर कार्यक्रम होगा सदाबहार नगमे। सखी सहेली कार्यक्रम आप सुना करते हैं दिन में 3 बजे। पिटारा खुलता है शाम 4 बजे और आज के पिटारा में आज के मेहमान के अंतर्गत आप सुनेंगे लेखिका ज्योति जैन से ममता सिंह की बातचीत। शाम 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। लम्हे कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 5:20 पर और एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। 5:30 पर सुनेगा एक और प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। शाम 6:10 पर होंगे प्रादेशिक हिंदी में समाचार और पंजाबी में प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा 6:20 का। 6:30 पर आनंद लीजिएगा कुछ पंजाबी गीतों का। शाम 7 बजे आप सुना करते हैं फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जयमाला। प्रादेशिक मुख्य समाचार सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। तो ये था आज का झरोखा और आइए अब आपको ले चलते हैं विविध भारती मुंबई श्री रामचरित मानस गान के लिए। 299

अरे मूर्ख, वाक विलासिता से अपने मन को बहला कर अपने कुल का सर्वनाश न कर। श्री राम के विरोधी की रक्षा ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी नहीं कर सकते। लक्ष्मण के पत्र में लिखा ये संदेश सुनकर रावण भयभीत हुआ, किंतु सभासदों को दिखाने के लिए मुस्कुराता हुआ बोला, पृथ्वी पर खड़ा ये तुच्छ तपस्वी आकाश पकड़ने की डींग मार रहा है। दूत शुक ने रावण को समझाने की भरसक चेष्टा की, श्री राम से वैर न करने की प्रार्थना की, ये भी विश्वास दिलाना चाहा कि उनका स्वभाव अत्यंत कोमल है, शरणागत पर वो कृपा करते हैं, वे आपके अपराध भी क्षमा कर देंगे। हे स्वामी, जनक नंदिनी उन्हें लौटा दीजिए, मेरी इतनी विनती मान लीजिए। शुक को इस अनुनय के लिए रावण ने लात मारी और अपशब्दों की बौछार के साथ उसे सभा से निकाल दिया। इधर 3 दिनों की अवधि बीत जाने पर भी जब समुद्र ने पार जाने देने की विनती नहीं मानी तो श्री राम को क्रोध हो आया। उन्होंने अग्निबाण संधान किया जिससे सागर के हृदय में भीषण ज्वाला धधक उठी। सागर ब्राह्मण का रूप धारण कर मस्तक झुकाए आ खड़ा हुआ।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कान। आज आपने सुना भाग 299।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: संगीत सरिता के सुधी श्रोताओं का स्वागत है। स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, ये जो हमारी श्रृंखला है इसकी ये दूसरी कड़ी है। शकुंतला जी, इस घराने की विशेषता क्या है? ये पिछली कड़ी में आप इसकी बात कर रही थी, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। और वो कौन सी बंदिश होगी जिसकी हम चर्चा करेंगे?
2: तोड़ी राग की बंदिश।
1: जी जी।
2: और वो तोड़ी राग का जो विलंबित ख्याल है,
1: हाँ जी,
2: और विलंबित ख्याल में एक एक स्वर पर आगे कैसे जाने का है, इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है
1: जी।
2: और दूसरा जो द्रुत चीज है ना,
1: हाँ जी,
2: उनकी भी चर्चा करते हुए किराना घराने का जो स्वर का और शब्द का भी महत्व
1: जी।
2: लंगर कांकरिये जिना मारो, यानी क्या है लंगर? यानी श्री कृष्ण। कांकरिये यानी पत्थर।
1: अच्छा।
2: पत्थर मत मारो, मोरे अंगवा लग जात। सुन पावे मोरे सासन न दिया, दौर दौर घर आए। सासू और ननदिया दोनों जो है वो मेरे पीछे पड़ेंगे।
1: हाँ,
2: क्योंकि
1: हाँ,
2: आप मेरे पीछे पड़े हो।
1: ओ,
2: जो अच्छा। गोपिका है श्री कृष्ण के बारे में बोलती है।
1: हाँ,
2: और सब अर्थ जो है उसकी बढ़त जो है
1: जी,
2: उसी हिसाब से किया हुआ है। और यही किराना घराने का जो परंपरा है
1: जी,
2: जो भाव, हाँ, शब्द, सुर, हाँ, हाँ, ताल, स्वर प्रधानता
1: जी,
2: ये सब लेकर हमें आगे जाना है। और उसमें मेंड गायकी और उसका जो छोटा छोटा मुरकी खटका, ये सब किराना गायकी का एक नजाकत ढंग है।
1: आज शुरुआत किस बंदिश से हो रही है?
2: शुरुआत तो मुझे जैसी की है वैसे ही मैं आपको बताती हूँ और थोड़ा गाके भी दिखाती हूँ। मियाँ की तोड़ी सुबह करते थे, शाम को राग यमन करते थे
1: जी।
2: सुबह सिर्फ उसके आलाप तान, और शाम को उसके पलटे, यमन के पलटे
1: जी,
2: ऐसा हमारा सिलसिला चालू था। मियाँ की तोड़ी मैं गाती थी। एक इंसिडेंट बोलती हूँ, हाँ, मैं किराना घराना का महत्व समझाने के लिए। मेरी गुरुजी डॉक्टर गंगूबाई हनगल, उनसे हम काजी कहते हैं।
1: अच्छा।
2: मैं रियाज करती थी, उनकी तालीम चालू थी। वो कभी सामने नहीं बैठती थी क्योंकि मैं डरती थी उनको बहुत, उनके सामने गाने के लिए। अंदर बैठ के गाना सुनती थी और मैं तोड़ी गा रही थी।
1: अच्छा।
2: और हो गया सा, सा प्रस्थापित हो गया, सा रे, बाद में एक एक स्वर गाने का ना हमारे स्वर, रे हो गया, ग हो गया। रे पर मैं सारे निसारे धनी रे धरे रे रे सानी धनी रे, ऐसे बहुत सारे वैरायटी करने के बाद मैं गई गंधार पर।
1: अच्छा।
2: गंधार पर जाते ही गंगूबाई जी बाहर आई।
1: अच्छा।
2: पूछने लगी क्या हुआ, रिखब लगा? रिखब नहीं लगा, और गंधार पर कैसे गई और क्यों गई? मुझे तब समझ भी नहीं आया, उतना समझ भी नहीं था गाना। वो बताई कि आप क्या रंगमंच पर बैठकर गा रही हो क्या?
1: अच्छा।
2: एक सुर लगे बिना आगे नहीं जाना है। एक सुर का जो गोलाई है उसकी जो जगह है वो वही रखनी है, बाद में आगे जाना है। ये थोड़ा हम तोड़ी सुनेंगे अभी।
1: स्वागत है।

बहुत ही सुंदर ये बंदिश रही तोड़ी में, और अपने श्रोताओं को इसी राग पर आधारित एक गैर फिल्मी रचना है, दिल पड़ोसी है, इस एल्बम से सुनवाते हैं।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: वज्रदंती, बीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: एल
2: ओ
1: वी
2: ई
1: लव, लव का मतलब है प्यार, प्यार दिलों का।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती।

इस संदेश के पहले जो गाना आपने सुना उसे हमने लव इन शिमला फिल्म से लिया था। मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजें थी, राजेंद्र कृष्ण के बोलते, इकबाल कुरैशी की तर्ज थी। अब हम आपको परख फिल्म का ये गाना सुनवा रहे हैं।

0: घुट घुट के जल तो मेरे नारने, ओ मेरे नारने।
1: परख फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। शब्दकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे सलिल चौधरी। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं प्रेम पत्र फिल्म का ये गाना। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें हैं, राजेंद्र कृष्ण के बोल।

0: सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर और मुकेश का गाया ये गीत आप सुन रहे थे प्रेम पत्र फिल्म से, रचना राजेंद्र कृष्ण ने की थी।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में चलिए लेते हैं एक बहुत छोटा सा अंतराल।

0: मनमौजी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, मदन मोहन के तर्ज।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।

उस्ताद पेड्रो फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में असद भोपाली की रचना थी। सी आरजू ने इस रचना की धुन बनाई थी। भूली बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। श्रोताओं, आज अभिनेत्री साधना का जन्मदिन है। साधना अपनी अलग अंदाज और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। अभिनेत्री साधना अपने हेयर स्टाइल के लिए भी जानी गई थी। उनके जन्मदिन पर उन्हें सादर नमन। आपको याद दिला दें कि आज की फनकार कार्यक्रम जरूर सुनिएगा 9:30 और 9:30 जो केंद्रित होगा अभिनेत्री साधना पर। अब हम आपको सुशीला फिल्म का ये गीत सुनवा रहे हैं, मुबारक बेगम की आवाज।

0: सुशीला फिल्म का गीत मुबारक बेगम की आवाज में आप सुन रहे थे। बोल जानिसार अख्तर के थे, संगीत सी अर्जुन का।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: उड़ जा काले कावा
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती कैसेट लेने।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: श्रोताओं, पुनर्मिलन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाज़ें थी। गीत गुलशन बाबरा, कथा संगीतकार थे सी अर्जुन। हमें अफसोस है कि ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पाए और इसी अधूरे गीत के साथ आज का हम भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। सविता सिंह को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हमें राही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे थे राजकुमार फिल्म से, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। अगला गाना आपको एक मुसाफिर एक हसीना से सुनवा रहे हैं, आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, बोल राजा मेहंदी अली खान ने लिखे हैं।

0: मुसाफिर एक हसीना फिल्म का ये प्यारा सा गाना आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में बोल राजा मेहदी अली खान ने लिखे थे, तर्स ओपी नैयर ने बनाई थी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर,

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: उड़ जा काले कावा
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी एग्जिट लेने।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में साहिल उद्यानवी का लिखा हुआ ये गीत आप सुन रहे थे। संगीत निर्देशन रवि का था और वक्त फिल्म का गीत अभी आपने सुना।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए एक कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल लेते हैं, अंतराल के बाद फिर से हाजिर हो जाएंगे।

जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कॉन्क्रीट के साथ बेजोड़ पकड़।

तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में असली नकली फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा था और शंकर जयकिशन ने इस गीत की धुन बनाई थी। श्रोता, आज अभिनेत्री साधना का जन्मदिन जन्मतिथि है। उन्होंने अपनी खूबसूरती, सादगी और भावपूर्ण अभिनय से हिंदी सिनेमा में एक अलग मुकाम बनाया। आज उनके जन्मदिन पर उन्हें याद करते हुए ये कहा जा सकता है कि सिनेमा के पर्दे से दूर होकर भी साधना जी की खूबसूरत यादें और उनका अभिनय हमेशा हमारे बीच जीवित रहेगा। उन्हें सादर नमन करते हुए सुनते हैं ये

0: एक फूल दो माली फिल्म का गीत अब आप सुन रहे थे। आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की थी, रचना प्रेम धवन की थी और संगीत रवि का था।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे

0: छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
1: मेरे महबूब फिल्म का गीत लीजिए आप सुनिए, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, शकील बदायूनी के बोल हैं, नौशाद की तर्ज है।

0: मेरे महबूब फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का हमें राही प्यार की ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, सविता सिंह को नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। प्रातः के 8 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत ताज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी की भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मोज में धमाकों की आवाज़ सुनी गई। भारतीय फॉरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर्स सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में

0: शादी ब्याह करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बावजूद भारत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है।
1: 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता बताई।
1: भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गुंज, चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए, इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में व्यापक सुधार हो सके। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: संशोधित प्रावधानों के तहत कोई भी चीनी व्यापारी किसी भी भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकता है। चीनी व्यापारी देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता है। हालांकि कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल ही रहेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि कोलकाता उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से चीनी खरीदता है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र सहित देश के पूर्वी हिस्से को इसकी आपूर्ति करता है, इसलिए कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के लिए 4000 क्विंटल की मौजूदा सीमा को बरकरार रखा गया है। भानु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंचा और इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर तथा दिल्ली एनसीआर में वितरित किया गया है। 840 मीट्रिक टन प्याज कल चेन्नई पहुंचा और इसे तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाना है। मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा बाजार स्थितियों और मूल्य रुझानों के आधार पर लगभग 1000 मीट्रिक टन प्याज सड़क मार्ग से प्रमुख उपभोग केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। मंत्रालय ने सूचित किया कि लगभग 3400 प्याज उत्पादक किसानों को 210 करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जा चुका है। मंत्रालय ने बताया कि बफर स्टॉक से प्याज जारी करने से बाजार में उपलब्धता में सुधार हुआ है और बिक्री शुरू होने के अगले दिन से कीमतों में गिरावट आई है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the

0: six countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Update rahe, aage rahe. X par at AIR News Hindi or Instagram par AIR News Alerts ko follow kare.
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाकर नए सिरे से आक्रमण शुरू कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार बंदर अब्बास, होर्मोज, असालवे, ज़िरफ्त, केशन द्वीप सहित कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई। वहीं अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनकी ओर से ईरानी सेना को निशाना बनाकर किए गए हमले पूरे हो चुके हैं। इस दौरान वायु रक्षा क्षेत्रों, बारूदी सुरंगों की क्षमता वाली जगहों और संचार संबंधी केंद्रों सहित कई प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया गया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीकी हमले में कोहिस्ताक शहर में एक शादी समारोह के दौरान एक घर को भी निशाना बनाया गया, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में चेतावनी दी है कि ईरान की ओर से इस हमले के जवाब में किसी भी प्रकार की कार्रवाई का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। नेपाल में 19 सदस्यीय भारतीय फॉरेंसिक दल ने फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर बाढ़ से प्रभावित लोगों की पहचान में सहायता के लिए DNA के नमूनों की जांच शुरू कर दी है। नेपाल में आई बाढ़ में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है और बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि कल शाम तक 1068 शव बरामद किए गए, जिनमें से 400 शवों के केवल आंशिक अवशेष ही मिले, जिससे पहचान प्रक्रिया जटिल हो गई। बाढ़ के बाद मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसीलिए अधिकारियों ने पहचान के प्रयासों में सहायता के लिए कई लावारिस शवों से DNA नमूने एकत्र किए हैं। चितवन जिले में अब तक सबसे अधिक शव बरामद हुए हैं। पहचान के लिए DNA नमूने एकत्र करने के बाद अधिकारियों ने नदी किनारों पर खुले स्थानों में सैकड़ों शवों को दफना दिया है। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भागलपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने और कटाव के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है।
3: गंगा के तेज कटाव के चलते नवगछिया प्रखंड में वर्षों पुराने दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर और करीब 500 मीटर लंबा जमींदारी बांध गंगा में समा गया है। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि गंगा की धारा में अप्रत्याशित बदलाव से कटाव गंभीर हो रहा है।
4: भागलपुर में खरीक ब्लॉक का शंकरपुर गाँव है, वहाँ पे गंगा की धारा कुछ बदलने की प्रवृत्ति हो रही है। यह बात सही है कि स्थिति वहाँ पर जो है उससे थोड़ा खतरा बना हुआ है, लेकिन हमारे सभी वरीय पदाधिकारी में
3: इधर सारण, वैशाली, बेगूसराय, बक्सर, जहानाबाद, नवादा और औरंगाबाद में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
2: वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में छिटपुट बारिश की संभावना है, जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरेट और स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों से उत्तीर्ण छात्रों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों के विषय में और अधिक मिलकर काम करने के लिए सहमत हो गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच हुई बैठक के बाद इस पर सहमति बनी। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज ग्वांगडोंग प्रांत के शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर सुपर 750 बैड

0: बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। शीर्ष वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी पुरुष युगल में खेलते नजर आएंगे। इससे पहले भारत की उन्नति हुड्डा कल टूर्नामेंट से बाहर हो गई। हुड्डा महिला एकल के पहले दौर में दक्षिण कोरिया के विश्व नंबर 12 किम गांग यून से सीधे गेम में 10-21, 18-21 से हार गयी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे, उपकप्तान तिलक वर्मा को बनाया गया है। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी टीम का हिस्सा हैं। 13 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा, दूसरा मैच 15 सितंबर को, सीरीज का अंतिम मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा। तीनों मैच नई दिल्ली में खेले जाएंगे।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। वैश्विक चुनौतियों के बीच विकास की गति जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिया स्वदेशी का मंत्र, एक बार फिर से सोना खरीदारी और विदेश भ्रमण से दूर रहने को कहा। दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। नदियों का जलस्तर बढ़ने के बीच नेपाल में बाढ़ की चेतावनी, जनसत्ता की खबर है। अमर उजाला ने वहां की तस्वीरें प्रकाशित करते हुए लिखा है, नेपाल में जल प्रलय। पत्र ने दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने का समाचार भी दिया है। मौसम का कहर, उत्तराखंड में 11 की मौत, 19 राज्यों में भारी बारिश के आसार। छत पर मुफ्त सोलर पैनल लगाएगी सरकार, औसत बिजली खपत 400 यूनिट होने पर मिलेगा फायदा, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। दिल्ली में घर बैठे ही मोबाइल से संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकेंगे, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, रजिस्ट्री होते हुए दस्तावेज खरीदार के डिजी लॉकर पहुंच जाएंगे। AI ने बढ़ा दी वेबसाइटों की मुश्किलें, गूगल सर्च नहीं, यूजर्स सीधे AI से पूछ रहे हैं सवाल, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। जनसत्ता ने नादिया में जन्माष्टमी के त्यौहार से पहले भगवान कृष्ण की मूर्ति को अंतिम रूप देते हुए कलाकार की मनमोहक तस्वीर प्रकाशित की है। डिब्बा बंद भोजन का आंत का कैंसर भी बढ़ा रहा है। एम्स के अनुसार हर तीसरे व्यक्ति को गैस्ट्रो की परेशानी, खराब खानपान और जीवन शैली वजह है, हिंदुस्तान में है। पेट को स्वस्थ रखने के लिए पानी का अधिक सेवन और फाइबरयुक्त भोजन लेने की दी सलाह।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी की भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मोज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फोरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों की पहचान के लिए DNA जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। समय हो गया है कार्यक्रम त्रिवेणी का और इस कार्यक्रम के लिए आइए चलते हैं विविध भारती मुंबई।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आरती श्रीवास्तव। आज की त्रिवेणी आधारित है स्वर पर। स्वर केवल कंठ से निकलने वाली ध्वनि भर नहीं है, ये मन के भावों का वो सेतु है जो भीतर की दुनिया को बाहर की दुनिया से जोड़ता है। कभी यही स्वर खुशी के पलों में खिलखिलाहट बन जाता है, कभी पीड़ा में सिसकी, और कभी उम्मीद की किरण बनकर किसी उदास मन को सहारा देता है। शब्द भले ही मौन हो जाएं, लेकिन स्वर अक्सर दिल की कहानी कह देता है। संगीत में

किसी की मधुर आवाज सुनकर मन में अपनापन उतर आता है और किसी के कठोर स्वर से रिश्तों में दूरी पैदा हो सकती है। इसलिए स्वर की मिठास केवल संगीत में नहीं, हमारे व्यवहार में भी उतनी ही आवश्यक है। एक माँ की पुकार में ममता का स्वर होता है, पिता की आवाज में विश्वास और शिक्षक के स्वर में मार्गदर्शन। प्रकृति भी अपने अनगिनत स्वरों में जीवन का संगीत रचती है। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों का कलरव, बहती नदी की कलकल और वर्षा की रिमझिम, हर ध्वनि अपने भीतर एक अलग अनुभूति समेटे हुए है।

स्वरों को सुनने के लिए केवल कान नहीं, संवेदनशील मन भी चाहिए। हमारे जीवन में भी अनेक स्वर साथ साथ चलते हैं। सफलता का स्वर, संघर्ष का स्वर, उम्मीद का स्वर और कभी कभी मौन का स्वर भी। मौन भले ही निशब्द हो, लेकिन उसमें छिपे भावों का स्वर बहुत गहरा होता है। स्वर भावनाओं की भाषा है, रिश्तों की गर्माहट है और जीवन के संगीत की पहली धुन है। जब हमारे शब्दों में संवेदना और स्वर में मिठास होती है, तब साधारण सी बातचीत भी किसी सुंदर कविता की तरह मन में उतर आती है।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती कैसेट लेने।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: चमड़ी पर फीका, लाल या पीला दाग, जिसमें सुन्नपन हो, हाथों पैरों में झुनझुनी, शरीर की किसी नस का मोटा हो जाना कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। 2 सितंबर से 15 सितंबर तक हरियाणा के गुरुग्राम, पानीपत जिलों में मकानों, झोंपड़ियों, फैक्ट्रियों और घर घर जाकर कुष्ठ के मरीजों को ढूंढने के लिए जांच की जाएगी। घबराए नहीं, कुष्ठ छूत का रोग नहीं है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए MDT की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है।

0: स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओ, एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम संबंधी एक सूचना सुनिए। एफएम लाइफलाइन लाइव प्रोग्राम में कल बाद दोपहर 3:30 से 4 बजे तक हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे डॉक्टर संजय बडाडा, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी पीजीआई चंडीगढ़। एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम का इस बार का विषय रहेगा हिप फ्रैक्चर, इसका कारण और निवारण। इस विषय से संबंधी यदि आपका कोई प्रश्न है या आप कोई जानकारी चाहते हैं तो कल बाद दोपहर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619, यानी 2660615, 2660617, 2660619 और चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172-0172। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा और समय रहेगा बाद दोपहर 3:30 से 4 बजे का। सूचना समाप्त हुई।

0: विशाल शेखर, शिल्पा राव और साथियों की आवाजों में फाइटर फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को कुमार और साथियों ने और विशाल दादलानी ने मिलकर लिखा था और विशाल शेखर ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं रोचक कोहली की आवाज में धड़कटू फिल्म का गाना। गुरुप्रीत सैनी का लिखा ये गीत है और रोचक कोहली का संगीत।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आइए चित्रलोक कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
3: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
4: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
5: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: नाना पाटेकर, शान और मोंटी शर्मा की आवाजों में वनवास फिल्म का ये गीत अभी सुन रहे थे आप।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती थी लेने।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे

सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। साथियों, आज नेशनल कोकोनट डे यानी राष्ट्रीय नारियल दिवस है। नारियल हमारी संस्कृति में हर शुभ कार्य का प्रतीक होता है। यही नहीं, ये प्रकृति प्रदत्त ऐसा एक उपहार है जो हमारी सेहत के लिए बहुत उपयोगी है। और आजकल तो यही ऐसा फल है जिसमें कोई मिलावट नहीं किया जा सकता। भले ही ऊपर से देखने में कठोर दिखाई देता है, लेकिन भीतर से अत्यंत सरस और सरल कोमल है। नारियल का पानी हमें तुरंत ताजगी देता है और इसका नित्य उपयोग तमाम तरह की बीमारियों से हमें बचाता है। सेहत के लिए ये वरदान सिद्ध है। हमारे देश में हर शुभ कार्य की शुरुआत नारियल फोड़कर या पूजा की थाली में सजाकर या कोई मनोकामना की पूर्ति के लिए भी किया जाता है। ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है। तटीय इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों के रोजगार और भोजन का भी ये मुख्य साधन है। नारियल के वृक्ष को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, अर्थात हर इच्छा की पूर्ति करने वाला पेड़ कहा गया है इसे। राष्ट्रीय नारियल दिवस मनाने का ये उद्देश्य है कि हम इस पेड़ की सुरक्षा और सम्मान करें। नारियल का पेड़ ये सीख देता है कि खुद ऊंचाई पर रहते हुए दूसरों को सुख दे, खुद ऊंचे रहकर भी सरल सरस और मीठा पानी दे, मर्यादा में बने रहें, मीठे बने रहें, छाया दें और अनेक लाभ दिए जा सकते हैं। तो आइए हम भी ये तय करें कि हम भी पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे, पर्यावरण को बचाएंगे। जैसे प्रकृति हमें इतना कुछ देती है, तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि प्रकृति प्रदत्त हर चीज़ को संभाल कर रखा जाए। अब सुनते हैं चित्रलोक कार्यक्रम में तमाशा फिल्म का ये गाना। लकी अली की आवाज है, इरशाद कामिल के बोल हैं, ए आर रहमान की तर्ज़।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनिए
4: कहिए
0: सुनिए एक खुशखबरी
4: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
4: शुक्रिया शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक में अब वक्त है कि छोटा सा ब्रेक लिया जाए।
6: धीमी इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान? तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 MBPS प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।
7: अरोड़ा प्लाईवुड
8: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
7: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।

ड्रीम गर्ल टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाज़ें मीत ब्रदर्स जोनिता गांधी जुबिन नौटियाल की थी, कुमार के बोल थे सौरभ रॉय, मीत ब्रदर्स का संगीत था। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह चल रहा है। कहते हैं कि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा मन होता है, यानी जैसा हम अन्न ग्रहण करते हैं वैसा ही हमारा तन और मन हो जाता है। हमारे जीवन में भोजन या जो भी हम खाते हैं सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं होता, बल्कि भोजन शरीर को स्वस्थ रखने और मन मस्तिष्क को बेहतर बनाने के लिए होता है। इसलिए हमें ऐसा भोजन ग्रहण करना चाहिए जो पोषक तत्वों से भरपूर हो, जैसे अनाज, दालें, हरी सब्जियां, फल, दूध और साथ में पर्याप्त जल। पर्याप्त मात्रा में पानी उतना ही उपयोगी है जितना भोजन। पोषण केवल बच्चों के विकास के लिए नहीं होता, बल्कि हर उम्र के हर वर्ग के लिए ज़रूरी है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक हमें संतुलित आहार पर ध्यान देना चाहिए कि क्या हम खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और कितनी मात्रा में खा रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इसका भी संतुलन होना चाहिए। बहुत अधिक मसालेदार और केमिकल से युक्त भोजन हमारे तन और मन दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। शुद्ध सात्विक आहार यानी घर का बना हुआ साफ सुथरे भोजन की ओर अपने मन को केंद्रित करना चाहिए और फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए। 1 से 7 सितंबर तक मनाए जाने वाला राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का उद्देश्य यही है कि हम अपने शरीर के पोषक तत्व दें शरीर को और बीमारियों से अपने आप को दूर रखें। और अब चित्रलोक कार्यक्रम में ये गाना आपको सुनवा रहे हैं।

चित्रलोक कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भारत फिल्म का गीत। आवाज थी अभिजीत श्रीवास्तव के, इरशाद कामिल के बोल थे अमाल मलिक का, संगीत था। इस गाने के पहले जो गाना आपने सुना था उसे हमने लिया था कपूर एंड सन्स फिल्म से, बादशाह फैजलपुरिया सुकृति की आवाज़ें थी, कुमार के बोल थे अमाल मलिक का संगीत था, और अभी आपने भारत फिल्म का गीत सुना। चित्रलोक कार्यक्रम में अब बारी है एक ब्रेक की।

भाग मिल्खा भाग फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, सिद्धार्थ महादेवन की आवाज़ें थी और साथियों की आवाज़ें थी। प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा था और शंकर एहसान लॉय की ये तर्ज आपने सुनी। आपको अब सुनवा रहे हैं अंधाधुन फिल्म का ये गीत, अमित त्रिवेदी की आवाज़ है, जयदीप साहनी के बोल हैं, अमित त्रिवेदी का संगीत।

अंधाधुन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों 25 अगस्त से 9 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है। अपने जीवन के बाद भी अगर किसी की दुनिया को रोशन करने का हम संकल्प लें तो यही है उद्देश्य नेत्रदान पखवाड़ा मनाने का।

पलक मुछाल पुनीत अवस्थी की आवाजों में कंक फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। प्रभात कुमार ने इस गीत को लिखा था, पुनीत अवस्थी ने इस गीत की धुन बनाई थी। दोस्तों, हमारे जीवन की सार्थकता तभी है जब हम किसी के लिए कुछ कर पाए, किसी के काम आए। हमारा छोटा सा फैसला किसी दूसरे की पूरी दुनिया रोशन कर दे, हमारी आंखें किसी की आंखों में खुशी ला दें। हमारे जाने के बाद यदि हमारी आंखें किसी और की आंखों में सपने दिखाएं, उम्मीद दिखाएं, खुशी लाएं। जिसने अपनी उम्मीद खो दी हो, जो उदास हो, तो इससे अच्छा उपहार और क्या हो सकता है। इसी सोच को लोगों तक पहुंचाने और नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। तो चलिए हम खुद जागरूक बने और दूसरों को भी इस ओर प्रेरित करें। और अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए सविता सिंह को। नमस्कार।

0: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज का अखबार कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का अखबार।
4: आज का अखबार।

नमस्कार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कार्यक्रम आज का अखबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त शालिनी। दोस्तों कैसे हैं आप? भाई अच्छे से खा पी रहे हैं ना? अब आप सोचेंगे कि हम एकदम से खाने पीने की बात क्यों करने लगे। भाई खाने की बात होगी क्योंकि अभी चल रहा है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, और पीने की बात भी होगी क्योंकि आज जो दिन है वो

एक ऐसी ड्रिंक पीने का है या एक ऐसी फल के बारे में है जो कि हम सबका बहुत ही पसंदीदा फल है। आज है विश्व नारियल दिवस यानी कि वर्ल्ड कोकोनट डे। और आपको बता दें कि वर्ष 2009 में शुरुआत हुई थी इस दिन को मनाने की एशिया प्रशांत समुदाय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है ये भी आपको बता देते हैं। नारियल उत्पादन के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, किसानों की मदद करना और नारियल उद्योग को बढ़ावा देना। और आपको दोस्तों शायद पता होगा कि नारियल के पेड़ को ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। जी हाँ, क्योंकि इसके जो भी अवयव है नारियल के, चाहे वो पानी हो, इसकी गिरी हो, इसका तेल हो, इसका छिलका और यहाँ तक कि इसकी पत्तियाँ भी किसी न किसी रूप में उपयोगी हैं। इसीलिए नारियल दिवस आज का जो दिन है 2 सितंबर का, उसको विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हमारा देश भारत विश्व भर में सबसे अधिक उत्पादन करता है नारियल का। और हमारे यहाँ अगर नारियल की बात करें तो उसका विशेष महत्व है, क्योंकि नारियल को हम पूजा में जो है वो प्रयोग करते हैं और इसे श्रीफल भी कहा जाता है यानी कि माता लक्ष्मी का फल। हमारे धर्म में पूजा पाठ शुभ कार्यों में नारियल को सबसे पहले स्थापना के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सबसे पहले नारियल की स्थापना होती है किसी भी पूजा में। और कोई भी शुभ कार्य होता है तो नारियल फोड़कर हम उसका शुभारंभ करते हैं। तो नारियल के बहुत सारे फायदे हैं। नारियल का पानी हमें पीते रहना चाहिए, इसमें इलेक्ट्रोल होता है। हमें गर्मी सर्दी कोई भी मौसम हो उसमें सोचने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे एनर्जी लेवल्स को भी नारियल का पानी बहुत अच्छा रखता है। साथ ही साथ अगर आपको भूख लगती है, छोटी भूख के लिए जो हम स्नैकिंग कहते हैं जिसे, उसके लिए नारियल की गिरी जो है वो एक बहुत अच्छा स्नैक है। बस ताज़ा नारियल की गिरी को निकाल कर रख लें और एक दो दिन तो वो आराम से फ्रिज के भीतर रह सकता है, बस उसे लीजिए और खा लीजिए। और नारियल की मिठाइयाँ तो आप जानते ही हैं कि ना जाने कितनी मिठाइयाँ आप नारियल से बना सकते हैं। तो चलिए नारियल को अपनी डेली लाइफ में, अपनी दिनचर्या में करते हैं शामिल और सेलिब्रेट करते हैं विश्व नारियल दिवस।

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ ही जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: इस समय आप हैं आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र के साथ FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब FM लाइफलाइन प्रोग्राम संबंधी एक सूचना सुनिए। FM लाइफलाइन लाइव प्रोग्राम में कल बाद दोपहर 3:30 से 4 बजे तक हमारे स्टूडियोज में मौजूद रहेंगे डॉक्टर संजय बडाडा, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी PGI चंडीगढ़। FM लाइफलाइन कार्यक्रम का इस बार का विषय रहेगा हिप फ्रैक्चर, इसका कारण और निवारण। इस विषय से संबंधी यदि आपका कोई भी प्रश्न है या आप कोई जानकारी चाहते हैं तो कल बाद दोपहर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617, 2660619, यानी 2660615, 2660617 और 2660619, और चंडीगढ़ का STD कोड है 0172-0172। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

आज का अखबार कार्यक्रम में अब बारी है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की यानी हेडलाइंस की। पहले राष्ट्रीय समाचार। नीट पेपर लीक मामले में केंद्र व राज्य सरकारों का आग्रह स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया। सीजेपी ने 5 सितंबर को होने वाला विरोध वापस लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% रहने पर देशवासियों को दी बधाई। देश से फिर की अपील कि जरूरत ना हो तो सोना ना खरीदें, विदेश में शादी और घूमने के लिए यात्राएं करने से भी बचें। भारत पाकिस्तान सीमा पर होगा हाईटेक पहरा। हथियारों की बरामदगी पर अब एनआईए करेगी सीधी जांच। केंद्र ने चीनी कारोबारियों के लिए भंडारण सीमा को घटाया। 4000 क्विंटल को घटाकर 2000 क्विंटल किया गया। अब संपत्तियां नहीं बेच

पाएंगे सुभाष चंद्रा, बैंकों ने जताई थी आपत्ति। मौसम का कहर, उत्तराखंड में 11 लोगों की मौत, 19 राज्यों में भारी बारिश के आसार, अलर्ट जारी किया गया।

0: दिल्ली में 2,30,000 घरों में मुफ्त लगेगा 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत की कूटनीतिक जीत, आतंक विरोधी बिश्केक, कृपया से दोबारा सुने, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत की कूटनीतिक जीत, घोषणा पत्र जारी, शहबाज शरीफ के सामने प्रधानमंत्री मोदी बोले, आतंक को पनाह देने वाले होंगे बेनकाब। अमेरिकी सेना में फिर उथल पुथल, अब ट्रंप के ड्रोन मैन ने पद छोड़ा। और सिंगापुर सरकार बच्चे के जन्म पर देगी 66.45 लाख रुपए, जन्म दर लगातार गिरने पर उठाया ये कदम। तो ये थे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचार। अब लेंगे एक ब्रेक और उसके बाद फिर से आपको सुनवाएंगे एक म्यूजिकल नंबर।
1: निकल जाओ इस घर से, तुम्हें कुष्ठ रोग है। अगर तुम इस घर में रही तो हम सबको भी कुष्ठ रोग हो जाएगा।
2: अरे भैया, आप भाभी को घर से क्यों निकाल रहे हैं? इससे तो आपका परिवार टूट जाएगा। क्या आपको पता नहीं है कि कुष्ठ रोग अन्य बीमारियों की तरह ही है? इसका इलाज MDT से संभव है। भाभी को आज ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं और वहां उनका इलाज करवाएं।
3: स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
0: तो चलिए अब करते हैं छैया छैया।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज का अखबार और ये है आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम में अब आपके लिए लेकर आए हैं लोकल और रीजनल हेडलाइंस। पहले ट्राइसिटी की खबरें। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर किसानों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर शुरू करा पक्का मोर्चा। जगतपुरा चंडीगढ़ रोड के एक हिस्से पर कब्जा। सुबह से आने लगे किसान, रात तक लगा जाम। मौसम विभाग ने कहा, वेदर सिस्टम हुआ कमजोर, ट्रैक भी बदला, जल्द विदाई के आसार, कमजोर ही रहेगा मॉनसून, पैचेज में होगी बारिश।

चंडीगढ़ के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बजट जुटाने की कोशिश, डेवलपमेंट के लिए केंद्र के पास 1,00,000 करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड, मिलेगी विकास कार्यों को रफ्तार, निगम भी करेगा आवेदन। चंडीगढ़ पुलिस के केनाइन स्क्वाड में 4 लैब्राडोर पपीज शामिल, ये पपीज बनेंगे बम, ड्रग्स और ब्लाइंड मर्डर केस ट्रेस करने वाले एक्सपर्ट।

निगम कमिश्नर ने स्टूडेंट्स को दिए स्वच्छता के टिप्स, बोले सिंगल यूज प्लास्टिक घटाएं, गीले व सूखे कचरे को घर से ही करें अलग। चंडीगढ़ में इस बार एक ही दिन मनाया जाएगा जन्माष्टमी का त्योहार, 4 सितंबर को होगी जन्माष्टमी। अब बारीक क्षेत्रीय समाचारों की। भारत पाकिस्तान सीमा के पास गांव नूरशाह फाजिलका में सीमा पर ड्रोन पुल से गिरकर हुई बीएसएफ जवान की मौत। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जाने वाली स्पाइसजेट की दुबई उड़ान में फिर हुई 14 घंटे की देरी, यात्रियों ने मचाया हंगामा। अमृतसर के खालसा कॉलेज में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आज दूसरा दिन 1965 के युद्ध पर रहा केंद्रित। पंजाब सरकार ने लगाई एसएलपी, कहा 42-60% डीए मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा डीए विवाद, कर्मचारियों को केंद्र के बराबर इन हैंड सैलरी का ऑफर। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन, विधानसभा में 11 विधेयक पारित, राइट टू बिजनेस बिल में 36 माह की मोहलत। और हिम चंडीगढ़ सिटी में सरसा नदी के किनारे बनेगा 9 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट, मुख्यमंत्री ने की प्रोजेक्ट की समीक्षा, अधिकारियों को औपचारिकताएं पूरी करने के दिए निर्देश। तो ये थी रीजनल हेडलाइंस और साथ में कुछ स्थानीय खबरें, और चलते हैं एक और गीत की तरफ।

0: और श्रोताओं, घड़ी की सुई अब कह रही है कि आपसे फिलहाल ले लें इजाजत। तो मैं शालिनी इसी दुआ के साथ कि आपका आज का दिन हो शुभ, आप रहें हैप्पी हैप्पी, कार्यक्रम आज का अखबार से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
1: आज का अखबार।
0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 10 बजने को है, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में मापने योग्य सुधार हो सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
3: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
2: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बावजूद देश तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता जतलाई। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 3रे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी, डॉक्टरेट और स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों में उत्तीर्ण

0: इन विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएगी। सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की तैनाती के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंच गई है और बाद में इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर और दिल्ली NCR क्षेत्र में वितरित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि 840 मीट्रिक टन प्याज कल चेन्नई पहुंची और इसे तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाना है। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम इस महीने की 15 तारीख से इस वर्ष 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। हालांकि कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों की विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल ही रहेगी। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। भागलपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने और कटाव के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है। उधर नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1000 से अधिक हो गई है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। और खेलों में भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। 13 सितंबर को इस श्रृंखला का पहला मैच नई दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: इस समय आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ लेकर हाजिर होंगे बस थोड़ी ही देर में।
2: धीमी इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800044444 पर।

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से लीजिए प्रस्तुत है लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं वर्सटाइल मशीन बद्दी।
2: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ।
3: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
2: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी,
3: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
1: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।
0: सुप्रभात, नमस्कार, आप सभी का हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, यह है एक लाइव फोन इन प्रोग्राम, तो जाहिर सी बात है कि हम और आप जुड़ेंगे लाइव फोन कॉल्स के जरिए। और आज आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमेशा की तरह एक ऐसा विषय आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, उस पर बात करने जा रहे हैं जो कि जुड़ा हुआ है हम सभी से

0: और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जीवन जीने के लिए हमें खाना खाना कितना ज़रूरी है तो आप सभी जानते ही हैं कि भोजन के बिना जीवित रहना संभव नहीं है। लेकिन क्या मात्र भोजन कर लेना ही सही है या भोजन को अच्छे तरीके से खाना यानी भोजन के बारे में सही जानकारी होना, पौष्टिक भोजन करना हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है, इस पर आज होगी चर्चा, क्योंकि चल रहा है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह यानी नेशनल न्यूट्रिशन वीक। और इसीलिए आज हमने कार्यक्रम का जो विषय है वो रखा है हमारी थालियों से गायब होता पौष्टिक आहार। बदलते समय के साथ हमारा खाना भी बदला है। जहां पहले हम घर पर बैठकर घर से बना हुआ खाना, घर पर ही बनी हुई सब्जी, तरकारी, मौसमी फल और मौसमी मिलेट्स का इस्तेमाल किया करते थे, वहां पर आज तेजी से बढ़ते हुए फास्ट फूड ने उसकी कहीं पर जगह ले ली है। हमने वेस्ट को फॉलो करते हुए जो अपना खाने का कल्चर है, अपने कल्चर को तो बदला ही है, साथ ही साथ जो हमारे खान पान का जो कल्चर है वो भी बदल दिया है। तो आज इसी पर हम बात करेंगे कि कैसे धीरे धीरे हमारी थाली बदल गई, पौष्टिक आहार से हम फास्ट फूड की ओर चले गए और ऐसे खानों की तरफ चले गए, ऐसे भोजन पदार्थों की तरफ चले गए जिनमें पोषण की कहीं कमी रह गई है। इसी पर आज बातचीत आपसे करेंगे। और आपको बता दें कि हमारे फोन नंबर्स जो हैं वो हैं 2660615, 2660617 और 2660619 और चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। और कार्यक्रम में कॉल्स आनी हो गई हैं शुरू, तो देखते हैं कौन है हमारे आज के पहले कॉलर। लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। अपना नाम बताएं और कहां से बात कर रहे हैं ये भी बताएं।
1: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई से।
0: राकेश जी कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया लग रहा है
0: जी।
1: और आज का जो टॉपिक है हम पोषण हमारी थाली से जो है
0: पौष्टिक
1: गायब हो रहा है जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से जो है हमारे जो थाली से जो पौष्टिक आहार, देखो पहले के समय में क्या होता था, हम जब खाते थे मक्की की रोटी खाते थे पहले और सरसों का साग और ये जो सत्तू होते थे हमारे जो मक्की का बनता था, ये चीज हम गायब हो रहे। जब से ये जो चाइनीज जो चीजें आई है जैसे कि पिज्जा, ये बर्गर, ये फास्ट फूड, इसके वजह से कहीं ना कहीं हम अच्छा जो है पौष्टिक आहार हम छोड़ रहे हैं। और कई बार हमें पौष्टिक आहार जो है स्वादिष्ट नहीं आता क्योंकि हमें फास्ट फूड जो है ज्यादा पसंद आते हैं, लेकिन वो बीमारी का कारण भी हमारा बनता जा रहा हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बीमारी का कारण बनता जा रहा है क्योंकि जो खाना फास्ट फूड है वो बेशक हमें जीभ को तो अच्छा लगेगा, हमें खाने में स्वादिष्ट बेशक लगेगा, लेकिन उसमें उतना पौष्टिक तत्व जो है वो नहीं रहते हैं जो कि घर के बने हुए ताज़ा भोजन में है या सब्जियों में है या मिलेट्स में है या दूध पनीर जो भी घर का अच्छी ताज़ा जो हम घर पे बनाकर भोजन करते हैं उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है।
1: और सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम घर में चाहे कितना अच्छा खाना बनाए लेकिन वो हमें स्वाद नहीं था। लेकिन और आज के लोगों की क्या आदत है कि ये सोचते हैं कि चलो हम बाहर जाते हैं, होटल में जाते हैं, चाउमीन खाते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वहाँ स्वच्छता है या साफ सफाई है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि जो बाहर का खाना है बहुत टेस्टी है और कई बार हम ज्यादा खा लेते हैं, तो इससे जो है जो घर की चीजें, घर की बनी हुई चीजें हम कभी नहीं खाते
0: जी। और बाहर का खाना जब हम खाते हैं तो हमें नहीं पता है कि वो किस तरीके से बनाया जा रहा है, वहाँ पर स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है नहीं, हाइजीन के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। इसलिए अपने सामने अपने हाथ से बनाकर जो हम खाना खाते हैं उसमें हमें श्योरिटी रहती है और उसमें हम ये मेजर भी कर सकते हैं कि कितना हम प्रोटीन इनटेक ले रहे हैं, कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, है ना
1: जी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
0: लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में आपका स्वागत है जी।
2: शालिनी मैडम को नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार जी, किससे बात हो रही है हमारी?
2: मैं सतपाल सिंह बिंद्रा, सेक्टर 21 चंडीगढ़ से।
0: बिंद्रा जी कैसे हैं आप और आज क्या कहना चाहेंगे?
2: आज मैडम, आज का विषय जो है बिल्कुल मेरे मतलब हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहता है
0: जी
2: कि क्या हमने खाना है क्या नहीं खाना है, क्योंकि जो प्रोसेस फूड की मात्रा बढ़ती जा रही है हमारे खाने में
0: जी
2: और पौष्टिक आहार कम होता जा रहा है,
0: बिल्कुल
2: इसकी चिंता प्रधानमंत्री जी ने भी की है कि मिलेट्स का

0: ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें
1: जी,
0: अपने डेली के आहार में इसको शामिल करें
1: जी।
0: तो मोटे अनाज को हम जितना भी अपने आहार में खाने पीने में शामिल करेंगे, रागी है, बाजरा है
1: जी,
0: और इस तरह के जो पदार्थ हैं
1: जी,
0: वो हम खाएंगे तो हमारी सेहत ठीक रहेगी। और हम ये जो आजकल प्रोसेस्ड फूड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, पिज्जा बर्गर की तरफ, इसमें पौष्टिकता तो बिल्कुल ना के बराबर होती है। इसके बजाय हम इसमें मोटापे का शिकार और कई दुष्परिणामों का शिकार हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने जी।
0: तो हम ये देखें कि जो भी हम खा रहे, एक तो हम किसानों से, जो किसान की मंडियों से जो सब्जी आती है वो खाए, और आजकल सब्जियां भी पैकेजिंग हो रही है, फ्रोजन फूड की टाइप में आ रही हैं
1: जी,
0: तो इन चीजों को अवॉइड करें और ताजी सब्जियां खाएं, ताजे फल खाएं
1: जी,
0: जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि ताज़ा फल खाना, और जो लोकल जो हमारे किसान है, इसलिए वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया जाता है, और हमारी सरकार इस पर बहुत जोर देकर कहती है कि चाहे कोई भी आपका कोई भी जगह है या कोई भी फील्ड है, वहाँ पर आप अगर वोकल फॉर लोकल पर अगर हम जोर देते हैं, उस पर जोर देकर अगर हम लोकल बनी हुई चीज़ें खाते हैं या ख़रीदते हैं, तो उससे हमें तो फ़ायदा है ही, साथ में जो और लोग इस काम में लगे हुए हैं उन्हें भी प्रोत्साहन मिलता है कि आगे बढ़कर वो और प्रोडक्ट्स जो हैं उनको लेकर आए मार्केट में।
0: तो हमारी दादी की जो थाली होती थी मैडम, दादी की थाली में छाछ, दही, अचार, इस तरह के चीजें शामिल होते थे
1: जी,
0: तो हमारी पाचन प्रक्रिया ठीक रहती थी और हम स्वस्थ रहते थे।
1: बिल्कुल,
0: तो दोबारा हम वही रास्ते पे चले और पौष्टिक पदार्थ ही खाएं
1: जी। बिंद्रा जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो पुरानी थाली है उसको वापस लाने का समय आ गया है, और उस थाली को अगर हम वापस लाएंगे तो हम सेहतमंद भी रहेंगे, और सेहतमंद रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि हर काम अच्छे से कर पाएंगे
0: जी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया बिंद्रा जी हमसे जुड़ने के लिए।
2: चमड़ी पर फीका, लाल या पीला दाग, जिसमें सुन्नपन हो, हाथों पैरों में झुनझुनी, शरीर की किसी नस का मोटा हो जाना कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। 2 सितंबर से 15 सितंबर तक हरियाणा के गुरुग्राम, पानीपत जिलों में मकानों, झोंपड़ियों, फैक्ट्रियों और घर घर जाकर कुष्ठ के मरीजों को ढूंढने के लिए जांच की जाएगी। घबराए नहीं, कुष्ठ छूत का रोग नहीं है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए MDT की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
3: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।

0: आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। हेलो,
1: आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को
0: लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में आपका स्वागत है जी। अपना नाम बताएं और कहां से बात कर रहे हैं।
2: नमस्कार जी, मैं सुशील शर्मा हिमाचल से बोल रहा हूं।
0: सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद मैडम
0: जी। सुशील जी, क्या कहना चाहेंगे आज हमारी थाली से गायब होते पौष्टिक आहार पर?
2: जी मैडम, इस बारे में तो मेरा यही कहना मैडम, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन में नंबर वन है, 40 करोड़ का से अधिक पॉपुलेशन है, तो इतनी बड़ी आबादी को पौष्टिक भोजन देना अपने आप में एक चुनौती है।
0: जी, चुनौती तो है,
2: क्योंकि अभी भी अगर बात की जाए तो जो हंगर इंडेक्स पे है इंडिया का, बहुत अभी भी भुखमरी है, बड़े स्टेट्स है, यूपी बिहार में अभी भी काफी जो है लोगों को अभी की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है मैडम।
0: जी।
2: तो ऐसे में तो पौष्टिक भोजन की बात तो बेमानी है। पौष्टिक भोजन तो तब मिलेगा मैडम जब हम 140 की जो है 140 करोड़ की आबादी को हम पहले जो भरपेट भोजन दे पाएंगे।
0: जी जी, लेकिन
2: चुनौती तो है मैडम।
0: चुनौती तो बिल्कुल है सुशील जी, लेकिन आज हम बात उस चुनौती की नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि जो भोजन हम खा रहे हैं उसको हम पौष्टिक कैसे बना सकते हैं, जो हमारी चॉइसेस हैं, यानी कि भोजन में जो भी हमारा चुनाव है कि हम क्या खा रहे हैं उसको हम पौष्टिक भोजन में कैसे बदलें, यानी हमारी थाली से गायब हो रहा है पौष्टिक आहार।
2: उसके लिए तो यही है मैडम, हमें तो पहले खुद

0: अपने जो है आदतें खुद बिगाड़ देते हैं, अपने बच्चों को जो है हम बच्चे भी तो उसी का अनुसरण करेंगे ना, जैसा हम जो है खुद ही क्या बोलते हैं घर में जो है हम जो है अपने जो हमारे दूध है दही है बच्चों को सब्जियां जो है या मोटा अनाज है इनके लिए हम खुद जो है प्रेरित करें बच्चों को खुद भी खाएं
1: जी।
0: और हम देख रहे हैं कि हम जो है खुद ही जो है बर्गर पिज्जा इस तरह की जो है चाइनीज जो है फास्ट फूड का जो ट्रेंड चल पड़ा है
1: जी देखिए। और आजकल सुशील जी ये भी एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हम घर के बाहर जाते हैं तो माता पिता बच्चे सभी लोग कभी कभार ये चलता है कि हाँ कभी होता है कि चलिए चेंज के लिए हम महीने में एक आध बार बाहर जाकर खा लें, लेकिन कुछ घरों में ऐसा भी होता है कि झट से फोन उठाया झट से ऑर्डर किया और फटाफट से सबने बाहर का खाना खाया और सबको लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि हमने पैसे खर्च के बाहर से खाना मंगा कर खाया है ना।
0: क्योंकि जो आजकल एक तो दिक्कत ये है ना, दोनों मैडम जो है कामकाजी जो है हस्बैंड वाइफ दोनों जो है कामकाजी है नौकरी पेशा है तो अपनी जो है ड्यूटी में ही व्यस्त है। जब छुट्टियां मिलेगी वीकेंड में सैटरडे जो संडे को तो अपने बच्चों को भी ले जाएंगे बाहर खुद भी क्या बोलते नहीं तो अपनी आदतें बोलो या कुछ मजबूरियां भी है कुछ क्या बोलते हैं
1: जी कुछ मजबूरियां भी है कुछ हमारा जैसे कि हम बात कर रहे हैं चुनाव हम ऐसा करते हैं खाने का। अगर हम बाहर जाकर भी खा रहे हैं तो हम जो हमारा फास्ट फूड है पिज्जा बर्गर नूडल्स इसकी बजाय हम अगर डोसा खा सकते हैं हम भारतीय थाली ले सकते हैं है ना। तो ऐसी भी चीजें हैं आजकल ऐसे भी रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर हमें सात्विक खाना भी मिलता है या मिलेट्स फूड भी मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे स्वस्थ थाली वाले चुनाव हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पर डिपेंड करता है हमारे पर निर्भर करता है कि हम अपने भोजन में चुनाव किस चीज का करते
0: हैं। खुद अनुसरण करना होगा ना मैडम, तभी बच्चे तो तभी देखेंगे आगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल हमसे ही शुरू होगा क्योंकि बच्चे तो हमारी ही नकल करते हैं सुशील जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल वो बोल के नहीं सीखते मैडम, बच्चे तो हम जो करते हैं
1: वो देखते हैं उसको देख कर सीखते हैं।
0: जी जी जब हम खुद ये करेंगे ना इस तरह के जो पौष्टिकता के प्रति खुद जो है
1: जागरूक होंगे
0: इस तरह के घर में बनाएंगे बच्चों को प्रेरित करेंगे तो बच्चे खुद ब खुद सीखेंगे।
1: जी सुशील जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमें खुद को पहले बदलना होगा तभी हमारे बच्चे भी बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी।
1: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी।
2: शालिनी मैडम जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार कैसे हैं आप, अपना नाम बताइए।
2: मैं बोल रहा हूँ सेक्टरी कॉमन से जी।
1: सुरिंदर जी
2: आज का विषय बहुत अच्छा है
1: जी। सुरिंदर जी
2: खाने के लिए हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। एक तो हमें खाना जो खाना है वो बिल्कुल सादा खाना हो और पौष्टिक हो, क्योंकि ताजा खाना खाएंगे तो उससे सेहत भी ठीक रहेगी और बीमारी भी नहीं होगी
1: जी।
2: और दूसरा ये है के बंद डिब्बे वाले खाने को अवॉइड करें हम जहाँ तक भी हो सके। पता नहीं वो कब का बना है हम देखते ही नहीं है बस आ गया खाने, तो ये हमें थोड़ा सा अपनी आत्म में वो देखना पड़ेगा तभी हमारी तंदुरुस्ती होगी। और साफ सुथरा खाना देखना कहाँ से बनता है कैसे बनता है तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के लिए जी।
1: जी बिल्कुल बहुत जरूरी है और वैसे भी कहते हैं ना सुरिंदर जी कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन है ना। तो जैसा हम अन्न का चुनाव जो करते हैं हम जो अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा शरीर भी हो जाता है वैसा ही हमारा मन भी हो जाता है। तो भोजन मात्र भोजन नहीं है कि एक भक्ष्य पदार्थ है और हमने खा लिया और बात खत्म हो गई। भोजन एक दवाई के तौर पर भी काम करता है अगर हम भोजन को जो हमारे शास्त्र कहते हैं आयुर्वेद कहता है हम अगर भोजन को उस तरीके से खाएं है ना। इसीलिए हमारे यहाँ पर हर ऋतु में अलग अलग तरह का भोजन मिलता है ऋतु अनुसार भोजन मिलता है। इसीलिए आयुर्वेद भी कहता है कि जो स्थानीय भोजन है वो खाएं। अब मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर सर्दी चल रही है और हम आम खा रहे हैं किसी गर्म जगह से मंगवा कर तो हमारा शरीर उसको प्रोसेस नहीं कर पाता है क्योंकि हमारा शरीर भी वैसे ही रिएक्ट करता है ना। जी
2: कि ये हमें चटपटा खाना को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। खाना तो दिल तो करता है कि अच्छा हो स्वादिष्ट भी लगता है लेकिन ये बाद में नुकसान देता है और उसको आदत ना बनाए कि यही हम रोज रोज खाएं तो वो बहुत नुकसान देगा जी।
1: बिल्कुल रोज रोज नहीं खाना चाहिए कोई भी चीज जो बाहर की है, हमारे घर में बना हुआ सादा खाना जो है वो ही खाएं और घर पर अपने तरीके से अपने स्वादानुसार जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं है ना जी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल के लिए।
2: थैंक यू थैंक यू।
3: अरोड़ा प्लाईवुड
4: यहाँ है पीवीसी डब्ल्यूपीसी वॉल पैनल्स सीलिंग्स एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और एचडीएचएमआर प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स सब एक ही छत के नीचे।

0: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा फ्लाई वर्ल्ड एट एस यू 845 एनएसी मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।

0: आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़, और कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं भोजन की थाली से गायब होता पौष्टिक आहार, और देखते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर। लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में आपका स्वागत है जी। अपना नाम बताएं और कहां से बात कर रहे हैं
1: जी। दीदी नमस्कार जी, मैं रामवीर बोल रहे जी, गांव किरमत जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा से जी।
0: रामवीर भाई को भी हमारी नमस्कार, कैसे हैं आप भाई रामवीर जी?
1: जी दीदी बहुत अच्छे है जी, और जो आज का विषय है जी पौष्टिक आहार के बारे में, तो वो तो हमारे शरीर के लिए सेहत के लिए बहुत जरूरी है जी। और हमें अक्सर ये जो अनाज है जैसे गेहूं का उपयोग हम साल भर करते हैं, तो इसमें एक ही अनाज को साल भर खाना भी ठीक नहीं है। इसमें थोड़ा अगर हम बदलाव करेंगे, मोटा अनाज
0: जी
1: समय समय पर खाएंगे, जैसे सर्दियों में हम मक्की की रोटी या बाजरे खिचड़ी वगैरह खा सकते हैं, तो उसको शामिल करेंगे तो इससे हमारा जो भोजन है वो पौष्टिक हो जाएगा। और जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जहाँ पर हम सब्जी में तेल मान लो कि दो एक चम्मच बड़ा डालते हैं, तो उसको आधा ही डालें
0: जी,
1: ताकि नुकसानदायक खाना ना बने जी।
0: जी बिल्कुल, और खाने के जो हमारी मात्रा है तेल की, उसको अगर हम 10% से भी अगर हर रोज़ कम करेंगे, यानी कि, और आपने बिल्कुल सही बात यह याद करवाई। मैं अपनी बात बताऊं तो जब मैं खाने में तेल का इस्तेमाल करती हूं, तो प्रधानमंत्री जी की ये बात याद करते हुए जो भी तेल की मात्रा होती है उसे कम कर लेती हूं। और ये छोटी छोटी बातें अगर हम अपने पौष्टिक तत्वों को बढ़ाने के लिए अगर हम ध्यान में रखें कि अगर हमें अपने खाने को अच्छा रखना है, तेल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है और मोटे अनाज का यानी मिलेट्स को शामिल करना है, तो हमारी सेहत पहले से कहीं बेहतर हो जाएगी।
1: हाँ जी दीदी, बीमारियां भी पास नहीं आएंगी, क्योंकि ये मोटा अनाज हमें जो बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है दीदी।
0: जी मोटा अनाज खाएंगे तो शायद मोटे भी नहीं होंगे ना।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: जी जी
1: कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा जी।
0: जी जी, जैसा हम देख ही रहे हैं कि आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, फास्ट लाइफ के साथ साथ फास्ट फूड भी हमारी जिंदगी में शामिल हो गया है, और उसके चलते बहुत सारी बीमारियां, मोटापा, बीपी, शुगर, ये बहुत कॉमन हो गया है। बड़ों में तो है ही है, बल्कि बच्चों में भी आजकल ये बीमारियां देखने को मिल रही हैं, जो कि बहुत चिंताजनक है।
1: हाँ जी दीदी, ये खान पान से ही होती है जी, जैसे खान पान होगा तो ऐसी शरीर पर असर होगा जी।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामवीर भाई कॉल करने के लिए,
1: धन्यवाद।
0: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी।
2: नमस्कार मैम, शालिनी मैम नमस्ते जी।
0: जी नमस्कार,
2: मैं जी डॉक्टर रघुवीर जीरकपुर से बोल रहा हूँ
0: जी। आपका स्वागत है जी।
2: आज आपका नेशनल न्यूट्रिशन वीक है
0: जी,
2: तो मैं स्कूलों में भारत विकास परिषद का यहाँ पे मैं ब्रांच का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो हम स्कूलों में जाके और आम पार्क में जहाँ लेडीज बंदे बच्चे

0: रखते हैं वहाँ पे, लेक्चर अवेयरनेस देते हैं हम।
1: चलिए फिर तो अब हमारा काम आप कर रहे हैं, अब हम नहीं बोलेंगे, आप ही बोलेंगे, बताइए।
0: हाँ मुझे एक मिनट दीजिए बस, मैं ही बोलूंगा, मैं बता रहा हूँ। इसलिए हम करते हैं कि सभी को पता लगे, और आपका टॉपिक अच्छा है, तो मैं अब ये जितने भी और जो लाखों लोग सुन रहे हैं उनसे मैं प्रार्थना करूंगा और खाने के लिए कि देखो सबसे पहले हमारा जैसा यथा अन्न तथा मन के साथ साथ हमारा शरीर भी आत्मा भी अन्न के अनुसार बनती है।
1: बिल्कुल।
0: और मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के नाते संतुलित आहार और पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: उसमें जैसे अब हमारा ये चढ़ रहा है तो हम इसमें बच्चियों को बताते हैं क्योंकि

0: आत्मा भी अन्न के अनुसार बनती है।
1: बिल्कुल।
0: और मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के नाते संतुलित आहार और पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: उसमें जैसे अब हमारा ये चल रहा है तो हम इसमें बच्चियों को बताते हैं, क्योंकि हमारी बच्चियां खास तौर से 85% एनीमिक है।
1: बिल्कुल।
0: इसका बिलो HP9 के अंडर है, तो उसमें सही पोषण की, अच्छे स्वास्थ्य, ऊर्जा और उत्पादन की भी हमारी जो कुंजी है। तो संतुलित आहार में हमें इसी का हरी सब्जियां व मौसम के अनुसार अपनी जो होती है, हमारी मौसम के अनुसार फल, दाल, अनाजें और मोटे अनाज, साबुत अनाज सब लेना चाहिए, स्प्राइट वगैरह बना करके
1: जी।
0: या आज बाजार में मिलते हैं प्रोस्टे, उनको ना करें प्रोसेस। दूसरा, इसके साथ साथ उसको डाइजेस्ट करने के लिए पर्याप्त पानी भी पिए और थोड़ा सा जो एक्सरसाइज भी कर सके जो लोग, अच्छी बात है
1: जी।
0: और जंक फूड वगैरह जो भी सारे बात कर रहे थे वक्ता जो है, उससे तो हमें बचना ही चाहिए। केमिकल भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन कुछ मजबूरियां भी हम मानते हैं, लेकिन मजबूरियों के साथ साथ हम अपना सेहत खराब कर रहे हैं, जो कि शायद हम उतना उसको अचीव ना कर पाए, ढंग से ना जी पाए
1: जी।
0: तो अभी हमें संभलना होगा। तो मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ, आज का सही पोषण कल का हमारा स्वस्थ जीवन है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। एक सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं और आप इसमें इस बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं। लोग ये भी कहते हैं कि न्यूट्रिशन महंगा है, क्या ये बात सच है?
0: न्यूट्रिशन कोई महंगा नहीं है जी, देखिए कोई महंगा नहीं है। जो आप चीज ले रहे हैं बाजार वास्ते हमें सस्ती होगी, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी बस
1: जी,
0: थोड़ा सा आपको वो अपना प्रोसेस करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी किचन में ला के खाने में। अब देखिए मैम, आज हमारा क्या पैकेज बहुत है, सब लोग DIG है, DIG मीन डबल इनकम ग्रुप है
1: जी।
0: वो खाना मंगा लेते हैं, खाना पूरा खाते ही नहीं है, लैपटॉप पे बैठ जाते हैं, वहाँ पड़ा रहता है, ठंडा हो जाता है। ठंडा खाना मतलब अति गर्म, अति उष्ण
1: जी,
0: खाना नहीं खाना है,
1: बिल्कुल नहीं खाना, बिल्कुल।
0: वो हमारे डाइजेशन को, हमारे को, हमारे हार्मोन को, सॉरी हमारे एंजाइम जूसेज, इनको नुकसान करेगा
1: जी। जी,
0: तो इसके बहुत अच्छे लाभ बताता हूँ मैं आपको
1: जी।
0: रोग प्रतिरोधक, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है सही संतुलित और मोटे अनाज और फल फ्रूट से मौसम के अनुसार
1: जी।
0: हमारे आयुर्वेद में कहा है मात्रा शीति अध्याय तस्या शीति, मीन्स मात्रा के अनुसार मौसम के अनुसार आहार खाएं। जैसे अभी आप बात कर रहे थे उष्ण प्रदेश, गर्म प्रदेश और उसका वो हम नहीं खाएंगे, मैरिज में देखते हैं लोग उस पे फ्रूट पे जो है टूट के पड़ते हैं
1: जी,
0: मीन्स वो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल
1: जी,
0: महंगा भी है और पैसे भी खर्च होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि महंगा भी है, क्योंकि जो अगर हम आउट ऑफ सीजन कोई भी चीज लेते हैं वो तो महंगी होती ही होती है ना
0: जी।
1: जी,
0: देखने में अच्छी लगेगी, लेकिन आजकल हम देखने में अच्छे लगने लग गए ना
1: जी,
0: इसलिए। अब दूसरा कहता है शारीरिक और मानसिक क्षमता में वृद्धि होती है सही पौष्टिक आहार से,
1: बिल्कुल।
0: हृदय रोग, डायबिटीज और मोटापे से बचेंगे हम
1: जी। जी जी,
0: और हमारी जो दिनचर्या है वो भी अच्छी होगी, आपकी आयु भी लंबी होगी, मैं पक्का कह रहा हूँ। और आज इसलिए बुजुर्ग जो है घर का खा रहे हैं अपना, और उनकी देखिए आप एवरेज एज भी 73 आ गई है, और आज बुजुर्ग जो लोग हैं सीनियर सिटीजन है वो अपने ढंग से खा करके आगे पहुंच रहे हैं, परमात्मा की कृपा है
1: जी, बिल्कुल। और तो फिर से एक बार वापस चलते हैं अपनी भारतीय पद्धति जो है, हमारी आयुर्वेद है, उसकी ओर जाने की आवश्यकता है डॉक्टर साहब। यही आप भी कह रहे हैं और यही हम भी कह रहे हैं, हम भी इसकी एडवोकेसी करते हैं कि अपना जो संस्कृति है उसकी ओर वापस चलते हैं और अपने थाली से गायब होते पौष्टिक आहार को एक बार फिर से वापस लाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने कॉल किया और समय दिया।
0: एक बार और कहूंगा, देखिए हर चीज का चक्र आता है। हमारे पास अंग्रेज आए 200 साल 300 साल राज करके गए, उस टाइम देखिए क्रिकेट आई उनकी है, हमने 2 बार वर्ल्ड कप जीत लिया, वो नहीं जीत पाए, हॉकी हमारी, हम डाल हम अपनी चीज को अच्छा नहीं समझते, दूसरे की तरफ देखते हैं
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये सोच हमें बदलनी होगी,
0: अच्छे रहेंगे और वो चक्कर आ रहा है, अब चक्कर आ रहा है,
1: बिल्कुल।
0: देखिए
1: बिल्कुल
0: आपके केमिकल के बर्तन वो डगाए लग गए, मिट्टी के आगे दूसरे जी, आगे जी। अब लोग आ रहे हैं मुझसे चक्कर तरफ, परमात्मा करता है साइकिल चलाता है, अब हमारा टाइम है।
1: डॉक्टर साहब आपसे बात हम चाहते तो हैं और भी करें, लेकिन और भी कॉलर्स हमारे, आपने कॉल किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी।
0: थैंक यू मैम, एक स्लोगन है संतुलित आहार अपनाएं स्वस्थ जीवन मुस्कुराएं
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे वर्सेटाइल मशीन बद्दी।
3: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ।
4: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
3: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी,
4: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
2: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी।

0: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। और आपको एक बार फिर से बता दें, हमारे फोन नंबर्स 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड 0172 और फोन फ्लैश कर रहा है। देखते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। कहाँ से बात कर रहे हैं, अपना शुभ नाम बताएं।
1: मेरा नाम संजय है जी।
0: संजय जी,
1: नाभा से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट पटियाला
0: जी। संजय जी नाभा से बात कर रहे हैं। संजय जी स्वागत है आपका।
1: आपका प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया है
0: जी।
1: हम तो ये, मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आजकल बच्चों को जो खाना देते हो वो नाक मार के खाते हैं
0: जी।
1: जब बच्चे छोटे होते हैं ना, जब हमारी माँ बोलती थी बचपन में भी थोड़ी थोड़ी चीज उबाल के उसका टेस्ट मुंह में लगा दो बच्चे का
0: जी,
1: वो जब उनको टेस्ट लगेगा घर में कोई भी सब्जी बनेगी ना, वो झट से खा लेंगे
0: जी।
1: यही आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। सभी बोल रहे हैं, कोई अपना अपना सुझाव रख रहे हैं, अभी मोटा खाना अनाज खाना चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। फास्ट फूड तो ये भी चलो, किसी का रोजी धंधा चल रहा है, हम किसी को निंदना नहीं करना चाहिए
0: जी,
1: ये तो जीव का टेस्ट है
0: जी।
1: चलो फास्ट टाइम है, ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए फास्ट फूड भी। चलो किसी का धंधा है उसी को अपन ये नहीं बोलते भी ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए।
0: देखिए संजय जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसी का काम है उसको ये नहीं कहना चाहिए। लेकिन जब हमारी जो हम अगर चुनाव करते हैं कि हम फास्ट फूड नहीं खाएंगे, मान लीजिए उसकी जगह वो दूसरे की रेडी लगा लेते हैं या इडली की रेडी लगा लेते हैं या कोई ऐसा खाना जो कि हमारे लिए अच्छा हो, जब हम नूडल्स और फास्ट फूड नहीं खाएंगे।
1: बात मैं बीच में काट के बोलता हूं। इडली कौन सी, वो क्या चीज बनती है उसमें, फिर बेकिंग पाउडर डालते हैं, वो तभी फूलती है ना, वो मेहनत नहीं ना कोई करके राजी उसको फुलाने के, हाथ से फेंटने की। जब किसी को अंडे को आमलेट को फेंटते हैं तभी वो फूलता है ना।
0: जी जी,
1: अगर उसको फेंटेंगे ही नहीं वो फूलेगा कैसे, वो कारण क्या है, उसके अंदर बेकिंग पाउडर।

0: इडली, इडली वर्गा कोई खाना नहीं, बिल्कुल हल्का खाना है इडली का, घर में इडली बनाओ उसमें भी अपन वो डाल देते हैं, इनो डाल दो जी,
1: जी जी
0: औरतें भी बोलते हैं इनो डाल दो, ये फुलमी फुलमी बन जाएंगी
1: जी।
0: फुलमी का कारण क्या है, उसको अगर फेंटोगे ना, अगर अपन कोई काम भी करेंगे ना, जो मेहनत से करेंगे वो उसमें स्वाद मिलता है
1: बिल्कुल। और इडली के लिए अगर हम बात करें तो उसे जो अधिकतर देखा गया है कि जो साउथ इंडियन खाना है वो फर्मेंटेड रहता है, यानी कि पूरी रात भर उसको रख दिया जाता है, जिससे वो सुबह तक फूल जाता है ना, चाहे फिर डोसा हो या इडली हो जी।
0: कारण तो यही है, अब पहले बोले भी अब तेल कम खाओ वो कम खाओ, तेल से कोई ये नहीं, अब मोदी जी अब बोलते हैं भी गोल्ड नहीं करनी, शादी नहीं वहां पे करनी बाहर में, अब जिसके पास पैसा है भाई वो बाहर जाके भी कर लेगा
1: जी। देखिए आज हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं संजय जी,
0: नहीं कि, बात जी बात पे बात हो रही है
1: जी जी बिल्कुल,
0: बीच में बात करी जा रहे हैं मोदी जी की भी, मोदी जी की बात नहीं करनी चाहिए, अपनी जो सुझाव है रखो।
1: देखिए अब हम किसी को कुछ बात करने से रोक नहीं सकते, हमारे विषय से संबंधित ही बात कर रहे हैं
0: कि तेल हमें को आपने टोक दिया भी किसी इस बात पे नहीं चलने
1: जी, क्योंकि पौष्टिक हम पौष्टिक आहार की बात कर रहे हैं ना संजय जी, वो आहार से जुड़ी बात थी इसलिए हमने करी कि अगर हम तेल कम खाते हैं तो जो फैटी लिवर है या डायबिटीज है उसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है ज्यादा तेल।
0: ये बता रहा हूँ जब तक आपका मन नहीं आपको इजाजत देता ना, चाहे जितना मर्जी समझा लो कोई नहीं समझेगा, जब ठोकर लगती है ना जब ही समझ आती है भी इस खाने से मेरे को ये दिक्कत आई ये छोड़ दो यार
1: जी। पर संजय जी देखिए हम अपना काम करते रहेंगे और जो जिसने समझना है वो तो समझ ही जाएगा है ना, हमारा काम है समझाना जागरूक
0: करना, बताने की भी जरूरत नहीं, वो तो घर का बना ही खाना खाएगा, वो बाहर तो खाता भी नहीं
1: जी। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल के लिए। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी।
2: मैडम नमस्कार
1: जी। नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
2: मैडम मैं संकट मोचन शिमला से प्रदीप बात कर रहा हूँ।
1: प्रदीप जी आपकी आवाज बिल्कुल साफ साफ आ रही है और बहुत खुशी है आपकी आवाज में, कहिए क्या कहना चाहते हैं, पहले तो स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: अरे थैंक यू मैम
1: जी,
2: बस मैं तो यही कहूंगा कि जीवन जीने के लिए,
1: और इतनी साफ आवाज आ रही थी प्रदीप जी की एकदम से कहीं गायब हो गई।
2: बदलते समय के साथ भोजन में भी मैडम बदलाव आ गया है
1: जी,
2: अब फास्ट फूड बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया है
1: जी,
2: और लोगों के खान पान का ढंग भी बदल गया है। फास्ट फूड से शरीर में बहुत सी बीमारियां पनपती है, ये सिर्फ स्वाद में ही अच्छा लगता है
1: जी।
2: होटलों में कई दिनों का खाना जो फ्रिज में रखा जाता को लोगों को परोसा जाता है जो कि शरीर के लिए हानिकारक है, और सब्जियों को मैडम जल्दी तैयार करने के लिए ना उसमें पता नहीं कैसा कैसा स्प्रे किया जाता है
1: बिल्कुल,
2: और वो शरीर के लिए बहुत ही घातक है
1: जी।
2: तो हमें जो है ज्यादा मतलब प्रेफरेंस देनी चाहिए ये जो हमारी लोकल सब्जियां होती है ना मैडम
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि इसमें खाद जो है वो देसी होती है
1: जी,
2: तो उसका ही हमें ज्यादा यूज करना चाहिए।
1: प्रदीप जी देखिए आप तो हिमाचल में हैं और आप लोग खुशनसीब हैं कि आप हिमाचल में हैं, पहाड़ी प्रदेशों में तो लोग अधिकतर छोटे छोटे किचन गार्डन्स बनाकर सब्जियां भी खुद ही उगा लेते हैं।
2: हाँ जी मैम, हाँ जी हाँ जी हाँ जी
1: जी, जिनके पास, और ना केवल पहाड़ी क्षेत्रों में बल्कि हमारे यहाँ मैदानी इलाकों में भी जो भी लोग किचन गार्डन बनाते हैं वो अपने घर में, घर के आसपास जो जगह है वहां पर जो लोकल वेजिटेबल्स है वो उगाते हैं, और अपना ऑर्गेनिक फूड आजकल बहुत तेजी से लोगों में, ऐसा नहीं है कि लोगों में जागरूकता नहीं है, लोग अपने ही घर पर सब्जियां उगाकर वो भी खा रहे हैं और बहुत अच्छी बात है ये
2: जी मैम। जैसे हम ये टमाटर वगैरह होते हैं ना मैडम
1: जी,
2: तो ये हम फेंक देते हैं, तो अगर हम इसको गमले में डाल दे तो थोड़े दिन में देखना कि वो पौधा तैयार हो जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और जो ताजी सब्जी तोड़कर हम जब खाते हैं ना वो जो एक हमें संतोष मिलता है प्रदीप जी, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है
2: जी मैम। आपने बिल्कुल सही बोला, बहुत सही बात है ये ना मैडम
1: जी,
2: तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मतलब ये लोकल को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए सब्जियों को, और जो मौसम के साथ साथ ना हमारे को फलों और सब्जियों का भी प्रयोग करना चाहिए।
1: बिल्कुल, मौसमी फल सब्जियां खाएं और पौष्टिक आहार खाएं, बदल बदल कर अनाज खाएं, इन सब चीजों का अगर हम अपने थाली में ध्यान रखेंगे कि हमें उसमें कार्ब्स भी मिल रहे हैं है ना, हमें उसमें प्रोटीन भी मिल रहा है, हमें उसमें विटामिंस भी हैं, मिनरल्स भी हैं, फाइबर भी मिल रहा है, और जैसा कि हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है एक श्रोता, उन्होंने कॉल कर कहा कि पानी की सही मात्रा भी बहुत जरूरी है।
2: जी मैम, जी मैम,
1: खाना और पानी दोनों चीजें बहुत जरूरी है, और आज है वर्ल्ड कोकोनट डे, तो नारियल पानी की भी बात कर लेते हैं कि नारियल पानी बहुत ही अच्छा विकल्प है, अगर आप घर से बाहर जाते हैं और आपको कुछ पीने का मन कर रहा है तो आप जो जूसेस और पैक्ड जूसेस पीते हैं उसकी बजाय नींबू पानी या फिर नारियल पानी ले, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है।
2: मैम बिल्कुल ठीक बोला आपने।

0: और आजकल हमें जैसे बरसात का मौसम है ना मैम, तो ये हमें जो है बॉयल करके ही पीना चाहिए
1: जी,
0: क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि ये जो पानी आता है ना, और जैसे बारिश भी होती है मैडम
1: जी,
0: तो उसमें ये आपका गाद वगैरह भर जाता है, मिट्टी वगैरह हो जाती है
1: जी, और बहुत सारे बैक्टीरियल जो है हमें,
0: हाँ मैडम, इसी से होता है
1: जी। बहुत तो बहुत शुक्रिया प्रदीप जी,
0: सावधानी बरतनी चाहिए
1: जी। प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने कॉल किया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: अरे मैम मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके ना मैम
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ में जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: नमस्कार शालिनी जी।
1: जी आपको भी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: मैं किरण कुफी
1: जी। आज हमारे शिमला के और शिमला के आसपास के श्रोता बहुत एक्टिव हैं, बड़ी अच्छी बात है। किरण जी आप क्या कहना चाहेंगे हमारी थाली से गायब होता पौष्टिक आहार विषय पर?
2: मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमें जितना हो सके पौष्टिक आहार लेना चाहिए।
1: जी
2: आजकल के मैम, आजकल के बच्चे देखे हैं हमने, जो आजकल पौष्टिक आहार नहीं लेते वो कुपोषण का शिकार बन रहे हैं
1: जी। तो किरण जी इसमें बच्चे जो पौष्टिक आहार नहीं ले रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसमें किसका किसका जो है बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है कि बच्चों को ये समझाया जाए, स्कूल की या पेरेंट्स की, या फिर हम उन्हें पैसे ही ना दें कि वो दुकान पर जाकर कुछ ऐसा जो जंक फूड है या चिप्स है या बिस्किट है कुछ खरीदें?
2: जी मैम मैं अपनी बात कहती हूँ, मैं अपने बच्चे को कभी पैसे नहीं देती
1: जी।
2: तो मैम मैं तो करती हूँ कि तुम हरी भरी सब्जियाँ जितनी खा सको उतनी तुम्हारे लिए फायदेमंद होगी
1: जी। बिल्कुल, और हम खुद भी वही करें जो बच्चों को हम कहते हैं करने के लिए, क्योंकि बच्चे हमारे एक्शन से सीखते हैं कि हमारे माता पिता क्या कर रहे हैं, और प्रयास यही करना चाहिए कि हम उनके सामने अच्छे से अच्छे तरीके से हम घर पर बनाकर उन्हें हर चीज़ दें। और जैसे कई चीज़ें ऐसी होती हैं, हम अगर हम फास्ट फूड की बात करें या कुछ बाहर का सामान, वो घर पर हम हेल्दी तरीके से भी बना सकते हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट पर सब कुछ उपलब्ध है, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो कि बहुत हेल्दी तरीके से चीज़ों को बनाने का हमें सुझाव देते हैं, तो अगर हम वो करेंगे तो पौष्टिक आहार जो है हम अपने बच्चों को और खुद के लिए भी हम ले पाएंगे।
2: मैम एक बात और जोड़ना चाहेंगे, हमारे यहाँ पहाड़ी इलाके में सिड्डू और घी बड़ा फेमस है
1: जी। सिड्डू बहुत फेमस है
2: बिल्कुल। तो मैं तो यही मैं अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ कि तुम ज्यादा से ज्यादा मतलब मत खाओ, घर की बनी चीजें खा
1: जी। बिल्कुल, देखिए और हम अपने जो देसी खाना है ना उसको कहीं भूलते जा रहे हैं। अब देखिए हिमाचल में अगर हम शिमला की तरफ चले जाएं तो सिड्डू और घी है, और अगर हम कांगड़ा हमीरपुर मंडी की ओर चले जाएं तो वहाँ की अलग अलग तरह की धाम है। हर जो राज्य है, हर ज़िला है, अपनी अपनी विशेषता है ना। हरियाणा की ओर चले जाएं तो वहाँ का अपना खाना है, राजस्थान में चले जाएं वहाँ दाल बाटी है।
2: जैसे मैम मैं पिछले मतलब सावन के महीने में गई थी।
1: हेलो जी, आपकी आवाज़ कम आ रही है किरण जी।
2: मैं सावन के महीने में पंजाब गई थी मैम।
1: हेलो
2: मैम आवाज आ रही है?
1: जी जी किरण जी बोलिए।
2: मैम मैं सावन के महीने में पंजाब गई थी, तो मतलब उन्होंने मतलब उनकी जो फेमस खाना है वो है मक्के की रोटी और साग,
1: सरसों का साग जी जी।
2: तो मैं हम जब हमने मक्के की रोटी और सरसों का खाया था तो हमें बहुत ही मतलब मजा आया उसको खाने में
1: जी। किरण जी की कॉल कट गई है, और ये कह रही थी कि पंजाब आई थी और इन्होंने मक्की की रोटी और सरसों का साग खाया था। वैसे तो अभी सीज़न नहीं आया है, लेकिन ये पंजाब का खाना है और हर स्टेट का हर राज्य का अपना पौष्टिक आहार है जो कि हमारा बरसों से चला आ रहा है, और उसी को खाकर हम मजबूत रहे हैं, और आगे भी हम यही चाहते हैं कि हम सभी मजबूत रहें और पौष्टिक आहार ऐसे ही लेते रहें।

0: और श्रोताओं, इसी गीत के साथ अब आज का लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ यहीं पर होता है संपन्न। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि आज हमने बात की हमारी थाली से गायब होता पौष्टिक आहार विषय पर, क्योंकि हम मना रहे हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी कालिया। अब शालिनी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: हेलो हेलो, कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो चंडीगढ़।
0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
3: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
4: धीमी इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 MBPS प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800-4444 पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
1: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
2: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
1: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
3: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
3: जग घूमे आधार जैसा ना कोई।
2: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
1: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172,
2: और हमारा ईमेल आईडी है akashwanichandigarh@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम हमारी बेड़ियां।
1: नमस्कार, मैं एना कर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमारी बेड़ियां में। श्रोताओं, कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी का रास्ता बदल देते हैं। कभी उनकी कही हुई एक छोटी सी बात हमें बहुत आगे ले जाती है, कभी उनकी डांट उस समय तो बुरी लगती है लेकिन बाद में समझ आता है कि उसमें भी हमारी भलाई छिपी थी, और कभी उनका दिया हुआ एक छोटा सा प्रोत्साहन हमें वह करने की हिम्मत देता है जिसके बारे में हमने कभी भी सोचा भी नहीं था। श्रोताओं, ऐसे ही लोगों में से एक हैं हमारे शिक्षक। जी हाँ, आज ये कार्यक्रम उन सभी शिक्षकों को समर्पित है जिन्होंने सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं दिया बल्कि हमें जीवन के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया। जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक शिक्षक की भूमिका की, शिक्षक और विद्यार्थी के रिश्ते की, अनुशासन और प्यार के बीच के संतुलन की, और इस बात की कि एक शिक्षक का व्यवहार बच्चे के जीवन पर कितना गहरा असर डाल सकता है। जी हाँ श्रोताओं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम एक गुरु एक रोशनी। जी हाँ श्रोताओं, भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के महान शिक्षक, दार्शनिक और देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। वे मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है, शिक्षा इंसान की सोच, उसके चरित्र और उसके जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम है। श्रोताओं, कहा जाता है कि जब उनके विद्यार्थियों और मित्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने सुझाव दिया कि उनके जन्मदिन को व्यक्तिगत रूप से मनाने के बजाय इस दिन को शिक्षकों के सम्मान के दिन के रूप में मनाया जाए। जी हाँ श्रोताओं, और इसी विचार से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। यानी यह दिन सिर्फ एक शिक्षक को हैप्पी टीचर्स डे कहने का नहीं है, यह दिन हमें याद दिलाता है कि शिक्षक समाज के भविष्य को तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक सच्चा शिक्षक केवल ये नहीं कहता कि क्या करना चाहिए, श्रोताओं, वह अपने व्यवहार और अपने जीवन से भी प्रेम, क्षमा, दया और सेवा का उदाहरण प्रस्तुत करता है, क्योंकि बच्चे केवल हमारी बातें सुनते नहीं हैं, वे हमारे व्यवहार को देखते भी हैं। अगर शिक्षक बच्चों से सम्मान से बात करता है तो बच्चा भी सम्मान करना सीखता है। अगर शिक्षक अपनी गलती स्वीकार करता है तो बच्चा भी अपनी गलती स्वीकार करना सीखता है। अगर शिक्षक किसी कमजोर बच्चे को प्रोत्साहित करता है तो उस बच्चे के अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। जी हाँ, यही कारण है कि शिक्षक का व्यवहार बहुत मायने रखता है। और यहाँ एक बात हम सभी के लिए सोचने वाली है, शिक्षक होना आसान काम नहीं है। हर दिन शिक्षक के सामने अलग अलग स्वभाव के बच्चे होते हैं, कोई बहुत शरारती हैं, कोई बहुत शांत स्वभाव के हैं, कोई पढ़ाई में तेज, और कभी किसी बच्चे को एक बात समझने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। ऐसे में शिक्षक को कभी कभी डांटना भी पड़ता है, अनुशासन भी रखना पड़ता है, और ये जरूरी भी है। लेकिन बच्चे को सुधारना जरूरी है, साथ ही उसे ये महसूस कराना भी जरूरी है कि मेरे शिक्षक मेरे खिलाफ नहीं है, मेरे साथ है। जी हाँ श्रोताओं, इसी बात को समझने के लिए आइए सुनिए छोटा सा नाटक।
2: आरव, तुमने फिर होमवर्क पूरा नहीं किया?
3: सर, वो मैं नहीं कर पाया।
2: आरव, कितनी बार समझाया है कि रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो, ऐसा कैसे चलेगा? कल तक पूरा होमवर्क करके लाना।
3: जी जी सर। पता नहीं सर, मुझे

0: यही क्यों बार बार डांटते रहते हैं? मुझे लगता है मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता।
1: क्या हुआ बेटा, आज इतने चुप क्यों हो?
0: कुछ नहीं माँ।
1: कुछ तो हुआ है, बताओ।
0: अरे आज फिर से सर ने सबके सामने मुझे डांट लिया। मुझे लगता है सर को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ।
1: अच्छा, लेकिन उन्होंने डांटा क्यों?
0: अरे माँ, वो होमवर्क पूरा नहीं किया था ना।
1: तो आरव, गलती किसकी है?
0: हाँ है तो मेरी।
1: देखो बेटा, हो सकता है तुम्हें उनकी डांट अच्छी ना लगी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे तुम्हारे खिलाफ हैं। शायद वो चाहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा और गंभीर हो जाओ।
0: लेकिन माँ, अगर वे मुझे प्यार से समझाते तो?
1: बिल्कुल, तुम्हारी बात भी सही है। डांट के साथ प्यार और समझ हो तो बात दिल तक ज्यादा आसानी से पहुंचती है। तुम कल सर से जाकर बात करना।
0: पर क्या कहूँ?
1: बस अपनी बात शांति से कहना। पूछना कि आप मुझे बताइए कि मैं अपनी पढ़ाई कैसे बेहतर कर सकता हूँ।
0: सर, क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ?
2: हाँ आरव, बोलो।
0: सर, कल आपने मुझे डांटा तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि शायद आप मुझसे कुछ नाराज हैं।
2: मुझे अफसोस है कि तुम्हें ऐसा महसूस हुआ। देखो बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी क्षमता को पहचानो। तुम कर सकते हो, बस तुम्हें थोड़ी मेहनत और नियमितता की जरूरत है।
0: तो आप मुझसे नाराज नहीं हैं?
2: बिल्कुल नहीं बेटा। एक शिक्षक का काम केवल ये कहना नहीं है कि गलती मत करो। हमारा काम ये भी है कि जब तुम गलती करो तो तुम्हें ये बताएं कि उसे कैसे सुधारा जाए। हाँ, कभी कभी मुझे सख्त होना पड़ता है, लेकिन मेरी सख्ती का उद्देश्य तुम्हें डराना नहीं, तुम्हें जिम्मेदार बनाना है।
0: सर, अब मैं समझ गया। मैं भी कोशिश करूँगा कि अपना काम समय पर करूँ।
2: बस यही तो मैं चाहता हूँ। और हाँ, अगली बार अगर मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगे तो बिल्कुल खामोश मत रहना, मुझसे बात करना।
0: जी सर।
2: और याद रखना, गलती करने वाला बच्चा बुरा बच्चा नहीं होता।
0: जी सर, गलती से सीखना भी तो जरूरी है ना।
2: बिल्कुल सही।
3: तो दोस्तों, आपने सुना, कभी कभी शिक्षक की डांट के पीछे चिंता होती है और बच्चे की चुप्पी के पीछे भी कई भावनाएं हो सकती हैं। इसलिए शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की तरफ से थोड़ा सा प्रयास जरूरी है। श्रोताओं, शिक्षक अनुशासन रखें, लेकिन बच्चे की भावनाओं को भी समझें, और बच्चे शिक्षक का सम्मान करें, लेकिन अपनी बात कहने से डरे नहीं, क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, दोनों एक ही तरफ हैं, बच्चे के अच्छे भविष्य की तरफ। श्रोताओं, अब बहुत जरूरी है कि इस रिश्ते में माता पिता की भूमिका भी बहुत महत्व रखती है। अगर बच्चा स्कूल से आकर कहता है कि आज मैडम ने मुझे डांटा, या फिर आज मैडम ने मुझे बहुत गुस्सा किया, या आज सर ने मेरे साथ ऐसा कहा, तो तुरंत यह तय करने की जरूरत नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। पहले बच्चे की बात शांति से सुनिए, उससे पूछिए तुम्हें कैसा लगा, उसके बाद स्थिति को समझिए और जरूरत हो तो शिक्षक से भी शांतिपूर्वक बात कीजिए, क्योंकि बच्चे को ये भरोसा होना चाहिए कि मेरी बात सुनी जाएगी, और शिक्षक को भी ये महसूस होना चाहिए कि माता पिता मेरे विरोध में नहीं, बच्चे के हित में मेरे साथ बात कर रहे हैं। जी हाँ श्रोताओं, आखिर हम सभी एक उद्देश्य के ही हैं, बच्चा पढ़े भी, सीखे भी, खुश रहे और एक अच्छा इंसान भी बने। जी हाँ, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा अनुशासन। जी हाँ, देखिए, बच्चों को केवल प्यार देना भी पर्याप्त नहीं है, और केवल सख्ती करना भी नहीं। बच्चों को चाहिए प्यार भी, सीमाएं भी, स्वतंत्रता भी और जिम्मेदारी भी। जी हाँ श्रोता, उन्हें ये पता होना चाहिए कि गलती करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी गलती से सीखना जरूरी है। उन्हें सवाल पूछने की आज़ादी हो, लेकिन दूसरों का सम्मान करना भी आना चाहिए। उन्हें अपने सपने देखने की आज़ादी हो, लेकिन मेहनत और अनुशासन का महत्व भी बच्चे को समझना चाहिए, और यही संतुलन एक अच्छे शिक्षक

और एक अच्छे परिवार की पहचान बन सकता है। श्रोताओं, ये नीति वचन है कि बुद्धिमान को शिक्षा दे और वो और भी बुद्धिमान होगा, है ना श्रोताओं? कितनी सुंदर बात है ना। इसका मतलब है कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। यही एक अच्छे शिक्षक की खूबसूरती है। वो जो सिखाता है उसे अपने जीवन में जीने की कोशिश भी करता है। और विद्यार्थियों के लिए भी संदेश है, अपने शिक्षक का सम्मान कीजिए, उनकी बात सुनिए, अगर कोई बात समझ में ना आए तो सवाल पूछिए। श्रोताओं, अब एक पल के लिए अपने स्कूल के दिनों को याद कीजिए जरा। जी हाँ, थोड़ी देर रुक जाइए, शांत हो जाइए और थोड़ी देर अपने स्कूल के उन दिनों को याद कीजिए। क्या आपको कोई ऐसा शिक्षक याद आ रहा है जिसने आपको कभी कहा हो, कभी इनकरेज किया हो या कभी डांटा हो और कहा हो तुम कर सकते हो? या फिर शायद कोई ऐसा शिक्षक जिसने आपकी गलती पर आपको डांट लगाई हो, या फिर उस समय शायद आपको बहुत बुरा लगा हो उस डांट का, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है शायद उस डांट की जरूरत थी। और हो सकता है कि किसी शिक्षक की कोई छोटी सी तारीफ आज भी आपको याद आती हो। श्रोताओं, यही शिक्षक की ताकत है। उनकी कही हुई बातें हमारे साथ स्कूल से बाहर भी चली आती हैं, है ना? श्रोताओं, इसी पर एक छोटी सी चुनौती मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी चुनौती ये है, आज अपने जीवन के किसी एक शिक्षक को याद कीजिए। जरूरी नहीं कि वह आपके वर्तमान शिक्षक हो, कोई पुराने शिक्षक, कोई कॉलेज के प्रोफेसर या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको जीवन में कुछ महत्वपूर्ण सिखाया हो। उन्हें फोन कीजिए। जी हाँ, फोन उठाइए, उन्हें फोन कीजिए या एक छोटा सा संदेश भेजिए, या सिर्फ ये मत लिखिए हैप्पी टीचर्स डे श्रोताओं, बल्कि ये भी लिखिए कि आपने मेरे जीवन में क्या बदलाव किया। हो सकता है आपका एक छोटा सा संदेश उनके लिए पूरे दिन की सबसे बड़ी खुशी बन जाए।

तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि शिक्षक दिवस केवल एक सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक सम्मान का दिन है। उन दिनों को याद करने का दिन है जिन्होंने हमें पढ़ाया, समझाया, कभी डांटा, कभी प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ने की हिम्मत दी। लेकिन आज का संदेश सिर्फ शिक्षकों के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए भी है और माता पिता के लिए भी, क्योंकि बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षक का ज्ञान, माता पिता का सहयोग और बच्चे की मेहनत तीनों जरूरी हैं। और शायद आज की पूरी बात को हम कुछ शब्दों में कह सकते हैं, और वो ऐसे, बच्चों को इतना डरा कर मत सिखाइए कि वह सवाल पूछना ही भूल जाए, और इतना भी छोड़ मत दीजिए कि अनुशासन भूल जाए। उसे प्यार, समझ और सही दिशा तीनों की जरूरत है, क्योंकि डांट में भी सुधार हो, अनुशासन में भी सम्मान हो, शिक्षा में भी संवेदनशीलता हो और हर बच्चे को यह एहसास हो, मैं महत्वपूर्ण हूँ, मैं सीख सकता हूँ और मैं आगे बढ़ सकता हूँ। श्रोताओं, यही तो शिक्षा की असली खूबसूरती है, जहाँ ज्ञान के साथ इंसानियत भी सीखी जाती है। सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो श्रोताओं, आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं या आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001, और हमारा फोन नंबर है 8527449955। जी हाँ, 8527449955। तो आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।

अभी आपने स्पॉन्सर प्रोग्राम सुना। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरबहार। इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ गैर फिल्मी रचनाएं, नॉन फिल्मी गीत इस प्रोग्राम में आपके लिए। और आज सबसे पहले कैलाश खेर।

0: SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत. डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ. क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.
1: अरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि हमारे भट्टे पर जो नया मजदूर आया है उसके हाथ पैरों पर बहुत से दाग हैं. उसे इन पर चोट लगने से भी दर्द नहीं होता.
2: अरे ये तो कुष्ठ रोग का लक्षण है. तुम उसे अभी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाओ.
3: यदि आपके आसपास किसी भी व्यक्ति में कुष्ठ रोग का कोई भी लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं. यदि संदिग्ध व्यक्ति में कुष्ठ रोग पाया गया तो सरकार द्वारा सूचित करने वाले व्यक्ति को 250 रुपए दिए जाएंगे. स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी.
4: सुरबहार प्रोग्राम का अगला गाना इस प्रोग्राम से जुड़ी सूचना के बाद है. आज दोस्तों बाद दोपहर 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक प्रोग्राम FM लाइफलाइन की हम रिकॉर्डिंग करेंगे. इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर संजय बडाडा, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ एंड्रोक्रिनोलॉजी PGI चंडीगढ़. और इस बार का विषय है हिप फ्रैक्चर, इसका कारण और निवारण. इस संबंध में यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपका कोई सवाल है, तो आज बाद दोपहर 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक आप हमें कॉल करें. हमारे नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619. हमें आपकी फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा. और अब आपको इंतज़ार होगा सुरबहार प्रोग्राम के अगले गाने का. और ये गाना है ध्वनि भानुशाली और जुबिन नौटियाल की आवाज़ों में.

0: अभी आपने धोनी भानुशाली और जुबिन नौटियाल की आवाज़ों में ये गीत सुना। इसी गीत के साथ ही अब आज का सुरबहार प्रोग्राम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 11:30 हुए हैं। अगला प्रोग्राम संजीवनी। नमस्कार श्रोताओं, आज के संजीवनी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अनिल पुंज। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर संदीप कुमार भाटिया। आज हमें गट हेल्थ के बारे में जानकारी देंगे, आंतों का स्वास्थ्य क्या है विस्तार से समझाएंगे। संदीप कुमार भाटिया जी, आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद सर। मैं सभी श्रोताओं को अपना नमस्कार देता हूं और धन्यवाद करता हूं ऑल इंडिया रेडियो का।
0: जैसा कि मैंने कहा कि गट हेल्थ के बारे में आपसे जानकारी लेंगे, उसकी वजह एक ये भी है कि आजकल सोशल मीडिया पर आए दिन गट हेल्थ के बारे में इतना कुछ चलता है कि गट हेल्थ के लिए ये खाएं, गट हेल्थ के लिए ऐसा करें, तो हमने सोचा क्यों ना आयुर्वेदाचार्य को बुलाया जाए और गट हेल्थ के बारे में विस्तार से जानकारी ली जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आप हमें बताइए, ये गट हेल्थ असल में है क्या?
1: सर, बेसिकली अगर हम गट हेल्थ की बात करते हैं तो हम अपनी अग्नि की बात करते हैं, डाइजेस्टिव फायर की बात करते हैं।
0: अच्छा, जठराग्नि के बारे
1: में। जठराग्नि की बात करते हैं सर। नॉर्मली क्या होता है ना सर, जैसे हम सबको पता है कि हमारी जठराग्नि होती है जो हमारे खाने का पाचन करती है। वैसे अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नि होती है, जिसमें से 13 प्रकार की,
0: 13 प्रकार की अग्नि,
1: 13 प्रकार की अग्नि होती है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण होती है जठराग्नि। और उसके बाद हमारी धातु अग्नि आती है, पंच महाभूत अग्नि आती है, और जो हमारी जठराग्नि है वो इन सभी प्रकार की बाकी 12 अग्नियों को बल प्रदान करती है।
0: ये प्रबल है।
1: प्रबल, प्रबल, बिल्कुल प्रबल है सर। और वैसे भी अगर हम देखें हमारा जो शरीर है सर, अगर हम बेसिस की बात करें, बेस की बात करें, हमेशा हमें अपने रूट्स की बात करनी चाहिए। अगर हम अपने शरीर की बात करें तो हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है, तो कोई भी चीज़ है पंच महाभूतिक ही है, और जो हम आहार खा रहे हैं वो भी पंच महाभूतिक है। हाँ, जो जठराग्नि है उसमें किसी एक महाभूत की प्रधानता ज़्यादा है, जैसे कि अग्नि महाभूत की प्रधानता ज़्यादा है, और वही हमारी जठराग्नि है। और जो भी हम आहार खाएंगे, फिर वो आहार का जब पाचन होगा तो उसकी अब्सॉर्प्शन भी पंचमहाभूत के हिसाब से ही होनी है सर।
0: यानी देसी भाषा में कहें तो हमारे शरीर की भट्टी है।
1: हाँ, शरीर की भट्टी है, बिल्कुल शरीर की भट्टी है, बिल्कुल। और अगर हम बात भी करें सर, तो सभी रोगों का कारण, आप आयुर्वेद में चरक संहिता देख लो, शुश्रु संहिता देख लो, भागवत संहिता देख लो, जो हमारी मेन संहिता है आयुर्वेद की, उन सब में यही बताया गया है कि जो हमारी जठराग्नि है वही स्वास्थ्य का मूल भी है और वही सभी रोगों का मूल भी है। छोटी सी कोटेशन है रोगा सर।

0: क्लेशां मंदाग्नि की, बेसिकली
1: जी, जी.
0: अगर अग्नि मंद रहेगी तो वही सभी रोगों का कारण है. तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो जो हमारा गट हेल्थ है वो हमारी अग्नि पे डिपेंड करता है, और अग्नि हमारी कैसे ठीक रहेगी वो हमारे आहार विहार पे डिपेंड करता जी, है जी.
1: उसके बारे में हम प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में बात करेंगे.
0: बिल्कुल सर.
1: अभी आपसे इसके बारे में और जानना चाहेंगे, आपने कहा कि जब हमारी अग्नि या जठराग्नि मंद रहेगी तो वहां रोग जो हैं वो पनपेंगे.
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल.
1: तो सुनने में ये भी आता है कि अग्नि जो है मंद होती है, तीव्र होती है या विषम होती है. तो ये तीनों अवस्थाओं को समझाइए और इसमें से कौन सी अवस्था जो है वो हमारे शरीर के लिए बेहतर है.
0: सर, अगर हम अग्नि की, जैसे हमने बात की कि अग्नि हमारी 13 प्रकार की होती है जिसमें मूल अग्नि जठराग्नि है, और हम अगर अग्नि के और प्रकारों की बात करेंगे तो अग्नि और तरह से 4 प्रकार की भी होती है, जिसमें से तीक्ष्ण अग्नि, मंद अग्नि, विषम अग्नि, ये तीनों अग्नियाँ दूषित अग्नियाँ हैं. और
1: अच्छा.
0: हाँ, और एक अग्नि होती है सर सम अग्नि. हमें अपनी अग्नि को सम रखना है
1: इन तीनों के अलावा.
0: हाँ, इन तीनों के अलावा हमने अपनी अग्नि को सम रखना है. सबने त्रिदोष का कंसेप्ट सुना होगा
1: जी,
0: कि
1: जी,
0: हमारे
1: जी.
0: शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ.
1: जी.
0: वैसे ही अगर हम अग्नि की बात करें, अगर वात बड़ा रहेगा तो वो विषम अग्नि रह जाएगी, अगर पित्त बड़ा रहेगा तो वो तीक्ष्ण अग्नि हो जाएगी, अगर कफ बड़ा रहेगा तो वो मंद अग्नि हो जाएगी. और उसी प्रकार से जिस प्रकार की अग्नि जैसी रहेगी उसी प्रकार से उस दोष के अनुसार उसमें रोग उत्पन्न होंगे. हमें अपनी अग्नि को सम रखना है.
1: हमें अपनी अग्नि को
0: सम रखना है.
1: यानी बैलेंस रखना है.
0: बैलेंस रखना है, बिल्कुल सर.
1: आपने कहा कि ना मंद हो, ना तीव्र हो, ना विषम हो, लेकिन सम हो, है ना.
0: बिल्कुल.
1: अगर
0: सर,
1: सम है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
0: अच्छा रहेगा, बिल्कुल.
1: तो जो हमने गट हेल्थ का मतलब है हमारी जो आंत है,
0: बिल्कुल.
1: तो इसके खराब होने के लक्षण क्या होते हैं? ये क्या बहुत ही डेलिकेट अपने आप में एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का?
0: हाँ सर, बिल्कुल डेलिकेट है. अगर मैं बात करूँ पूरे शरीर में से बात करूँ तो अग्नि सबसे प्रधान है, है ना. अगर आप अच्छा, अगर आपकी अग्नि अच्छी रहेगी तो आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और उसी पर डिपेंड करेगा आपका ओवरऑल ग्रोथ, आपकी सोसाइटी का ग्रोथ और आपका खुद का भी ग्रोथ.
1: जी.
0: तो अग्नि बहुत महत्वपूर्ण है. लोग बोलते हैं ब्रेन बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी अग्नि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहीं से सारी एनर्जी रिसोर्सेस हमारे शरीर को जानी है. मैं 2-3 मिनट और लेना चाहूंगा, थोड़ा सा हल्का सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जाना चाहूंगा
1: जी,
0: इसकी अग्नि.
1: श्योर.
0: एक होता है दिनचर्या, एक होता है सर ऋतुचर्या, है ना. अगर हमने अपनी अग्नि को सम रखना है तो सम अग्नि रखने के लिए डिपेंड करता है कि हम कैसा आहार ले रहे हैं, कैसा विहार ले रहे हैं. अगर हम विहार की बात करें, और सर शायद आप भी इस चीज़ को फॉलो करते होंगे, अगर हम विहार की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने कोशिश ये करनी है कि आपने प्रॉपर स्लीप लेनी है. स्लीप पैटर्न आपका प्रॉपर होना चाहिए, मीन्स एटलीस्ट
1: आपकी नींद है.
0: हाँ, नींद प्रॉपर होनी चाहिए सर. अगर आप नींद प्रॉपर नहीं लोगे, है ना, तो आपकी अग्नि भी विषम, जैसे कभी ज्यादा सो लिए, कभी कम सो लिए, कभी टाइम से नहीं सोए, तो उससे भी अग्नि आपकी इफेक्ट होती है. प्रॉपर नींद सर यही है. प्रॉपर नींद को मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जो मैं चीज़ें मैंने खुद पे की, इंप्लीमेंट की, वही मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ. जब मैंने अरविंद में पढ़ी, खुद पे इंप्लीमेंट की, फिर लोगों को एडवाइस किया.
1: आपने पढ़ा, फिर अपने आप पर
0: प्रैक्टिकल किया, फिर ही एडवाइस, क्योंकि हमें पता है रिजल्ट क्या होते हैं उसके रिजल्ट. तो अगर हम विहार की बात करें तो विहार में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एटलीस्ट 10-11 तक सो जाना चाहिए. वो भी मैं लीस्ट एटलीस्ट बोल रहा हूँ, अर्ली तो 9-9:30 बजे सो जाना चाहिए, और सुबह एटलीस्ट 4:30 या 5:30 मैक्स उठ जाना चाहिए. 6-7 आवर्स की स्लीप जरूरी है सर, आइडियली तो 7 आवर्स की स्लीप जरूरी है.
1: और डॉक्टर संदीप, यहाँ मैं आपको रोकता हूँ. कुछ लोग ये कहते हैं कि 6 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए हमें सोना है, तो मैं जितनी भी मर्जी रात को सोऊं, सुबह मुझे 6 घंटे पूरे करने?
0: नहीं सर, ऐसा नहीं होता. देखो, आयुर्वेद में नेचर की बात करें तो हर चीज का एक टाइम है. अगर अंधेरा हो रहा है तो सोने का टाइम है. कई लोग जैसे बोलते हैं मैं 1 बजे सोए, सुबह 8 बजे उठे, तो वो मेरे को नहीं लगता प्रैक्टिकली वो.
1: हाँ, उनका लॉजिक ये होता है,
0: लॉजिक गलत है.
1: 6 घंटे के लिए सोना है?
0: रात सोने के लिए होती है, दिन जागने के लिए होता है. तो आइडियल स्लीपिंग टाइम इज बिटवीन 9-5. आप 11-6 कर लो, चलो वो भी चलेगा, नो इश्यू. तो ये स्लीपिंग पैटर्न इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद आप दिन में जो आपकी थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटीज भी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए 1-2 आवर्स की. तो ये हमारा विहार का पैटर्न हो गया, है ना. बाकी ऋतु के अनुसार तो अलग अलग चलता है सर, लेकिन हमारी डेली हैबिट्स में एक तो विहार हमारा ऐसा होना चाहिए. सेकंड इम्पॉर्टेंट इज आहार. सर, एक चरक में श्लोक है, भागवतो चरक में मिलता जुलता श्लोक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि षष्ठी चावल शाली चावल, मुदक सैंदव आमलक, है ना. मूंग की दाल होगी, सैंदव नमक हो गया, आंवला हो गया, आंतरिक्ष जल हो गया, पय हो गया यानी कि दूध हो गया, घृत हो गया, और जंगल जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए जंगल मांस रस हो गया.
1: अच्छा, वहां इसका वर्णन है?
0: हाँ, ये वर्णन है सर. मतलब ये चीजें

0: कॉमनली आप किसी भी ऋतु में सेवन कर सकते हो। ये इन्होंने बोला है कि ये ऐसा आहार है जो हमें डेली यूज करना चाहिए। चावल में सस्टिक शाली या शाली चावल, आजकल तुम सफेद चावल खाते हैं ना सर, है ना, वो वाले नहीं
1: जी।
0: रेड राइस सबसे बेस्ट है, ठीक है, व्हाइट राइस इज नॉट बैड, है ना, खाने के लिए खा सकते हो। तो सस्टिक शाली उन्होंने बोला है, यव सर, आजकल जैसे हम मिलेट्स की बात करते हैं, आजकल की मिलेट्स इज वेरी गुड फॉर गट हेल्थ। आयुर्वेद की अगर हम बात करें, जो आजकल मॉडर्न में सर बात की जा रही है ना, सेम ही आयुर्वेद का ही फंडा था इतने सालों पहले, वो यव को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, है ना, यव सबने सुना होगा, है ना। तो यव में हाई इन फाइबर, है ना, हाई इन न्यूट्रिएंट्स, है ना, और साथ में जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए तो सबसे बेस्ट है, अमृत है सर यव अगर हम बोले, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जैसे घृत हो गया, दूध हो गया, मधु हो गया, है ना, और जो नॉन वेज उनके लिए जंगल मासरस हो गया, है ना, मीन जंगल देश में जो एनिमल्स हैं उनका मासरस हो गया
1: जंगल।
0: हाँ जंगल सर, तीन देश होते हैं, साधारण जंगल और अनूप, अनूप यानी कि कोस्टल रीजन। मींस अगर आप सर, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है सप्लीमेंटेशन, एक होती है फोर्टिफिकेशन, अगर हम आज के ज़माने के हिसाब से देखें। सप्लीमेंटेशन, किसी का खून कम है, हीमोग्लोबिन 8 है 7 है, तो उसको आयरन की टैबलेट देंगे, डेट इज सप्लीमेंटेशन। अगर

0: जंगल मासरस हो गया है ना, मीन जंगल देश में जो एनिमल्स हैं उनका मासरस हो गया ये।
1: जंगल
0: हाँ जंगल, सर तीन देश होते हैं, साधारण जंगल और अनूप। अनूप यानी कि कोस्टल रीजन। मीन्स अगर आप सर, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है सप्लीमेंटेशन, एक होती है फोर्टिफिकेशन। अगर हम आज के ज़माने के
1: जी
0: हिसाब से
1: जी जी
0: देखें,
1: जी
0: सप्लीमेंटेशन, किसी का खून कम है, हीमोग्लोबिन 8 है 7 है,
1: उसे
0: तो हम उसको आयरन
1: बढ़ाना
0: की टैबलेट देंगे,
1: है।
0: डेट इज़
1: हाँ
0: सप्लीमेंटेशन।
1: जी
0: अगर किसी का खून कम है और हमने उसमें खाने में कुछ, जैसे कि हमने घी या तोरी, टिंडा, पालक साग, बीन, ब्रोकली, मेथी, ये सारे हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जो फाइबर और आयरन रिच है, तो हमने क्या किया, उसको मैश करके बॉईल किया है ना, उसकी प्यूरी बनाई और उस प्यूरी से आटा गूंद लिया, उसी प्यूरी को हमने दाल में पानी की जगह उसको डाल दिया, उसका डोसा बना लिया, डैट इज़ फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड
1: जी जी
0: है
1: जी
0: ना।
1: जी
0: तो जब भी हमने आटा लेना है, विहार आहार की बात करें, तो आटे में हमने कभी भी होलसम कनक का आटा नहीं यूज़ करना सर। बेटर है अगर आप जो यव ऐड कर लो, रागी ऐड कर लो, बाजरा ऐड कर लो, सबसे बेस्ट है सर।
1: मतलब गेहूं की बात आप कर रहे हैं,
0: गेहूं तो सर आयुर्वेद में एक मेंशन ही नहीं है
1: उसका कोई
0: कि
1: जिक्र ही
0: नहीं
1: नहीं
0: है,
1: है। हाँ
0: लेकिन हम पीछे से गेहूं यूज़ करते आ रहे हैं और हमें लगता है हम पहले से यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा एशियंट का कुछ ऐसा होगा, नहीं। मॉडर्न आजकल मिलेट्स की बात कर रहा है, आयुर्वेद ने हजारों साल पहले मिलेट्स को ही जोर दिया हुआ था,
1: जी जी जी
0: इसलिए उस
1: और
0: टाइम
1: अब
0: पे,
1: फिर हम मिलिट पे आ
0: हाँ
1: रहे
0: इसलिए हम
1: हैं।
0: फिर से मिलट्स पे आ गए सर। तो आहार
1: अच्छा
0: विहार बहुत इंपॉर्टेंट है अग्नि को सही रखने के लिए।
1: जी, आहार विहार के बारे में आपने बात की, लेकिन इससे पहले जो मेरा सवाल आपसे ये था कि गट हेल्थ के खराब होने के कारण क्या है,
0: सर गट हेल्थ के खराब होने के कारण, जैसे हमने आपने
1: और होता क्या है जब गट हेल्थ
0: हाँ
1: खराब होती है, एक व्यक्ति को कैसा महसूस होता है और क्या प्रभाव क्या आता है उस पर।
0: सर, अगर हम आज की डाटा में देखें तो 90% ऑफ पॉपुलेशन की गट हेल्थ खराब ही है, 90 to 95% पॉपुलेशन की गट हेल्थ खराब है, इन फॉर्म ऑफ ब्लोटिंग, इन फॉर्म ऑफ एसिडिटी, इन फॉर्म ऑफ डिक्रीज एपिटाइट, भूख नहीं लगना, खाना नहीं पचना, गैस बनना, पेट में फारा सा बनना, कब्जी आना, या फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा में स्टूल आना, जैसे खाना खाया वैसे ही ऐसा होना कि हमने स्टूल पास करना है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, मतलब 90 to 95% सर मैं आपको बोलूँगा सबकी गट हेल्थ खराब है। कारण क्या है गट हेल्थ खराब होने के, जैसे आपने अग्नि की बात की कि अग्नि तीक्ष्ण होती है, मंद होती है, विषम होती है, अगर हम इरेगुलर फूड हैबिट्स रखेंगे सर, जैसे मैंने आज ब्रेकफास्ट 8 बजे किया, कल मैंने ब्रेकफास्ट 10 बजे किया, परसों मैंने किया ही नहीं, मैंने ब्रंच कर लिया उसके बाद, या फिर मैंने डिनर, आइडल डिनर टाइम सर, जैसे तो आयुर्वेद में लिखा है कि सूर्यास्त से पहले हमें डिनर कर लेना है,
1: वही आपसे ये पूछने
0: सूर्यास्त
1: वाला
0: से
1: था
0: पहले।
1: मैं कि क्या रात का खाना खाना चाहिए।
0: सर रात का
1: रात
0: खाना,
1: का खाना नहीं कह रहा हूं, क्या रात को खाना चाहिए।
0: सर बिल्कुल खाना हमें रात को खाना चाहिए, बट वो खाना हमें, अगर हम सूर्यास्त की बात करें तो चलो गर्मियों में तो सूर्यास्त लेट होता है, मे बी 7 7:30,
1: सर्दियों में तो बहुत
0: सर्दियों
1: जल्दी
0: में
1: होता
0: फाइव
1: है।
0: फाइव थर्टी
1: हाँ जी
0: तो
1: जी
0: आइडियल टाइम, जो प्रैक्टिकली मैंने भी देखा है। मैं सर, मेरा भाई IT सॉफ्टवेयर में है, मैं पहले आयुर्वेद को इतना फॉलो नहीं करता था, वो ज़्यादा फॉलो करता था, तो जब मैंने
1: अच्छा
0: उस पर प्रैक्टिकल रिजल्ट
1: हाँ
0: देखे तो
1: हाँ
0: मैं उससे प्रभावित हुआ। क्या होता
1: अच्छा,
0: है ना, जो
1: ये उल्टा
0: चीज़,
1: हो
0: ये उल्टा हो गया, जो चीज़
1: गया।
0: आपके पास होती है आप उसके बारे में इतना
1: उसकी
0: नहीं
1: कीमत
0: सोचते,
1: नहीं
0: कीमत नहीं
1: जानते।
0: जानते,
1: हाँ
0: तो उसका सर एक रूल होता था कि उसने 6:30 तक खाना खा लेना
1: जी
0: है ना, तो उसकी गट हेल्थ बिल्कुल सही रहती है, कभी उसको ब्लोटिंग या कोई सिम्टम नहीं आया सर कभी भी,
1: जी
0: वो IT में है, तो मैंने भी वैसे स्टार्ट किया सर। फिर उसका एक फंडा ये भी था सर कि अगर हम विहार, विहार में मैं वापस जा रहा हूँ कि जैसे सर, वैसे तो ऑल सीजन हमें नॉर्मल पानी से ही नहाना चाहिए, वो भी आपकी अग्नि को सही रखता है,
1: सम
0: गट हेल्थ
1: रखता
0: को सम
1: है,
0: रखता है
1: सम
0: बिल्कुल।
1: रखता
0: अगर
1: है।
0: आप, जैसे कई लोग गर्मियों तक भी गर्म पानी से नहाते रहते हैं है ना, तो
1: सर्दियों में तो
0: हाँ
1: बहुत
0: सर्दियों में
1: तेज
0: बिल्कुल
1: गर्म पानी से नहाते हैं।
0: बिल्कुल, तो सर नलके का ल्यूक वार्म वाटर आता है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वही है सर, डिनर का आप बोल रहे थे, तो डिनर आइडली तो 6:30 भी नहीं, चलो आप 7 तक कर सकते हो, अगर आप 7 से लेट हो गए तो आप डिनर ना करो, बेस्ट है
1: स्किप कर दो
0: स्किप कर दो सर।
1: जी।
0: एक फंडा हमेशा याद रखना है सर, जैसे मैंने आपको वो श्लोक बताया कि षष्टिशाली सैंधव, सैंधव नमक में सैंधव, आम्लक अम्ल होता है डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, यव हो गया, आंतरिक्ष जल हो गया, पय हो गया, मधु हो गया, ये हमने कॉमनली यूज़ करनी है अपनी डेली लाइफ में गट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो पय यानी कि दूध, रात को सोते टाइम सर दूध लेना बहुत इंपॉर्टेंट है,
1: अच्छा,
0: एक टाइम दूध लेना सर,
1: ये
0: सिर्फ
1: दूध गर्म लेना है।
0: गर्म बिल्कुल सर। आपने सर कोई भी चीज़ अगर खानी है, खाना खाना है या फिर दूध पीना है, तो हमेशा आप, अगर हम चरक में जाएं, चरक में जैसे कि आहार विशेष आयतन बताए हैं कैसे खाना खाना है, भागवत में भी बताए हैं आहार विशेष आयतन, सुश्रुत में भी बताए हैं द्वादश अश्विन विचार बताए हैं कैसे आपको खाना खाना है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लिखा है खाना मस्ट बी होट, मतलब खाने लायक, मतलब गर्म होना चाहिए। है ना, ठंडा खाना कभी
1: नहीं होना चाहिए।
0: सर ठंडा खाना, वो ग्रीष्म ऋतु अलग है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन खाना हमेशा गर्म होना चाहिए सर। तो गट हेल्थ, अग्नि खराब होने का फिर गट हेल्थ खराब होने के कारण यही है सर। अगर आप इरेगुलर फूड हैबिट्स रखेंगे तो अग्नि आपकी विषम हो जाएगी, जो अगेन दोषाग्नि है।

0: विषम अग्नि से, व से विषम अग्नि, व से वात बढ़ेगा, है ना। अगर आप कोई स्पाइसी फूड खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, तो उससे आपकी अग्नि मंद हो सकती है, तीक्ष्ण हो सकती है, वही पित्त और कफ बढ़ेगा, अग्नि सम नहीं रहेगी। आजकल बहुत ज़्यादा सर ऐसे चलता है, जैसे इरेगुलर फूड हैबिट्स हैं, जंक फूड की तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं, प्रोसेस फूड की तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं। फिर अगर हम बात करें, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स हैं, स्लीपिंग पैटर्न प्रॉपर नहीं है, ये सब कारण है सर हमारे अग्नि के खराब होने के। सबसे इम्पोर्टेंट
1: वो जो आपने सम कहा है, वो हिल जाता है,
0: वो पूरी तरह से
1: वो ट्रैक से उतर जाता है।
0: बिल्कुल सर, 95% का ट्रैक से उतरा हुआ है अभी
1: तो,
0: भी।
1: डॉक्टर संदीप कुमार भाटिया, आप गट हेल्थ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। आपकी बातों से एक रुचि पैदा हो गई है कि इसके बारे में और भी जाने समझें, क्योंकि गट हेल्थ, जैसा कि आपने कहा कि अगर स्वस्थ है तो आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों तरह से जो है प्रसन्न चित रहेगा।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
1: और आप रोगों से मुक्त रहेंगे।
0: बिल्कुल।
1: तो डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है और एक हम अपने मेहमान की पसंद का गाना भी शामिल करते हैं, तो यहाँ रुकते हैं, संगीतमय माहौल बनाते हैं, आपके पसंद का गाना शामिल करते हैं।
0: हाँ जी,
1: उसके बाद फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।
0: ठीक है सर।
1: तो बताइए अपनी पसंद का गाना।
0: सर एक थोड़ा पुराना गाना है, मतलब पर काफ़ी अच्छा गाना है, लग जा गले वाला,
1: बहुत ही प्यारा गाना है।
0: यस सर
1: जी, सुकून देता है ये,
0: सुकून देता है सर, गट को भी सुकून देगा, मन को भी सुकून देगा, दोनों को सुकून देगा।

0: एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं आयुर्वेदाचार्य संदीप कुमार भाटिया, गट हेल्थ के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर भाटिया,
1: यस सर, सुबह उठ के सर सबसे पहले तो हमें 2-3 ग्लास गुनगुने पानी के पीने चाहिए।
0: 2 या 3?
1: 3 ग्लास, डिपेंडिंग ऑन सर अपनी अपनी कैपेसिटी है लोगों की, तो 2-3 ग्लास तो सर, मतलब 2 to 3 ग्लास, 3 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं।
0: ये तो सुबह उठते पहला काम ही,
1: सुबह उठते सर पहला काम ही होना चाहिए। और अगर कोई शुगर का मरीज है, किसी को वेट लॉस करना है, किसी के थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का भी इशू रहता है गट हेल्थ में, तो वो उस पानी के साथ त्रिफला चूर्ण का भी यूज़ कर सकता है कि 2 teaspoon त्रिफला चूर्ण के डाले ल्यूकवॉर्म वाटर में और उसके साथ उसका सेवन।
0: अच्छा,
1: कर लिए।
0: डॉक्टर भाटिया, आपने त्रिफला के बारे में बात की है, बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं वो ये भी बताते हैं कि त्रिफला शाम को 5 बजे के करीब लेना चाहिए या रात को सोते वक्त दूध के साथ लेना चाहिए। आप कह रहे हैं कि सुबह भी लेना चाहिए।
1: सर त्रिफला एक तरह से
0: किसी खास स्थिति के लिए तो अलग टाइम हो सकता है,
1: हाँ सर,
0: लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए
1: सर त्रिफला एक तरह का रसायन है, बट अगर हम सिंपल इसका सिंपल चूर्ण का भी सेवन करें ना सर, तो वो बेनिफिशियल बहुत ज्यादा है। और आइडियली तो सुबह शाम दोनों टाइम इसका सेवन करना चाहिए, सुबह उठते खाली पेट पानी के साथ ले लें और रात को सोते टाइम भी ले सकते हैं सर।
0: सुबह
1: शाम को जरूरत नहीं,
0: शाम को ले सकते हैं पानी के साथ या दूध के साथ।
1: गुनगुने पानी के साथ बेटर है या फिर मधु के साथ ले सकते हैं, शहद के साथ ले सकते हैं सर। भोजन के साथ पानी पीने का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है गट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए
0: जी।
1: जो मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रहा हूँ, जो संहिता में भी मेंशन है भागवत संहिता में, कि भोजन से हाफ एन आवर पहले तक तो पानी सर नहीं लेना चाहिए और भोजन के तुरंत बाद भी पानी नहीं लेना, एटलीस्ट 45 मिनट्स तक।

0: लेना
1: जी।
0: अगर आप पानी को बीच में पियोगे भोजन के बीच में, तो वो अमृत के समान है।
1: तो कितना पीना है?
0: सिप्स सर, 2-3 सिप्स, और वो भी ल्यूक वार्म होना चाहिए।
1: कहने का मतलब ये है कि भोजन के बीच में पानी लेना
0: ले सकते हैं,
1: वर्जित नहीं है?
0: वर्जित नहीं है, बिल्कुल वर्जित नहीं है। कभी भी क्या होता है ना सर, अगर आप कोई चीज़ असाथ में आपके लिए और आप उसका सेवन कर रहे हो, आपको उसको धीरे धीरे छोड़ के साथ में की तरफ आना है अपनी हेल्थ के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि वेग हमने धारण नहीं करने की, भूख प्यास लग रही है तो पानी पीना है, लेकिन आइडियली ये है, खाना खाने से 45 मिनट्स पहले और खाना खाने के 45 मिनट्स के बाद में पानी नहीं लेना गट हेल्थ के लिए। बीच में आप 1-2 सिप्स पानी ले सकते हो, नो इशू,
1: नो इशू। अच्छा, पानी ये बताइए कि दिन भर में पानी कितना पीना चाहिए?
0: सर आइडियली अगर हम बात करें, हमारी जो बॉडी होती है ना सर, 2/3 हमारा बॉडी का वेट लिक्विड ही है, पानी ही है
1: जी,
0: है ना। और जो हम डेली एक्टिविटी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो हमारे हमारा जो फंक्शन यूनिट है हमारी बॉडी का, सेल्स को हाइड्रेट करने के लिए हमें उस लिक्विड क्वांटिटी को बना के रखना है। हम जो भी चीज़ खा रहे हैं उसको किडनी फिल्टर कर रही है, कोई भी ड्रग ले रहे हैं उसको फिल्टर कर रही है, तो उसके लिए भी हमें पानी पर्याप्त मात्रा में लेना है। तो आइडियली 4-6, मतलब कि 4-6 लीटर तो आपको लेना है सर आइडियली,
1: जी।
0: और डिपेंड करता है सर बॉडी वेट पे।
1: एक आपने अपनी बातचीत में नमक के बारे में बताया था, सेंधा नमक के बारे
0: नमक
1: में,
0: सर।
1: लेकिन आजकल ये भी कहा जा रहा है कि आपको सफेद नमक भी इस्तेमाल करना चाहिए।
0: सर वो ये एक्चुअली क्या है कि जैसे हम गोइटर की बात करते हैं, थायराइड की बात करते हैं, तो अभी हमने सप्लीमेंटेशन और फोर्टिफिकेशन की बात की, तो जो हमारा जो सफेद नमक है उसमें आयरन की फोर्टिफिकेशन है,
1: आयोडीन की बात,
0: आयोडीन, बिल्कुल सर आयोडीन की। जैसे हम शुरू में मैंने वही षष्ठीशाली या जब से बोला था, हमने कॉमनली यूज करना है, जिसमें नमक में सेंधा नमक इज श्रेष्ठ, हमने दोनों यूज करने हैं।
1: तो क्या दोनों मिक्स करके भी
0: मिक्स
1: खाए जा
0: सकते हैं? नो इशू सर, बिल्कुल कर सकते हैं मिक्स, कोई इशू नहीं है। जो भी हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, सब में कुछ ना कुछ पर्याप्त मात्रा में थोड़ा बहुत आयोडीन होता है। हाँ, जो हमारा नमक है उसमें हमने आयोडीन की फोर्टिफिकेशन की हुई है, तो उससे हमें डायरेक्ट सप्लीमेंटेशन तो उसका मिल ही रहा है, फोर्टिफिकेशन मिल ही रहा है।
1: जब खराब होती है गट हमारी, तो किस तरह से वो सामने आता है?
0: ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक जो आजकल हो रही हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है सर गट हेल्थ के खराब होने। और नसेट्स यानी कि नॉन स्टेराइडल जो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, अगर आप देखो किसी को खांसी होगी, कई लोग केमिस्ट के पास चले जाते हैं, या फिर जिनको नहीं नॉलेज है वो भी एंटीबायोटिक लिख देंगे। तो एंटीबायोटिक ओवर यूज बहुत इंपॉर्टेंट है गट हेल्थ को खराब करने के लिए
1: जी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना आप कुदरती माहौल में अपने शरीर को रखेंगे, अपने आप रहेंगे,
0: बिल्कुल
1: आपकी गट हेल्थ उतनी अच्छी रहेगी,
0: उतनी अच्छी रहेगी सर।
1: वैसे तो बहुत कुछ है खाने पीने के लिए, गट हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए मोटे तौर से?
0: सब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में अगर हम बोलें, मतलब वैसे तो टॉपिक बहुत बड़ा है अगर हम बात करें, और
1: संक्षिप्त में ही
0: तो अगर हम बात करें अपने डेली लाइफ के हिसाब से, सबसे इम्पोर्टेंट हमें प्रोसेस फूड अवॉइड करना है। पैकेट फूड टाइम दे लाइक बिस्किट, नमकीन, फ्रूट केक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, और प्रोसेस फूड में बर्गर, नूडल्स और पिज़्ज़ा, चाउमिन, ये सब चीज़ें सर, जो भी हमारा फूड प्रोसेस है और जो भी पैकेट फूड आइटम्स है, सबसे इम्पॉर्टेंट इनको अवॉइड करना। सेकंड, स्लीप पैटर्न को नॉर्मलाइज करना। थर्ड, रेगुलर योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, और थोड़ा बहुत रनिंग, जो भी आपको स्पोर्ट्स पसंद है उस स्पोर्ट्स को
1: खेलना, मतलब एक्टिव रहना,
0: एक्टिव रहना
1: जी।
0: एंड जो कॉमन चीज़ें हैं सर, जैसे मैंने आपको बताया कि घृत हो गया, सेंधव हो गया, आंवला हो गया, यव हो गया, सस्टिक शाली चावल, जितना आप अगर आपको मिलते हैं रेड राइस, और अगर इतनी हमारी पॉकेट अलाउ करती है ना, तो वो चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करना।
1: मोटा अनाज
0: बिल्कुल, मिलेट्स इंक्लूड करना। टाइम से सर खाना खाना, तीनों टाइम एक रेगुलर टाइम पे खाना खाना। अगर आप 3 की जगह 2 मील्स भी लोगे सर, वो भी बेस्ट है,
1: चलेगा।
0: 2 मील्स बेस्ट है, कोई इशू नहीं है। सुबह का खाना और शाम का खाना बेस्ट है। बीच में फ्रूट्स ले लीजिए खाने से पहले, और खाने के बाद पानी को अवॉइड करना। रात को सोते टाइम जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, दूध एक टाइम पे लेना सिर्फ रात को सोते टाइम। और सबसे इम्पोर्टेंट सर, खाने में घृत को ज़रूर ऐड करना। और जैसे सर अगर हम माय गवर्नमेंट की प्लेट की भी बात करें, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक अपनी प्लेट इंक्लूड की है, और आयुर्वेद की भी बात करें सर, तो हमारा जो एब्डोमेन है वो, अगर आयुर्वेद की बात करें, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें 1/2 पार्ट हमारा फूड का होता है सॉलिड का, और 1/3 पार्ट सर लिक्विड्स का होता है। उस लिक्विड में जूस आ सकता है, तक्कर आ सकता है, दही आ सकता है, और 1/3 पार्ट हमें खाली रखना है। 2 रोटी की भूख है सर, तो 1.5 रोटी खाई जाए,
1: जी जी जी,
0: मतलब 33% आपको वेकेंट रखना है। एक चीज़ गट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, दही और लस्सी, तक्कर। तक्कर को आयुर्वेद में भी बहुत इंपॉर्टेंट माना है सर, मैं
1: जिसको छाछ कहते हैं,
0: बिल्कुल छाछ कहते हैं सर। 3-4 साल पहले मैं एक कॉन्फ्रेंस में था, तो वहाँ पे सब लोग बैठे थे सर, कुछ पीजीआई से थे, कुछ अलग अलग क्लिनिक से थे, तो गट हेल्थ पे ही सर वो बहुत बड़े डीएम

0: कोई गेस्टों के वो ले रहे थे टॉक, तो उन्होंने सबसे पूछा कि बेस्ट प्रोबायोटिक क्या है आपके लिए, आप पेशेंट को बेस्ट प्रोबायोटिक क्या एडवाइस करोगे.
1: जी
0: सबने अलग अलग कंपनीज के नाम लिए, फिर बैक्टीरिया जो बेस्ट बैक्टीरिया होता है उसका नाम लिया. तो एक मैं अकेला उस कॉन्फ्रेंस में था जिसने तक्कर का
1: अच्छा
0: नाम लिया, और वो बहुत इम्प्रेस हुए मेरे से
1: हाँ
0: क्योंकि वही हमारा नेचुरल प्रोबायोटिक है सर. ये जो हमारे जो भी पैकेट में आते हैं कर्ड विद प्रोबायोटिक या फिर कुछ ऐसा वैसा जो भी आता है ना, बेस्ट इस तक्कर का आप यूज़ कीजिए घर पे. अगर आप अपने छाछ बनाई है तो उससे बेस्ट
1: छाछ
0: कुछ भी नहीं है सर.
1: लस्सी
0: बिल्कुल सर, आप गुजरात चले जाइए, जामनगर
1: हाँ
0: चले जाइए, वहाँ पे भी आयुर्वेद का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है. वो खाने के साथ आपको लस्सी देंगे ही देंगे,
1: जी। अच्छा, लस्सी पीने का उपयुक्त समय क्या है?
0: खाने के साथ सर.
1: दिन में कब तक, कितने बजे तक हम लस्सी का सेवन कर सकते
0: सर
1: हैं?
0: जब आप अपना लंच कर रहे हो, आप लंच के साथ लस्सी लो, एक गिलास फुल, नो इशू.
1: जैसे आप पानी पीने के लिए मना करते हैं, लेकिन लस्सी पीने के लिए मना नहीं करते
0: क्योंकि लस्सी
1: खाने
0: सर,
1: के साथ?
0: हाँ बिल्कुल सर, लस्सी मैं इसलिए मना नहीं करता क्योंकि अगर आप लस्सी में देखोगे तो लस्सी में अमल रस होगा, अमल रस अगेन अग्नि को बढ़ाता है सर,
1: अच्छा
0: डाइजेशन करेगा, प्लस लस्सी में प्रोबायोटिक्स भी होंगे, अच्छे बैक्टीरिया होंगे जो हमारे जो हम जो भी हमने खाना खाया है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे सर,
1: वो अग्नि को मंद नहीं करेगी।
0: अग्नि को मंद नहीं करेंगे
1: अच्छा
0: सर.
1: अच्छा अच्छा तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये बता दीजिए कि गर्मी के मौसम में, जैसे अब गर्मी का मौसम आ
0: यस सर,
1: गया
0: यस
1: है,
0: सर.
1: गर्मी के मौसम में हम जो गर्मी से जुड़ी चीज़ें वो खाएंगे, अपने आप को ठंडा रखने के लिए सब
0: बिल्कुल
1: कुछ
0: बिल्कुल
1: करेंगे,
0: बिल्कुल
1: लेकिन कौन सी ऐसी कोई खाने की चीज़ है जिसे शामिल करना ज़रूरी है गर्मी के मौसम में, आने वाली वर्षा ऋतु के मौसम में?
0: नॉर्मली क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय होना शुरू हो जाता है सर. वात का संचय यानी कि वात रुक्षता पैदा करता है शरीर में, डिहाइड्रेशन करेगा, पानी की कमी करेगा शरीर में,
1: ड्राइनेस।
0: ड्राइनेस करेगा सर. तो हमने उसको ठीक करना है. तो वात को ठीक करने के लिए सर हमने एक तो गर्मियों में स्निग्ध चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना है, स्निग्ध चीज़ का सेवन होना चाहिए, शीत चीज़ का सेवन होना चाहिए क्योंकि सूर्य का ताप भी बहुत ज़्यादा होता है. लघु आहार लेना है. आहार दो तरह का होता है सर, गुरु आहार और लघु आहार. लघु आहार ऑल सीजन, कोई भी सीजन ले लो, अग्नि को बढ़ाएगा, ज़्यादा मात्रा में भी खा लोगे तो नुकसान नहीं करेगा. गुरु आहार अग्नि को मंद करता है. आप गुरु आहार को पूरी मील के हाफ से ज़्यादा नहीं खा सकते, 1/3 से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए गुरु आहार को. तो ग्रीष्म ऋतु में एक तो कोई भी आहार लेना है, लघु लेना है सर, मिलेट्स को इंक्लूड करना है, और साथ में तक्कर ज़रूर लेनी है, दही आप ले सकते हो, और साथ में इसमें पानक, पानी की कमी नहीं होने देना, खाना लघु मात्रा में लेना है, मील आप दो लो. तो जो हमारी दो ऋतु है ना सर, ग्रीष्म और वर्षा, इस टाइम पे हमारा शरीर का बल भी सबसे मंद है और अग्नि का बल भी सबसे मंद है. तो इस टाइम पे हमने लघु आहार का सेवन करना है.
1: आजकल कांजी के बारे में भी सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चलता
0: हाँ
1: है।
0: जी सर,
1: कांजी, किस चीज़ की कांजी होनी चाहिए? वैसे आमतौर से तो हम काली गाजर की देखते हैं,
0: हाँ
1: वो ही पीते आए हैं, अब
0: बिल्कुल
1: लोग तरह तरह की कांजियां बता रहे हैं।
0: सर. वैसे अगर मैं आपको बात करूँ तो मुरिंगा एक
1: जी
0: प्लांट है
1: जी जी
0: सर, उसकी
1: मोरिंगा।
0: बेस्ट है सर, उसका आप बना सकते हो, उसका पाउडर बना के उसकी भी कांजी फॉर्म में उसका सेवन कर सकते हो सर.
1: वो पाउडर को पानी में
0: हाँ
1: डालना,
0: रेडीमेड पाउडर भी आता है
1: विद
0: सर,
1: विद राई,
0: हाँ विद,
1: नमक।
0: हाँ नमक,
1: हाँ
0: नींबू भी डाल दो सर आप टेस्ट के लिए,
1: अच्छा
0: कोई
1: अच्छा
0: इशू नहीं है. नींबू तो एक तरह से पाचन शक्ति को बढ़ाएगा है ना, कोई इशू नहीं है. वो मोरिंगा बेस्ट प्लांट है सर, मोरिंगा का आप सेवन कर सकते हो, उसकी भी कांजी का यूज़ कर सकते हो सर.
1: तो कांजी का इस्तेमाल आयुर्वेद में कुछ विशेष महीनों के लिए, दिनों के लिए बताया गया है?
0: सर वैसे अगर हम देखें ना सीजन्स के हिसाब से है, सीजन्स में जैसे हम बोल, अगर हम ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे थे तो इसमें रुक्षता बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें
1: जी
0: अपने अपने हमने शरीर को हाइड्रेट रखना है. तो हाइड्रेशन के लिए आप चाहे आयुर्वेद फॉर्म में हिम ले लो, पानक ले लो, मंथ ले लो, छाछ ले लो, कांजी ले लो, मतलब हाइड्रेट रखना है, वही है,
1: ठीक है, कांजी पीना बेहतर है ना?
0: बेहतर है सर, ले सकते
1: तो
0: हैं
1: इसे भी
0: बिल्कुल.
1: खाने के साथ पी सकते हैं कि अलग से?
0: नहीं सर, अलग से,
1: अलग
0: अलग
1: से।
0: से.
1: तो संदीप कुमार भाटिया जी, बातें तो बड़ी रोचक हैं, लेकिन समय जो अनुमति नहीं दे रहा। जाते जाते आप इस प्रोग्राम के जरिए कुछ कहना चाहें, कोई संदेश देना चाहें हमारे श्रोताओं के लिए?
0: अगर हम अपनी गट को हेल्दी रखेंगे तभी हम अपने शरीर का स्वास्थ्य मेंटेन कर सकते हैं.
1: डॉक्टर संदीप कुमार भाटिया, आप हमारे इस प्रोग्राम संजीवनी में आए और गट हेल्थ के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, विस्तार पूर्वक आपने समझाया कि हमारी जो गट हेल्थ है, हमारी जो अग्नि है, हमारी जो जठराग्नि है, वो सम अवस्था में रहनी चाहिए, ना मंद ना तीव्र ना विषम। सही है डॉक्टर साहब
0: बिल्कुल सर,
1: जी?
0: बिल्कुल.
1: तो इस प्रोग्राम में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ के संजीवनी प्रोग्राम में आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे अच्छा लगा यहाँ पे ये
1: जी,
0: प्रस्तुति देके.
1: इस प्रोग्राम में अपना तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथ ही आकाश भारद्वाज ने। प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी कालिया। अब अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आप सुन रही थी श्रोताओं कार्यक्रम संजीवनी। ये कार्यक्रम आपके लिए विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से प्रसारित किया गया। इस समय श्रोताओं दोपहर के 12 बजने को हैं। अब से बस थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में वर्तमान 7-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए विकास आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्दिस द्रोम्बोस्किस से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते और निवेश संरक्षण समझौते के लिए चल रही वार्ताओं पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल से 3 दिन की यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा और पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्वाव शिकोर्स्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है, साथ ही क्षेत्रीय घटनाक्रमों और आपसी हित के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरी मैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली NCR में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। इन कंपनियों ने नकद प्रबंधन व्यवस्था एजेंटों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सचिवों के माध्यम से सट्टेबाजी की रकम को नकदी में परिवर्तित किया। इन्होंने अवैध प्रेषण के माध्यम से देश से बाहर रकम भेजने में मदद की है। प्रवर्तन निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। ये परिसर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR और कोलकाता में स्थित हैं। नेपाल में जारी बचाव और राहत कार्यों में भारत हर संभव सहायता कर रहा है। आज नेपाल के लिए राहत और बचाव सामग्री लेकर 5वां भारतीय विमान रवाना हो गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि विमान में 11 सदस्यीय बचाव दल और 5 टन से अधिक जरूरी दवाएं भेजी गई हैं। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 11,000 से अधिक हो गई है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा के लिए भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार कल हुई इस वर्चुअल बैठक में व्यापार को सुगम बनाने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। 12:05 हुए हैं श्रोताओं, अब हमारा प्रसारण विविध भारती के मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे और सबसे पहले आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अपना देश फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और आज है विश्व नारियल दिवस, तो इस मौके पर यादों की महफिल कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं समुद्र नदी के किनारों पर फिल्माए कुछ गीत या उनसे संबंधित कुछ गीत जिसमें नावों का जिक्र हो।

मुकेश और साथियों की आवाज़ में उपहार फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम यादों की महफिल, और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अंतराल के बाद।

0: बंधे हाथ फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले की आवाज मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन की तर्ज।
1: कुछ रेशमी ख्वाब कुछ मखमली अंदाज
2: कहीं बेख्याल
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
3: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
4: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।

0: सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
0: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज सागर तट और नदी के किनारों की बातें हो रही हैं। तो सुनते हैं गीत।

0: खुशबू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, गुलजार ने इसे लिखा, राहुल देव बर्मन ने संगीत से सजाया।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
4: मेरा सारा साथ होगा।
0: और विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: रिश्ता कागज का फिल्म से गीत आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राजेश रोशन का संगीत। टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

सागर। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल, जिसमें आज सागर, सागर तट की बातें और माझी नैया की बातें भी हो रही हैं, उन्हीं से संबंधित गीत आपको सुनवा रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं कहो ना प्यार है फिल्म से ये गीत, जिसे गाया उदित नारायण और अलका याग्निक ने, सावन कुमार टाकने से लिखा, राजेश रोशन का संगीत।

कहो ना प्यार है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाजें, सावन कुमार टाक के बोल और राजेश रोशन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, यादों की महफिल।

0: साधना सरगम की आवाज में आप सुन रहे थे विश्वात्मा फिल्म से ये गीत, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने और वीजू शाह ने संगीत से सजाया। कार्यक्रम विद भारती पर आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: उड़ जा काले कावा,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती कैसेट लेने।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: ब्लू इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल के साथ साथियों की आवाजें, मयूरपुरी के बोल ए आर रहमान का संगीत।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

शाम 4 बजे तक हमारे स्टूडियोज में मौजूद रहेंगे डॉक्टर संजय बडाडा, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम का इस बार का विषय है हिप फ्रैक्चर, इसका कारण और निवारण। और इस विषय से संबंधित आप कोई प्रश्न पूछना चाहें, कोई जानकारी पाना चाहें, तो आज दोपहर आप हमें कॉल कर सकते हैं 3:30 से लेकर 4 बजे तक। टेलीफोन नंबर आप नोट कर लें, चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172 और टेलीफोन नंबर हैं 2660615, 2660617 और 2660619। तो याद रखिएगा, एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम में आज जिस विषय पर आप बातचीत करेंगे, सवाल करेंगे, वो है हिप फ्रैक्चर, इसके कारण और निवारण। आइए अब हम आपको अपने अब से लेकर रात तक के प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। श्रोता, आपसे बस थोड़ी ही देर में 1:05 पर और फिर शाम 6:10 पर आप प्रादेशिक हिंदी समाचार सुन पाएंगे। दोपहर 1:10 पर और फिर शाम 6:20 पर प्रादेशिक पंजाबी समाचार भी हम आपको सुनवाएंगे, जो हम अपने जालंधर केंद्र से रिले करेंगे। हमारे यहाँ से कुछ फिल्मी गीत सुन सकते हैं आप दोपहर 1:15 पर और फिर शाम 5:05 पर भी। विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुलीला सफ़र दोपहर 1:30 पर। वहीं से दोपहर 2 बजे हर रोज आप सुना करते हैं कार्यक्रम त्रिवेणी। आकाशवाणी दिल्ली से हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले किया करते हैं। श्रोताओं, आप समय नोट कर लें, दोपहर 2:15, शाम 5 बजे, शाम 6 बजे, रात 8:45 और फिर रात 11 बजे भी। मुंबई केंद्र से सदाबहार नगमे सुनिएगा दोपहर 2:30 पर। सखी सहेली कार्यक्रम होता है दोपहर 3 बजे। वहीं से शाम 4 बजे पिटारा कार्यक्रम सुनेंगे आज के मेहमान सिलसिले के तहत। इस कार्यक्रम में आज आप भेंट कर पाएंगे लेखिका ज्योति जैन के साथ। प्रायोजित कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे लम्हे शाम 5:20 पर। एक और प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का उमंग सुन सकते हैं आप शाम 5:30।

हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रही हैं श्रोताओं। एक पूछने वाला है, थोड़ी ही देर में हम आपको कार्यक्रमों का विवरण बताएंगे। उससे पहले कार्यक्रमों संबंधी एक सूचना आपको दे दी। श्रोताओं, एफएम लाइफलाइन लाइव प्रोग्राम में आज बाद दोपहर 3:30 से

श्रोताओ, हमारे यहाँ से शाम 6:30 पर आप कुछ पंजाबी गीत सुन पाएंगे। पंजाबी गीतों का कार्यक्रम सुर सांझ सुना करते हैं आप रात 10:32 पर। मुंबई केंद्र से सैनिक भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जयमाला सुनेंगे शाम 7:00। हम आपके लिए प्रादेशिक मुख्य समाचार भी प्रसारित किया करते हैं। आप समय नोट करें, शाम 7:45 और फिर रात 10:30 पर। आज रेडियो डायरी कार्यक्रम भी होगा श्रोताओं। समय है शाम 7:47। हवा महल कार्यक्रम आप मुंबई केंद्र से सुनते हैं रात 8:00। आज इसमें प्रहसन होगा विवाह यंत्र। कल आपने सुना था इसका पहला भाग, आज इसका दूसरा भाग सुन सकते हैं आप। रात 8:15 पर आज हमारे स्टूडियो से प्रसारित किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम फार्म टू सिटी। फिर विविध भारती के मुंबई केंद्र से फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए रात 9:00 होगा। आज के फनकार कार्यक्रम रात 9:30 पर, और फनकारा हैं आज की अभिनेत्री साधना। उद्घोषित की पसंद की फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत रात 10:00 होगा। तो श्रोताओ, ये था विवरण हमारे आज अब से लेकर रात तक के प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का। आपको हम एक बार फिर से याद दिला दें, एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम के लिए आज का विषय है हिप फ्रैक्चर, इसका कारण और निवारण।

0: आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं डॉक्टर संजय बडाडा के साथ, जो प्रोफेसर और हेड ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी हैं पीजीआई चंडीगढ़ में। टेलीफोन नंबर जल्दी से आपको फिर से बता दें, 2660615, 2660617 और 2660619 चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। टेलीफोन आप करेंगे हमें दोपहर 3:30 से लेकर 4 बजे तक। ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक हिंदी समाचार। इसके फौरन बाद श्रोताओं 1:10 पर प्रादेशिक पंजाबी समाचार हम आपके लिए अपने जालंधर केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
2: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुपुर्द करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता बताई।
2: भारत के भीतर निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गुंज, चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे, इन सारी चीजों को पार करते, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है।
1: सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए स्टॉक रखने की अधिकतम सीमा को 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दिया है। ये नया नियम 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगा। इसके तहत व्यापारी चीनी का कोई भी स्टॉक प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक नहीं रख सकेंगे। मौसम विभाग ने हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार आगामी दिनों में दोनों क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आने और लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। स्थानीय प्रशासन ने जलभराव और यातायात में संभावित व्यवधान को देखते हुए नागरिकों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए बफर स्टॉक की लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अनुसार दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर और वाराणसी समेत 19 प्रमुख शहरों में सस्ती दरों पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। मंत्रालय ने जानकारी दी है कि बफर स्टॉक से आपूर्ति शुरू होते ही बाजारों में प्याज की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही इस पहल के तहत करीब 3,400 किसानों को 210 करोड़ रुपए का सीधा भुगतान भी किया जा चुका है। हरियाणा सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से गन्नौर की तहसीलदार ललिता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विभाग की ओर से जारी आदेश में निलंबन के दौरान उनकी तैनाती का मुख्यालय भिवानी नीन उपायुक्त कार्यालय निर्धारित किया गया है। जींद के नागरिक अस्पताल में आज स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं को परखने के लिए राज्य मुख्यालय से 4 सदस्यीय कायाकल्प टीम ने औचक निरीक्षण किया। डॉक्टर पंकज के नेतृत्व में पहुंची टीम ने आपातकालीन सेवा, गहन चिकित्सा इकाई, पैथोलॉजी प्रयोगशाला, प्रसव कक्ष और बाह्य रोगी विभाग का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान इमरजेंसी वार्ड में सफाई व्यवस्था असंतोषजनक पाई गई और कुछ अन्य खामियों पर टीम ने नाराजगी जताते हुए सुधार के कड़े निर्देश

दिए। अस्पताल प्रशासन के अनुसार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है। कायाकल्प योजना के तहत 70% से अधिक अंक मिलने पर अस्पताल को नगद अवार्ड दिया जाएगा। टीम अपनी विस्तृत रिपोर्ट कल पंचकुला राज्य मुख्यालय को सौंपेगी। डॉक्टर पंकज के नेतृत्व में पहुंची टीम ने ये काम किया, जहां आपातकालीन सेवा, गहन चिकित्सा इकाई, पैथोलॉजी प्रयोगशाला, प्रसव कक्ष और बाह्य रोगी विभाग का गहन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान इमरजेंसी वार्ड सहित कई वार्डों में खामियां पाई गई, जिस पर टीम ने नाराजगी जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।

आज इस कार्यक्रम में इस समय हम आपको सुनवा रहे हैं अभिनेत्री साधना पर फिल्माए गए गीत। ये पहला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज़ में, राजा मेहदी अली खान का लिखा हुआ, धुन मदन मोहन की। फिल्म का नाम है मेरा साया।

0: आप फिल्म संगीत सुन रहे हैं, अगला गीत सुनवाते हैं आपको इस संदेश के बाद।
1: धीमे इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का

0: पर 95 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपये की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800-444 पर।
1: आइए अब सुनते हैं साधना पर फिल्माया गया प्रेम धवन का लिखा हुआ गीत, धुन रवि की। फिल्म का नाम है एक फूल दो माली।

वो कौन थी, आपने सुना इस फिल्म का गीत। और अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं आरजू फिल्म के लिए लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत।

0: तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको अभिनेत्री साधना पर फिल्माई गए गीत सुनवाए। अब से बस थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से सुनेंगे। बस थोड़ा सा इंतजार।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: अरोड़ा प्लाईवुड
1: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
2: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
0: हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं और अपने श्रोताओं को हम कार्यक्रमों संबंधी एक जानकारी दे दें। श्रोताओं, FM लाइफलाइन लाइव प्रोग्राम में आज बाद दोपहर 3:30 से 4 बजे तक हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद रहेंगे डॉक्टर संजय बडाडा, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ एंक्रोलॉजी PGI चंडीगढ़। आज का विषय है हिप फ्रैक्चर, इसका कारण और निवारण। आप डॉक्टर साहब से कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आप हमें टेलीफोन कीजिएगा 3:30 से लेकर शाम 4 बजे तक। टेलीफोन नंबर आप नोट करें 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का STD कोड है श्रोताओं 0172। तो याद रखिएगा, आज का विषय है हिप फ्रैक्चर, इसका कारण और निवारण। आपके टेलीफोन कॉल्स का हमें इंतज़ार रहेगा।

FM 107.2 MHz पर ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरीला सफर, और ये

0: कार्यक्रम हम आपके लिए विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।
1: सबसे बड़ा रुपया फिल्म का गीत आपने सुना महमूद और साथियों की आवाज में, और बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी लिख रहे हैं कि जो गीत हमने शुरुआती अंश सुनवाया था आपने बिल्कुल सही पहचाना, लावारिस फिल्म का गीत काहे पैसे पे इतना गुरूर करी है। ये गीत तो आपको सुनवाएंगे, लेकिन हमारे एक साथी कह रहे हैं कि तिजोरियां तो भर गई पर रूह भूखी रह गई, और ये आगे की बातें तो हमने पढ़ ली है। वैसे हमारे साथी कह रहे हैं कि पैसा सब कुछ नहीं हो सकता, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। और एक और साथी का कहना है कि वाकई दोस्तों पैसा खुदा नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। और हमारे एक और साथी का कहना है, क्या कह रहे हैं वो कहते हैं कि मुझे रोड पे 15,000 रुपये मिला था एक पर्स में, मैं उसे मोबाइल नंबर खोज कर दिया, जब मैंने फ़ोन किया तो वो मुझे अपशब्द कह रहे थे, लेकिन जब पैसे की बात की तो भाई बाप कहने लगे। तो यानी उनकी पूछ उन्होंने की अगर उनके पास पैसे थे, और पैसे गिरने पर वो बड़े परेशान थे। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पैसा दोस्ती प्यार और खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन ये वो चीज़ें खरीद सकता है जिससे हमें खुशी मिल सकती है। और इसका पैसे को बचाने के लिए हमें, मतलब सीक्रेट इज़ टू आइडेंटिफाई दोज थिंग, तो हमें का ये सीक्रेट है कि हम उन चीज़ों की पहचान करें। और कुछ चीज़ें तो हमें फ्री में भी मिल जाती हैं, जैसे कि लिसनिंग टू एयर विविध भारती, ऐसा इनका कहना है। अंग्रेज़ी में इन्होंने अपना कमेंट लिखा जैसे हमने हिंदी में सुनाया, और विविध भारती को सुनना तो फ्री में हो जाता है ऐसा इनका कहना है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इस तरह से सुनते हैं, हालांकि इंटरनेट पैक तो लगता ही होगा इसके लिए, लेकिन फिर भी आपके लिए जो ये मनोरंजन का खजाना है हम बिल्कुल मुफ्त में लाना चाहते हैं और लाते भी हैं। और आप भी हमसे जुड़ते हैं उसी मित्रता से, अपनत्व से, जो कि हमारे लिए अनमोल पूंजी है, जो हमें मिल जाती है मुफ्त में ही, लेकिन आप सभी हमसे जुड़े हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। पर लावारिस फिल्म का गीत क्यों ना सुने इस वक्त, सुनते हैं। और आपको ये बताना है कि संगीत किसका है इस गीत में।
2: चार पैसे क्या मिले, क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा तेरा।

लावारिस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। कल्याण जी आनंद जी ने संगीत से सजाया इस गीत को, यही हमारे सवाल का सही जवाब था। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हम लोग जब छोटे थे तब मेले में और भी सामान के साथ मिट्टी के गुल्लक लाते थे और समय समय पर मिलने वाले पैसे उसमें डाल देते थे। कुछ समय बाद तीज त्योहार पर खोल कर उन पैसों से मनचाही चीजें खरीद लेते थे। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि पैसे की पावर कोरोना काल में सबने देख ली, पैसा जरूरी नहीं, स्वास्थ्य जरूरी है। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मर जाने के बाद कोई रुपया पैसा साथ लेकर नहीं जाता, बात तो 16 आने सच है मगर जीते जी यही पैसा दुनिया का हालचाल बता जाता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि धन जीवन की सांसें चलाने के लिए जरूरी तो नहीं, जरूरी तो है पर दिल को मुस्कुराने की वजह सिर्फ वही दे ये मुमकिन नहीं। सिक्कों की खनक जेब को भारी तो करती है लेकिन आत्मा को खाली नहीं करती, वही हमारे आत्मा की खाली जगह को नहीं भरती, ऐसा कह रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सुबह की चाय के लिए दूध चाय पत्ती शक्कर रोज कमा कर रोज दुकान से लाते थे, उसके बाद चाय बनती थी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जितना भी हो सके कर्जा नहीं लेना चाहिए, थोड़ा कम खाएं पर उधार नहीं लेना चाहिए, फालतू के खर्चे ना करें, हमारा ये मानना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आजकल तो ये सिस्टम चल रहा है कि चीज़ें पहले ले लो और धीरे धीरे करके पैसे चुकाते रहो। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई लॉटरी तो छोड़िए, मुझे कभी रास्ते में पड़ा रुपया भी नहीं मिला, मुफ्त का पैसा मेरे पास कभी टिका ही नहीं। इस संबंध में मेरा अनुभव हास्यास्पद रहा है। एक बार हम झांसी से ग्वालियर आए तो वहां सासू माँ ने 100 रुपये दिए और मौसी सास ने भी 100 रुपये दिए। वहां से हमें आगरा जाना था, देर हो रही थी, टिकट ले लिए लेकिन सुपर फास्ट की टिकट खिड़की से उठाना भूल गया। ट्रेन जैसे ही आगरा पहुंची तभी टिकट चेकर आ गया, टिकट तो ठीक थे पर सुपर फास्ट के सप्लीमेंट्री टिकट न होने के कारण 220 रुपये पेनल्टी देनी पड़ी। इस तरह से मुफ्त में मिले नेक के 200 रुपये ग्वालियर से आगरा 2 घंटे भी नहीं टिके। भाई ये तो बड़ी ही अचंभत करने वाली बात है कि आपके पास इतनी जल्दी जो भी पैसे ऐसे मिलते हैं वो यूं ही उड़ जाते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरे पास यदि लाखों रुपए आ जाए, ये हमने ही पूछा था कि भाई अगर आपके पास लाखों रुपए आ जाए, लाखों तो नहीं कहा था कि जितने आपको मर्जी है उतने पैसे अगर आ जाएं तो आप क्या करेंगे, तो वो कह रहे हैं कि अगर लाखों रुपए आ जाएं तो सबसे पहले आलीशान घर बनवाऊंगा, उसके बाद एक लग्जरी कार खरीदूंगा, बस दिन भर इधर उधर घूमूंगा, जो दुखिया रहे हैं उनको थोड़ी मदद दूंगा। जिस गांव में यदि पानी की व्यवस्था नहीं होगी उस गांव में सबसे पहले पानी की टंकी और पानी की व्यवस्था करूंगा, जिस गांव में अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही उस गांव में एक स्कूल बनवाऊंगा, ऐसा इनका कहना है। हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि मान सम्मान की बात निराली, खाली जेब तो दुनिया खाली। और हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि धन बचाना अच्छा है लेकिन सबसे अच्छी बचत है अपने पूरे जीवन में कितने रिश्ते आप बचा पाए, अगर अपने रिश्ते ज्यादा बचा पाए तो वही सबसे बड़ी बचत है। धन तो आएगा चला जाएगा लेकिन जो अपने रिश्ते लोगों की भावनाएं बची वही सबसे बड़ी बचत है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पैसा कम हो तो दिक्कत, ज्यादा हो तो दिक्कत, मन में संतुष्टि होनी चाहिए। एक और साथी कह रहे हैं कि जब वो काम करते थे तब उन्होंने, इनका कमेंट अंग्रेजी में है, हम हिंदी में पढ़कर सुना रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब वो काम करते थे तो उन्होंने कुछ पैसे इस तरह से बचत कर दिए थे, इन्वेस्ट कर दिए थे किसी स्कीम में और उसके बाद वो उसे भूल गए और अपने काम में बिजी रहते थे तो भूल गए। और जब वो रिटायर हुए तो उन्हें एक लेटर आया और उसमें लिखा था कि कुछ अमाउंट पेंडिंग है उनके लिए। और जब उन्होंने

सारी फॉर्मेलिटीज उसकी निभा दी तो उन्हें पेपर वर्क करने के लिए बुलाया गया और पेपर वर्क के बाद उन्हें जो पैसे मिले वो 10 गुना ज्यादा थे, जितने पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए थे उससे 10 गुना ज्यादा थे और इन्हें उस वक्त लगा कि उनकी तो लॉटरी लग गई। तो भाई ऐसी लॉटरी भी होती है जिसके लिए हमने ही मेहनत की होती है, लेकिन जब भूल जाते हैं और पैसे मिलते हैं तो बड़ा आनंद आता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी पर्स में या जेब में पैसे रख के भूल गए और बहुत दिनों के बाद जब आपने उसे निकाला और पहना और वो पैसे आपको मिले तो कितना आनंद मिलता है? ऐसा कुछ हुआ तो हमसे साझा कीजिए और ये भी बताइए कि किस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: राजेंद्र जय धर्मेंद्र जय जय जय हो जय राजेंद्र
1: गोविंदम जय गोपालम जय गोविंदम जय गोपालम
0: जगत नारायण के छोड़ के संतो

0: पीछे पड़ गया इनकम टैक्स हम।
1: जय गोविंदम जय गोपाल।
0: अरे बम बम नाचे किशोर कुमार रम बम मको बम बम मको बम बम मको बम बम मको।
2: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
3: लिखा गीत तो नहीं आया अब तक, हम तुम और वो, ऐसा हमारे साथी ने फिल्म का नाम बताया, लेकिन आंसू और मुस्कान फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया। और हमारे साथी कह रहे हैं कि मेरी लॉटरी लग जाने वाली है, ये गीत भी बड़ा ही अच्छा है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं सच्चा झूठा फिल्म का गीत, उन्होंने कहा लेकिन ये तो नहीं है। दीवार फिल्म का संवाद एक अंगल की जुबानी, मेरा लड़का तो ऐसा नहीं था, शायद हमारी भूख देखी नहीं गई होगी, मगर देखा जाए तो देश में लाखों लोग भूखे मरते हैं, तो क्या सभी चोर बन जाएं? पैसे की नैतिक शिक्षा का पूर्व उदाहरण है। हमारी कौर साथी कह रहे हैं कि कल दोपहर से हमारे प्रांत में बारिश हो रही है

0: रिमझिम बारिश, सावन नहीं बरस रहा है, भादो बरस रहा है। और हमारे कह रहे हैं कि काली घटाओं और बारिश की बात आज नहीं हुई, पैसों की बारिश की बात यहाँ हो रही है, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं, मोबाइल डिस्प्ले पर वीडियो और चला करें साथ में तो अच्छा रहेगा, पूरा गाना देखा भी करो, विविध भारती के स्टूडियो को देखते रहो, अपना कमेंट करते रहो। भाई ये तो कह सकते हैं कि जो इच्छाएँ हैं, चाहत है, उनका तो कोई सानी नहीं है, उनका ना कोई अंत है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा, एक पैसा दो वो 10 लाख देगा, ऐसा उनका कहना है। गीत उन्होंने बताया ये। और हमारे एक साथी कह रहे, घर मुझे मिल जाए एक कप चाय और ना रखे जाए मेरे सामने ढेरों तरह के पकवान, तो मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगा, और अगर मेरे सामने ढेरों पकवान रखे जाए और एक कप चाय ना पिलाया जाए तो मैं कभी भी खुश नहीं हूंगा। तो चाय वाला गीत तो सुनवाना ही पड़ेगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कल्याण जी आनंद जी इसके संगीतकार हैं, जो कि हमारा सवाल का सही जवाब है।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे, 5 सितंबर और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: समय बदला, जब रुपए देने का समय आया तो लालच मन में आ गया, पहले टालते रहे, बाद में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, रुपए तो आज तक नहीं दिया पर भरोसा और रिश्ता खो दिया, अब हम किसी को हेल्प करने के पहले कई बार सोचते हैं। ये बात तो होती ही है। तो चलिए कार्यक्रम का अगला गीत सुन लेते हैं, क्योंकि ऐसी बातें जब होती हैं तो मन को शांति देने के लिए एक गीत तो सुन ही लेना चाहिए। आपको ये बताना है कि ये गीत किस फिल्म का है।

0: बॉबी फिल्म
1: साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन, आज ही खरीदे। 5 सितंबर और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: और इससे आप सुन सकते हैं लगातार कार्यक्रम जो भी हैं बिना समाचार के, जो एक बीच में आपको लगता है कार्यक्रम के दौरान जो आता है उसे आप इस तरह से टाल सकते हैं और पूरा कार्यक्रम एक साथ सुन सकते हैं। तो ये ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा आप, और बड़ा ही आसान है इसे हैंडल करना या इसे चलाना, आप खुद ही समझ जाएंगे बहुत ही आसानी से। लेकिन अब आपको तो ये समझना है

0: कि जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो कौन से फिल्म का गीत है?
1: क्या बात है क्या चीज है पैसा, क्या बात है क्या चीज है पैसा, क्या बात है क्या चीज है पैसा, क्या बात है क्या

दे दनादन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हमारे साथी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, हालांकि उन्होंने अपना जवाब शायद के साथ लिखा, पर शायद नहीं, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पैसों के बारे में क्या कहना, मैं तो अपने पैसों को ऐसे पुराने कपड़ों में भी छुपा कर रखती हूँ। एक बार मैंने पूरे पुराने कपड़ों की बैग एक लड़की को देख कर कहा कि इसको बेचकर आज यहाँ जिसको पहनना है दे देना। थोड़ी देर में वो वापस आ गई, मुझे लगा सारे कपड़े बिक गए, लेकिन कुछ पैसे उसने लाकर मेरी हथेली पर रख दिए कि ये आपके उस बैग से मिले हैं। कपड़ों के बीच में मैं इतना खुश हो गई उन पैसों को देखकर जैसे मानो मेरे हाथों में खजाना लग गया हो। तो पुराने कपड़ों के बैग में कुछ चीज़ें दी थी इन्होंने और इस तरह से इन्हें वो मिल गई। और ख़जाना तो इस तरह से मिलता ही रहता है, जैसे आपके प्यार का ख़जाना हम तक पहुँचता रहता है। और हमारे कुछ साथियों का कहना है कि बहुत से गीत उनकी पसंद के तो आज सुनाए नहीं गए, और बहुत से साथियों का ये भी कहना है कि उनके लिस्ट के गीत शामिल हुए। तो भाई ऐसा होना तो संभव है, क्योंकि एक घंटे के कार्यक्रम में सभी की पसंद या सारे गीत शामिल करना तो मुश्किल है। लेकिन आप सुनते रहिए विविध भारती, क्योंकि विविध भारती पर आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपकी पसंद के गीत जरूर सुनने मिलेंगे। तो आज के सुरीला सफर कार्यक्रम से अब लेते हैं इजाजत।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आरती श्रीवास्तव। आज की त्रिवेणी आधारित है स्वर पर। स्वर केवल कंठ से निकलने वाली ध्वनि भर नहीं है, ये मन के भावों का वो सेतु है जो भीतर की दुनिया को बाहर की दुनिया से जोड़ता है। कभी यही स्वर खुशी के पलों में खिलखिलाहट बन जाता है, कभी पीड़ा में सिसकी, और कभी उम्मीद की किरण बनकर किसी उदास मन को सहारा देता है। शब्द भले ही मौन हो जाएं, लेकिन स्वर अक्सर दिल की कहानी कह देता है। संगीत में स्वर सुरों का आधार है, तो जीवन में स्वर हमारे व्यक्तित्व की

0: किसी की मधुर आवाज सुनकर मन में अपनापन उतर आता है और किसी के कठोर स्वर से रिश्तों में दूरी पैदा हो सकती है। इसलिए स्वर की मिठास केवल संगीत में नहीं, हमारे व्यवहार में भी उतनी ही आवश्यक है।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे, 5 सितंबर और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

इन स्वरों को सुनने के लिए केवल कान नहीं, संवेदनशील मन भी चाहिए। हमारे जीवन में भी अनेक स्वर साथ साथ चलते हैं।

0: सफलता का स्वर, संघर्ष का स्वर, उम्मीद का स्वर और कभी कभी मौन का स्वर भी।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे, 5 सितंबर और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका। जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स। 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन आज ही खरीदे। 5 सितंबर और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से नशीले पदार्थों का सेवन न करने का आह्वान किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने सभी स्नातक विद्यार्थियों को बधाई दी और विद्यार्थियों को पदक तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए। भारत का 5वां विमान आज राहत और बचाव सामग्री लेकर नेपाल पहुंचा। विमान में 11 सदस्यों का बचाव दल, विशेष उपकरण और 5.5 टन दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अब तक 1114 शव बरामद हुए हैं। सबसे अधिक शव दक्षिणी चितवन जिले में बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 मृतकों की पहचान के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ प्रभावित 11 जल पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े 983 लापता लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में 7-8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं।
2: भारत विकास के उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां से वो अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा कर सकता है। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार से लेकर बैंक खातों और अब खेती बाड़ी के क्षेत्र में हो रहे कार्यों से दूसरे देश भी सीख सकते हैं, और इसलिए

0: 2047 तक भारत जिस बड़े आकार की अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, वो न केवल अपनी वृद्धि दर से संभव होगा बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था और विश्व राजनीति में भारत की जो अहमियत है उससे भी संभव होगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भारत को अगले 15 वर्षों में जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उसके लिए ये दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं।
1: प्राइम मिनिस्टर वांट्स इंडिया टू गो इन द कमिंग 15 इयर्स।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के दौरान विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत विश्व बैंक समूह साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान अवसंरचना क्षेत्र में ऋण सुविधा बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आधारित दृष्टिकोण पर भी विचार किया गया। श्रीमती सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वैश्विक आर्थिक स्थिति और भारत की बदलती विकास गति पर चर्चा की। वित्त मंत्री सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्दिस दोम्ब्रोस्किस से भी मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, X@AIR News हिंदी और Instagram पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा के लिए भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग मजबूत करने और आगे की कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें सीमा शुल्क और संबंधित आंकड़ों के आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाना, दवा और कृषि क्षेत्र में नियामकीय सहयोग, व्यापार संपर्क बेहतर करना तथा निवेश और व्यावसायिक संपर्क को बढ़ावा देना शामिल है। विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्री और हवाई मार्गों की स्वतंत्रता, वैध व्यापार तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। श्री मार्गरेटा ने कल पलाऊ के कोरोर में आयोजित 55वें प्रशांत द्वीप समूह फोरम नेताओं के सत्र को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कल से 3 दिन की यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा और पोलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री रादोस्वाफ शिरोस्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने डाकघर आधुनिकीकरण योजना के तहत तैयार अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। नए डाकघर में स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं एक ही जगह मिलेंगी। विदेश और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज लद्दाख के करगिल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र का उद्घाटन करगिल के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे जिले तथा आसपास के क्षेत्रों के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरीमैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली NCR में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।

0: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर तेज बारिश का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। बिहार के विभिन्न जिलों में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि नेपाल और पड़ोसी राज्यों के साथ ही प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है।
2: बिहार में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से वाल्मीकि नगर, कोसी, वीरपुर, सोन, इंद्रपुरी बराज से जलाश्रय में बढ़ोतरी से संबंधित जिलों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। भागलपुर, औरंगाबाद, बेगूसराय, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर, पटना, खगड़िया, वैशाली और जहानाबाद के बाद कैमूर जिले में भी बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। जिला प्रशासन ने लगातार हो रही बारिश और दुर्गावती जलाशय से पानी छोड़े जाने के बाद फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन की ओर से नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उधर झारखंड में पिछले 3 दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है।
3: मौसम विभाग रांची के अनुसार पिछले 3 दिनों से झारखंड में हो रही भारी बारिश के कारण भैरवी, दामोदर, स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। रांची में लगातार बारिश के कारण काके और गेतलसूद डैम के साथ साथ तेनूघाट और चांडिल डैम से पानी छोड़ा गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस बीच पिछले 3 दिनों की बारिश में राज्य भर में कई पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के कई गांवों का प्रखंड और जिला मुख्यालय से संपर्क प्रभावित हुआ है। लोहरदगा जिला से अधिक प्रभावित रहा है, जहां कई पुल क्षतिग्रस्त या बह गए हैं, जिससे बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने आज सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू और गढ़वा में रेड अलर्ट, जबकि लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम अगले 36 घंटे में झारखंड के पश्चिमी हिस्सों से होकर आगे बढ़ेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: पंजाब सरकार ने राज्य में धान की पराली जलाने पर सख्ती से रोक लगाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए डिजिटल तथा मल्टीमीडिया माध्यमों से बहुस्तरीय सूचना और जागरूकता अभियान चलाने को कहा है। बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता फैलाने की योजना है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पराली प्रबंधन रणनीति पर कल हुई बैठक में ये बात कही। बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज चीन ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स के शुरुआती मैच में चीनी ताइपे के ची यूनजेन को हराया। पुरुष सिंगल्स के एक अन्य मुकाबले में लक्ष्य सेन कनाडा के विक्टर लाई से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। महिला सिंगल्स के पहले दौर के मुकाबले में भारत की तन्वी ने डेनमार्क की अमाली चुल्स को कड़े मुकाबले में लगातार सेटों से हराया। भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो ने भी थाईलैंड के तोन्नाकोन साहेंग और तोनिचा साहेंग को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। स्क्वाश में भारत की अनाहत सिंह ने लंदन स्क्वाश क्लासिक के दूसरे दौर में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के रमित टंडन ने कतर के अब्दुल्ला अल तमीमी को हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 516 अंक गिरकर 76,428 पर, जबकि निफ्टी 183 अंक गिरकर 23,873 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार

0: का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नक्मे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

रख। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, सलील चौधरी का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

0: हम दोनों फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, जयदेव का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

तुमसा नहीं देखा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, ओपी नैयर ने संगीत से सजाया। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

तुमसा नहीं देखा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, ओपी नैयर ने संगीत से सजाया। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: किशोर कुमार की आवाज़ में मुसाफिर फिल्म से गीत आपने सुना, शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत। टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: फागुन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में, कमर जलाल आबादी के बोल ओपी नैयर का संगीत।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत, ओपी नैयर की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल, गीता दत्त, माफ कीजिएगा, ओपी

नैयर का संगीत है, कमर जलाल आबादी की बोल है, गीता दत्त की आवाज, और ये आपको सुनवा रहे हैं दूसरा एक गीत जिसमें मोहम्मद रफी भी गीता दत्त के साथ, 12 o'clock फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं।

0: निकल जाओ इस घर से, तुम्हें कुष्ठ रोग है। अगर तुम इस घर में रही तो हम सबको भी कुष्ठ रोग हो जाएगा।
1: अरे भैया, आप भाभी को घर से क्यों निकाल रहे हैं? इससे तो आपका परिवार टूट जाएगा। क्या आपको पता नहीं है कि कुष्ठ रोग अन्य बीमारियों की तरह ही है? इसका इलाज MDT से संभव है। भाभी को आज ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं और वहां उनका इलाज करवाएं।
2: स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।

0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और दीपाप को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सुनने वाली सभी सखियों श्रोताओं को और श्रोता भाइयों को और सोनाली तुम्हें भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
0: हेल्दी नमस्कार से मुझे बात याद आई कि आज आप मिलते ही मुझे कुछ हेल्दी चीज खिलाई थी, वो थी नारियल की बर्फी।
1: भाई नारियल में बहुत गुण होते हैं, आप कुछ कह रही थी?
0: यही कहने वाली थी कि आप हेल्दी नमस्कार के साथ साथ जो अपना आहार होता है उसमें भी हेल्दी चीजों का इस्तेमाल करती है, ये बहुत अच्छी बात है।
1: भाई अगर बोलेंगे और अगर उसको नहीं पालन करेंगे उन बातों का तो कहने का कोई मतलब नहीं है। और हमेशा एक उम्मीद यहाँ पे रहती है कि कोई ना कोई एक सखी या हमारे श्रोता भाई अपने आदतों में या स्वास्थ्य में कहीं पे कुछ भी एक अच्छे सुधार लेकर आए हैं या नहीं आए हैं, हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया या करते हैं तो थोड़ा सा समय बढ़ाया या 5 मिनट 10 मिनट के लिए ही अपने स्वास्थ्य को लेकर के आप सतर्क रहते हैं और उसको समय देते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। तो इंतज़ार है, शायद कभी कोई ना कोई एक कमेंट आए हमें।
0: जी, और आज के जो खास दिन है, आज विश्व नारियल दिवस है, तो उसके बारे में हमारे श्रोताओं ने भर भर के कमेंट्स लिखे हैं।
1: बिल्कुल,
0: और भी श्रोतागण लिखे कि नारियल का आपके जीवन में क्या महत्व है, किस तरह से नारियल का इस्तेमाल करते हैं। रही बात व्यंजन की, तो आज हमने नारियल के व्यंजन ही चुने हैं। और हमारे बहुत सारी सखियों ने, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने नारियल के व्यंजन भी लिखकर हमें भेजे
1: हाँ, वो भी लिख के भेजे हैं। और भाई देखो, त्योहारों का बिल्कुल एक के बाद एक त्योहार लगातार है, ऐसे में अलग अलग प्रकार के हम साड़ियों को ढूंढते रहते हैं कि हम क्या पहने क्या नहीं पहने। आजकल वैसे सलवार सूट वगैरह भी बहुत कुछ पहनने लगी हैं हमारी सखियाँ, लेकिन फिर भी त्योहारों में साड़ियों का जो रुतबा और जो रौनक उसको
0: वो
1: आके
0: बढ़
1: जो
0: जाती।
1: ग्रेस आती है पहनने पर, वो एक अलग ही है। इसलिए इसी आज के दिन हम साड़ियों का संसार लेकर आते हैं। आज हम बताने वाले हैं मंगलगिरी साड़ियों के बारे में, उसकी क्या विशेषता है, कैसी बनती है और
0: किस राज्य की है
1: किस राज्य की है।
0: जी,
1: बिल्कुल।
0: और शब्द हमारा विचार आपके, इसमें हमने चुना है प्रसन्नता, जिसे हर किसी को अपनाना चाहिए,
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि हर दिन एक समान नहीं होता है, कभी सुख है तो कभी दुख है। पर अगर हम प्रसन्नता को अपनाते हैं तो वो दुख के दिन भी बड़े आराम से निकल जाते हैं।
1: बिल्कुल, तो ये असली जीवन का आधार है प्रसन्नता।
0: जी
1: और हम श्रोताओं से चाहते हैं कि आप और संदेश हमें लिख के भेजिए, कुछ ऐसी बात भी लिख के भेजिए, क्योंकि आया तो है, कुछ कमेंट्स आए तो हैं, पर इंतज़ार है कुछ और उनके संदेशों का। और साथ में जानकारियां भी देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसके बारे में भी बात करते हैं। तो
0: जी
1: फूड पैकेट्स पर जो जानकारी लिखी होती है वो पढ़ना आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने घर परिवार को बच्चों को क्या खिला रहे हैं, क्या चीज़ हम तैयार बाजार का अगर उन्हें खिला रहे हैं तो उसमें क्या उनके खान पान में जा रहा है, ये चीज के लिए सतर्कता बहुत जरूरी है।
0: यानी आंख मूंद के पैकेट वाला खाना नहीं खाना है,
1: बिल्कुल।
0: उसकी हमें एक्सपायरी डेट चेक करना है, और भी अन्य सारे उसमें कितने क्या क्या कंटेंट्स मौजूद है
1: जी
0: वो सारे पढ़ना हमें

0: आज विश्व नारियल दिवस है और नारियल हमारे जीवन से जुड़ा एक ऐसा फल है जिसे हम स्वाद के साथ साथ कई उपयोगों के लिए जानते हैं। नारियल का पेड़ इतना उपयोगी है दीपा कि इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इसके फल, पानी, तेल, छिलके और पत्तों तक का उपयोग अलग अलग कामों में किया जाता है और नारियल के इसी महत्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिवर्ष 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है।
1: हाँ जी, और विश्व नारियल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य नारियल की खेती और इसके उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करना है, साथ ही नारियल की खेती से जुड़े

0: किसानों को प्रोत्साहित करना और नारियल उद्योग को बढ़ावा देना, ये भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भारत दुनिया के प्रमुख नारियल उत्पादक देशों में से एक है। हमारे देश में केरल जो राज्य हैं, जो कि केरल है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गोवा, ये सभी राज्य जितने भी हैं ना, इनमें बड़ी मात्रा में नारियल की खेती की जाती है। इन क्षेत्रों में लाखों किसान नारियल की खेती से अपना जो जीवन चलाते हैं।
1: और नारियल हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी है। नारियल पानी गर्मी में शरीर को तरोताजा रखने में मदद करता है। नारियल की गिरी से तेल और कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। नारियल तेल का इस्तेमाल खाना बनाने के साथ साथ बालों और त्वचा की देखभाल के लिए भी किया जाता है।
0: नारियल की खास बात यह है कि इसका लगभग हर हिस्सा काम में आता है, सोनाली, है ना। नारियल के छिलके और उसके जो जटा से रस्सियां, चटाइयां, है ना, कई सारी उपयोगी चीजें बनती है। यहाँ तक कि सुंदर डेकोरेटिव आइटम्स भी बनते हैं, इसके खोल से सजावटी सामान बनते हैं, घरेलू वस्तु भी तैयार की जाती हैं। और नारियल किसानों के लिए आय का एक अच्छा साधन है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी मदद करता है।
1: साथ ही दीपा, नारियल का पेड़ पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर समुद्र के किनारे और तटीय क्षेत्रों में नारियल के पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करते हैं। ये पेड़ हमारे आसपास की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता को भी बढ़ाते हैं।
0: जी, और
1: ये दिवस जो है ना,
0: जी
1: हमें याद दिलाता है कि प्रकृति ने हमें कितने अनमोल संसाधन दिए हैं। जरूरत है तो बस उन्हें समझने, बचाने और सही तरीके से उपयोग करने की है। नारियल वास्तव में प्रकृति का एक ऐसा उपहार है जो हमें पोषण भी देता है और रोजगार भी देता है।
0: बिल्कुल।
1: और
0: और इस विश्व नारियल दिवस पर सखियों, हम नारियल की उपयोगिता को समझना चाहिए हमें, और नारियल की खेती करने वाले किसानों का सम्मान करना चाहिए और प्रकृति के इस अनमोल उपहार को सहेजने का संकल्प लेना चाहिए। तो देखिए ना, नारियल सिर्फ एक फल नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, रोजगार और प्रकृति तीनों का साथी है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है, देखो, ले लो रे बाबू, पी लो नारियल पानी, 1 रुपया दाम है, हजारों का काम है, सैकड़ों बीमारियों की दवा है, पिलाओ तो मिलेगी आपको दुआ। आज विश्व नारियल दिवस है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2009 में हुई थी। हमारे यहाँ गुजरात में भावनगर जिले के महुआ शहर में, जिसे मिनी कश्मीर कहा जाता है, वहाँ नारियल का विशाल उत्पादन हो रहा है। कच्चे नारियल को गुजराती में त्रोफा कहा जाता है, जिसका पानी स्वास्थ्यवर्धक होता है, बीमार लोगों को अक्सर पिलाया जाता है। पक्के नारियल पूजा पाठ के अलावा भगवान के चरणों में भी धराया जाता है। पक्के नारियल से निकले खोपरा से खोपरा पाक जैसी विविध स्वादिष्ट पौष्टिक मिठाइयाँ भी बनती हैं।
0: बिल्कुल। और ये जो मिठाई होती है खोपरा पाक, ये तो बेहद पसंद आती है
1: जी
0: कई घरों में, कई लोगों को। और इसी तरह से एक सखी ने लिख भेजा है कि कौन नारियल के पानी में जादू सा कर जाता है, बंद कटोरी में मीठा जल चुपके से भर जाता है। क्या खूब है, तो ये प्रकृति की सुंदरता है ना, कि
1: जी
0: पता ही नहीं चलता अंदर पानी कैसे आ जाता
1: हम
0: है।
1: कितने समृद्ध हैं ना इस
0: जी
1: प्रकृति के साथ। एक साथ ही लिखते हैं, इस पेड़ को ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में से श्रीफल यानी देवताओं का फल माना जाता है। नारियल का छिलका इतना हल्का और वाटरप्रूफ होता है कि समुद्र की लहरों पर 100 दिनों तक तैरने के बाद भी जीवित रह सकता है और किनारे पर पहुंचकर नया पौधा उगा सकता है। इतिहास में दुनिया के कुछ हिस्सों में नारियल का इस्तेमाल सामान खरीदने, व्यापार करने, यहाँ तक कि टैक्स चुकाने के लिए करेंसी के यानी मुद्रा के रूप में किया जाता था। दुनिया के कुल नारियल उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा केवल 5 एशियाई देशों जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत से आता है।
0: और एक हमारे साथी ने लिखा है कि नारियल दिवस, इसके स्वास्थ्य वर्धक लाभ और उसके महत्व और नारियल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। साथ में ये भी बताते हैं कि 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी, ICC, इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी शुरुआत की थी। और ये बात तो एक और हमारे जो साथी, उन्होंने भी लिखा है कि इसे ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं।
1: और आप गाना सुन ले।
0: चलिए

0: दीपा, अगर कोई हमें साड़ी गिफ्ट कर दे तो हम भी झूमने लगते हैं।
1: शायद फिर उसको पहन के कुछ इसी तरह से गाएंगे ना, ये वादे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं। और साड़ी की गिफ्ट की तो हमेशा चाहत होती है हर महिलाओं को, है ना? सके आप भी बताइएगा, चाहत होती है या नहीं, सही कह रहे हैं या नहीं?
0: हाँ बिल्कुल, लिखकर बताइए कि अगर आपको किसी ने साड़ी गिफ्ट करी तो आपको कैसे लगता है। या फिर कुछ कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है दीपा, जिन्हें ऐसा लगता है अरे ये इस तरह के तो हम नहीं पहनते, इतनी भारी भरकम तो हम नहीं पहनते, या फिर ये कलर तो हम कभी नहीं पहनते, ये तो हमें जचता ही नहीं है, पर मुझे तो अच्छा लगता है अगर कोई गिफ्ट करे तो। और आपको? तो
1: बिल्कुल, हमें क्यों नहीं पसंद आएगा, बिल्कुल पसंद आता है।
0: चलिए फिर हम एक दूसरे को गिफ्ट कर देंगे। क्योंकि खुशी है ना, उसी से मिलती है ना।
1: सही बात है, बिल्कुल सही कहा। और भाई ये गिफ्टिंग का तो दौर चलता रहेगा, आंध्र प्रदेश चलते हैं क्योंकि वहां से लेनी है मंगलगिरी साड़ी।
0: मंगलगिरी साड़ी भारत की प्रसिद्ध और सुंदर पारंपरिक हथकरघा साड़ियों में से एक है। साड़ी आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी शहर से संबंधित है और मंगलगिरी आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध नगर है जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह क्षेत्र लंबे समय से हथकरघा उद्योग

0: से जुड़ा हुआ है। यहाँ अनेक पीढ़ियां बुनाई के कार्य से जुड़े हुए हैं। उनके हाथों की कला और वर्षों का अनुभव मंगलगिरी की साड़ियों को विशेष पहचान प्रदान करते हैं।
1: मंगलगिरी साड़ियाँ जो खास तौर पे हथकरघा यानी हैंडलूम्स पर बुनी होती हैं, बुनकर बहुत बारीकी और धैर्य के साथ धागों को जोड़कर साड़ी तैयार करते हैं। इस कार्य में सिर्फ तकनीक नहीं हो लगती है, बल्कि अनुभव और कलात्मक दृष्टि की भी आवश्यकता होती है सोनाली। और इन साड़ियों की एक विशेषता है, ये पहचान इसमें होती है कि साड़ी का मुख्य भाग अक्सर एकदम सरल डिजाइन वाला होता है और इसके विपरीत बॉर्डर और पल्लू पर भरपूर डिजाइन होते हैं, जरी का काम किया जाता है। और यही जो बैलेंस है, ये जो संतुलन है ना, मंगलगिरी साड़ी को एक सरल और बहुत ही अट्रैक्टिव यानी आकर्षक साड़ी बनाता है। फिर मंगलगिरी साड़ी की सबसे बड़ी खूबी उसकी सादगी है। इसमें बहुत अधिक भारी कढ़ाई या चमक दमक नहीं होती है, तो किसी को कोई अगर एलिगेंट साड़ी पहनना पसंद हो ना, तो मंगलगिरी साड़ी बिल्कुल वो सखी खरीद सकती हैं। और ये बहुत आकर्षक लगते हैं, ये बिल्कुल कम चमक दमक वाली साड़ियाँ, और इन महिलाओं के लिए विशेष पसंद है जिन्हें एकदम, जो बात हम कह रहे थे ना कि शालीन और पारंपरिक पहनावा अगर आपको पसंद आता है कि मैं सोबर कलर सोबर डिजाइन सोबर साड़ी पहनना पसंद करती हूँ, तो वो मंगलगिरी साड़ी को बिल्कुल खरीद सकती हैं।
0: और इन साड़ियों के बॉर्डर बहुत सुंदर होते हैं। कई मंगलगिरी साड़ियों में जरी के बॉर्डर का प्रयोग किया जाता है, कुछ में चौड़े बॉर्डर होते हैं जबकि कुछ में पतले और आकर्षक किनारे बनाए जाते हैं। और साड़ी का पल्लू भी इसकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। रंगों और पारंपरिक डिजाइन के सुंदर मेल से पल्लू को आकर्षक बनाया जाता है।
1: मंगलगिरी साड़ियाँ हल्की और आरामदायक होती हैं। गर्म मौसम में इन्हें पहनना बहुत सुविधाजनक होता है, और इसीलिए ये साड़ी आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी पहन सकते हैं। साथ साथ में जब खास अगर आपके घर में कोई खास प्रोग्राम हो रहा है, कोई त्यौहार सा है, तो बिल्कुल पहन सकते हैं। और मंगलगिरी साड़ियाँ अलग अलग प्रकार के कपड़ों से बनाई जाती है, कॉटन की भी बनती है जो कि बहुत एकदम कंफर्टेबल होती है, सरल होती है। और सिल्क या सिल्क कॉटन वाला जो मिश्रण वाला जो फैब्रिक होता है, वो साड़ियाँ दिखने में बहुत सुंदर लगती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना बहुत हैवी हमें नहीं खरीदनी, क्या करेंगे इतना पैसा लगा के, तो सिल्क कॉटन वाला जो मिक्स वाले जो फैब्रिक
0: जी
1: होती है, वो वाली साड़ी भी आप ले सकते हैं। और मंगलगिरी साड़ियों के रंगों की भी विशेष भूमिका होती है। पारंपरिक रंगों के साथ साथ इसमें आधुनिक हल्के रंगों का भी प्रयोग होता है। पारंपरिक हो गए जैसे कि लाल, हरा, पीला, नीला, गुलाबी, सफ़ेद सफ़ेद जैसे रंग, और इसके साथ साथ में कुछ वेस्टर्न और ईस्टर्न कलर भी ऐसे होते हैं, जैसे कि भूरा भी कलर आने लग गया है,
0: जी
1: अब तो कथई कलर भी आने लग गया है आजकल, ये अपना बैंगनी और मोफ जो हल्का जामुनी कलर
0: जी
1: होता है ना, वो भी चल रहा है बहुत ज़्यादा इन दिनों, तो वो कलर में भी ये साड़ियाँ उपलब्ध है। फिर इन साड़ियों की खासियत यह है कि इनका रंग और बॉर्डर एक दूसरे के साथ सुंदर संतुलन बनाए रखते हैं, इसलिए साड़ी पहनने वाले व्यक्तित्व में सादगी और गरिमा दोनों जोड़ देती है। अब अनेक अवसरों पर उपयुक्त मानी जाती है, जैसे ही सोनाली।
0: जैसे त्योहारों में पहन सकते हैं, पारिवारिक समारोह में पहन सकते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहन सकते हैं। और हल्की कॉटन मंगलगिरी साड़ी दिन के कार्यक्रमों के लिए बहुत अच्छी लगती है, जबकि जरिया सिल्क वाली मंगलगिरी साड़ी विशेष अवसरों पर पहनने के लिए उपयुक्त होती है। मंगलगिरी साड़ी केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं होती, इसके पीछे अनेक बुनकरों की मेहनत, धैर्य और वर्षों पुरानी कला छिपी होती है। हथकरघे पर तैयार होने वाली प्रत्येक साड़ी में हाथों की मेहनत और परंपरा का स्पर्श होता है।
1: बिल्कुल, अब आज का जैसे जमाना हो गया ना कि मशीनों पे भी कपड़े बनते, ऐसे में अगर आपको हैंडलूम की साड़ियाँ पसंद है और भारतीय कारीगरों की कला और उनके महत्व को अगर आप याद करके रखना चाहते हैं, तो मंगलगिरी साड़ी बिल्कुल वैसी ही है। और इन साड़ियों को अपनाना केवल सुंदर पहनावे को चुनना नहीं है, ये हमारे देश की हस्तकला और बुनकर की परंपरा को सम्मान देना भी होता है।
0: यानी मंगलगिरी साड़ी केवल धागों से नहीं बनती, उसमें बुनकरों के हाथों की मेहनत, पीढ़ियों की कला और आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत भी बुनी होती है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी ये साड़ी लगती है, और एक बार पहन के जरूर देखिएगा।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सोनाली, हमारी एक सखी का ये मैसेज आया है कि जो नारियल है, नारियल दिवस के बारे में उन्हें याद आ रहा है कि मुझे तो बहुत पसंद है कच्चा नारियल, और चटनी भी बनाती हूँ और खूब मज़े में हमारे घर में खाते हैं। इसका पानी बहुत फ़ायदेमंद होता है, पेट के लिए खासकर बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। और उनके शहर में एक डिश है भुट्टे का किस, उसके ऊपर कच्चे नारियल को डालकर सजाया जाता है जो कि खाने में बहुत टेस्टी होता है। व्रत में भी नारियल पानी मैं पीती हूँ, ऐसा हमारी सखी ने लिखकर भेजा है। एक हमारे सखा, जब हमने पूछा ना कि आप क्या क्या करते हैं सुबह, किस तरह से अपने सेहत का ध्यान रख रहे हैं, तो एक हमारे श्रोता भाई ने लिखा है कि हर जनवरी में और अगस्त में मैं टेस्ट करवाता हूँ, फुल बॉडी चेकअप, जिसमें बिल्कुल हमारा नॉर्मल आया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और डॉक्टर कहते हैं कि खाओ पियो मौज करो, बिल्कुल भाई, लेकिन बस अपने जो है खाने का कंट्रोल कहीं बाहर ना रह जाए, ये ध्यान रखिएगा। और हर दिन 60 मिनट तक वॉक करना का पालन करता हूँ, और 60 साल की उम्र में 60 मिनट का वॉक, तो ये तो भाई बहुत ही अच्छी बात है कि आप इस तरह से अपने सेहत का ध्यान रख रहे हैं। एक हमारे श्रोता का भी मैसेज है।

0: ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं। कार्यक्रम है सखी सहेली। और दीपा, कहाँ खो गई हो आप?
1: मैं तो हमारे जो श्रोता और सखियां हैं उनके संदेशों में खो गई थी कि क्या क्या संदेश आए, वो चुन रही थी। तो चलिए, आज भाई संदेश पढ़ना है तो ये भी तो बताना होगा कि किस बारे में हम बात करेंगे।
0: खाद्य पैकेट्स पर लिखी जानकारी, जो हम अक्सर ऐसा होता है ना कि हम आँख मूंद के उन पैकेट को खोलते हैं और खा लेते हैं उसकी चीजें बिना देखे, ना
1: बिना
0: अक्सर
1: देखे,
0: होता है
1: बिल्कुल।
0: ये, ना कोई ऐसी बात नहीं है, इसलिए हम लोगों को ऐसा विश्वास होता है कि पैकेट बना हुआ है तो ये अच्छा ही होगा।
1: अच्छा ही होगा। और जब सफर में जाते हैं तो देखो ना, एक ने पैकेट खोला तो सभी लोग खा लेते हैं। फिर भले हम कहते हैं कि अरे हम घर में नहीं खाते, बस ये तो क्या बाहर निकले ना तो खा लिया, लेकिन क्या खा रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है।
0: तो आजकल बाजार में मिलने वाले अधिकांश खाद्य पैकेट जो होते हैं बंद होते हैं, जैसे बिस्किट है, चिप्स है, नमकीन, दूध, जूस, मसाले। इन खाद्य पदार्थों को खरीदते समय केवल पैकेट का रंग, आकर्षक चित्र या विज्ञापन देखकर खरीदना उचित नहीं, बल्कि पैकेट पर लिखी जानकारी को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है।
1: क्योंकि इनमें से इससे हमें उस खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता, पोषण और सुरक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले जानना क्या जरूरी है कि उसमें पैकेट पे नाम क्या लिखा होता है। इससे हमें पता चलता है कि पैकेट के अंदर वस्तु कौन सी है। फिर ये जानकारी उसमें दी जाती है कि खाद्य पदार्थ कब बनाया गया है, या कब बनाया या कब पैक किया गया है। इससे हमें उसकी ताजगी का पता चलता है। फिर एक होता है पैकेट पर एक्सपायरी डेट या बेस्ट बिफोर लिखा होता है, तो इसमें समाप्ति तिथि के बाद खाद्य पदार्थ का सेवन करना सुरक्षित नहीं होता है, इसलिए खरीदने से पहले उसकी जांच अवश्य करनी चाहिए।
0: साथ ही पैकेट पर लिखा होता है खाद्य पदार्थ को बनाने में किन-किन चीजों का उपयोग किया गया है, जैसे आटा, चीनी, नमक, तेल, मसाले आदि। जिन लोगों को किसी खाद्य पदार्थ की एलर्जी होती है उसके लिए जानकारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। साथ ही पोषण संबंधी जानकारी के पैकेट पर कैलोरीज लिखी होती है, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, वसा कितना है, चीनी और नमक की मात्रा लिखी होती है। इससे हमें पता चलता है कि खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा है भी या नहीं भी।
1: बिल्कुल। अच्छा, शुद्ध वजन या मात्रा, उसमें कितना वजन है वो भी लिखा होता है कि 100 ग्राम है, 500 ग्राम है या 1 किलोग्राम है। इससे वस्तु की हमें सही मात्रा पता चलती है। और इसके अलावा हर पैकेट पर उसका अधिकतम मूल्य लिखा होता है। दुकानदार को इससे अधिक कीमत नहीं लेनी चाहिए और इसलिए खरीदते समय MRP हमें देखना जरूर चाहिए।
0: साथ ही उस पर दो चिन्ह होते हैं दीपा। खाद्य पैकेट पर अगर हरे रंग का चिन्ह है तो ये शाकाहारी खाद्य पदार्थ है, और अगर लाल रंग का चिन्ह है तो ये मांसाहारी खाद्य पदार्थ हो सकता है। इससे उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार खाद्य पदार्थ चुन सकते हैं।
1: बिल्कुल। इसके अलावा पैकेट पर कंपनी जिसने बनाई है उसका नाम और पता भी दिया जाता है। इससे आवश्यकता पड़ने पर कंपनी से संपर्क किया जा सकता है। फिर कुछ खाद्य पदार्थों में ठंडी और सूखी जगह पर रखना आवश्यक होता है, ऐसा लिखा रहता है, जबकि कुछ वस्तुओं को फ्रिज में रखना पड़ता है। पैकेट पर दी गई भंडारण संबंधी जानकारी का हमें पालन करना चाहिए।
0: एक हमारे साथी कहते हैं कि फूड पैकेट्स पर लिखी जानकारी पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल ताज़ा किस्सा बताना चाहूँगा। मेरी धर्मपत्नी का पीहर अजमेर में ही है और हम रक्षाबंधन के दिन मेरे ससुराल गए थे। धर्मपत्नी की भाभी ने मिठाई के साथ 2 कुकीज़ के पैकेट भी कॉलोनी के किसी दुकानदार से मंगवा कर दिए थे। मेरी नज़र कुकीज़ के पैकेट पर पड़ी और मैंने देखा था उस पर यूज़ बाय डेट 26 अगस्त 2026।

0: एक्सपायरी डेट के कुकीज़ थे। हाथों हाथ हमने दुकानदार को वापस भिजवाए। दुकानदार ने कहा गलती हो गई, सतर्कता से एक्सपायर्ड कुकीज़ उपयोग करने से हम बच गए। कितनी ये
1: बिल्कुल
0: जागरूकता हर किसी को ज़रूरी है।
1: बहुत ज़रूरी है। और एक संदेश आया है कि क्योंकि इसमें भले बुरे की पहचान होती है, सब जो सारी जानकारी लिखी होती है, फिर खाए जाने वाले पैकेट्स की जानकारी तो और भी अधिक आवश्यक है। तो इससे उसकी गुणवत्ता का ज्ञान होता है। वैसे पैकेट्स की जगह प्रकृति पद्धत ताज़े पदार्थ का सेवन किया जाए तो अधिक सेहतमंद होता है और सेहत के लिए फायदेमंद है। भाई वो तो है, लेकिन अब स्कूल से निकलकर बच्चा अगर अटक ही जाए कि हमें तो ये खाना ही है, ये आलू के चिप्स हम लेके ही रहेंगे, तो अब क्या कीजिएगा? बच्चे मानते नहीं हैं। तो हर बार हमें उन्हें कभी कभी, भले चाहे आप कहिए कि 10-20 बार में से एक बार हमें दिलाना पड़ता है, लेकिन फिर भी पैकेट कितना स्वास्थ्यवर्धक है और कितना हानिकारक है, बच्चों को इसकी पूरी जानकारी देकर कि आप खरीदें।
0: कितनी भी जिद करें उसमें एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। हाँ, उसके अंदर के कंटेंट्स ठीक है कि बाद में चेक कर सकते हैं, पर एक्सपायरी डेट पहले चेक करना ज़रूरी है। एक हमारे सखी ने लिखा है कि फूड पैकेट पर लिखी हुई जानकारी पढ़ना बेहद ज़रूरी है। हम सभी को घर में व्रत में राजगिरा के लड्डू खाए थे, एक ब्रांडेड कंपनी से रामदाना, हम राजगिरा को पूर रामदाना कहते हैं, जो जागरी गुड़ से बना हुआ था, सभी ने खाया, पर जब पैकेट में पढ़ा गया उसमें सोडियम की भी मात्रा थी। हमारे घरों में व्रत में नमक नहीं खाते, व्रत में तो ये गलती हो गई, उसका निदान भी किया गया, पर मन में कहीं लग रहा था पैकेट पढ़कर ही खाना चाहिए, इसलिए फलाहार का भी पैकेट आप देख लीजिए इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं।
1: हाँ,
0: बहुत सही जानकारी,
1: कितना सही जानकारी कि अगर आप व्रत में हैं और अगर इस तरह की चीजें हैं तो फिर हमारे मन में एक भ्रांति आ जाती है कि देखिए हम नहीं खाना चाहते, फिर भी नमक चला गया। अच्छा, इसके अलावा नूडल्स, सूप या रेडी टू ईट भोजन, ये सारे जो पैकेट होते हैं उन्हें बनाने का या उपयोग करने की विधि भी उस पर लिखी होती है जो पैकेट से उन पर, इससे खाद्य पदार्थ को सही तरीके से तैयार किया जा सकता है। और खाद्य पैकेट पर लिखी जानकारी हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सोनाली, हमें किसी भी खाद्य पदार्थ को खरीदने से पहले उसके निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, सामग्री, पोषण संबंधी जानकारी, वजन और मूल्य अवश्य जांचना चाहिए।
0: एक हमारे साथी कहते हैं कि भाई चिप्स के पैकेट भूख लगने पर सभी बच्चे बड़े सभी खा लेते हैं, ये बहुत अच्छा है, पैकेट पर सब कुछ लिखा रहता है, आपको इसमें कितनी कैलोरी मिल रही है, कितना फैट मिल रहा है, कितना ट्रांस फैट है, कितना अनसेचुरेटेड है और कितना इसमें सोडियम और पोटेशियम की मात्रा है। कुछ विदेशी ब्रांड के चॉकलेट और बिस्किट पर वैसे खाद्य तेल रहते हैं जिसे हम खाना नहीं चाहते, तो उसके बारे में भी स्कैन करके सब जानकारी मिल जाती है। तो खाने का सामान और डेट ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए?
1: एक गाना तो सुनना चाहिए। बस एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं कि एक जागरूक उपभोक्ता वही है जो आकर्षक पैकेट के बजाय उसकी सही जानकारी को पढ़कर, सोच समझकर उस चीज़ को खरीदता है।

0: दीपा, इस गाने को सुनकर मुस्कुरा रही थी या मुस्कुराहट का कोई और कारण है?
1: जब ये गाना सुन रही थी तो अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं ना सकियो, याद आते हैं कि नहीं, जब हम अपना घर बनाते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, कहीं पे किसी ने अपना इंडिपेंडेंट घर बनाया हुआ है, कहीं किसी ने फ्लैट खरीदा है, तो जिस तरह से सजाते हैं, तो नहीं, गीत सुन करके हमारे अपने पुराने दिन याद आते हैं, और फिर देखिए चेहरे पर एक प्रसन्नता यानी एक मुस्कान आ ही जाती है।
0: फिर वो छोटी छोटी खुशियों में भी क्यों ना हो, किसी ने कुछ साड़ी खरीद दी
1: हाँ
0: या
1: हाँ
0: फिर किसी ने कुछ खाने का सामान ही दे दिया, यानी जो लोग छोटी छोटी खुशियों में खुश रहते हैं ना, वो सचमुच जिंदा दिल होते हैं।
1: ये बात छोटी खुशी की बोल रही हो सोनाली, हमें पता है साड़ी लेकर ही रहोगी, है ना भाई, साड़ी तो लेकर रहेगी, सोनाली को दिलवानी पड़ेगी साड़ी
0: हमारे एक साथी लिखते हैं, प्रसन्नता का अर्थ केवल किसी विशेष उपलब्धि या स्थिति तक पहुंचने में नहीं, देखिए श्रोता भी कह रहे हैं बल्कि जीवन के हर क्षण में आनंद और संतोष का अनुभव करना है। ये विचार हमें सिखाता है कि प्रसन्नता कोई गंतव्य नहीं है, बल्कि ये आनंद का क्षण है जिसे प्राप्त किया जा सके, बल्कि एक जीवन शैली है। प्रसन्नता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक स्थिति है, हमारे मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, ना कि भौतिक उपलब्धियों पर।
1: बिल्कुल। और अपने आसपास या परिवार में या हमारे परिजनों में देखा होगा, कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको हमेशा चेहरे पे स्माइल रहती है, और अगर उनके स्थितियों को देखो, परिस्थितियों को देखो, तो बहुत कठिनाइयाँ चल रही है, लेकिन एक सतत एक हमेशा मंद मुस्कान उनकी बनी रहती है, और फिर हम कहते हैं भाई जीना है तो इनकी तरह ही जीना चाहिए,
0: ये
1: है
0: मेरे
1: ना
0: लिए तो नहीं कह रही आप
1: शायद हो भी सकता है
0: वास्तव में प्रसन्नता के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वभाव की बात है। यदि आप खुश नहीं है तो बेहतर होगा कि आप इसके बारे में चिंता करना बंद कर दीजिए, पर होता इसके विपरीत है। प्रसन्न रहने के लिए कुछ बातों पर विचार करना आवश्यक है। भविष्य की चिंता भविष्य पर ही छोड़ देनी चाहिए, ये आवश्यक नहीं कि भविष्य की चिंता में वर्तमान को ही पीड़ा दे। किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, हर प्राणी स्वयं में प्रकृति की विशिष्ट पहचान है। बहुत सुंदर
1: बिल्कुल,
0: बात
1: बहुत
0: लिखी
1: सुंदर बात की है कि भविष्य की चिंता नहीं, उस पर सोच और समझ रखनी चाहिए कि
0: जी।
1: भाई हमें करना है क्या नहीं करना है। चिंतित हो करके हमारे बालों को सफेद कर लें और फिर चेहरे पे हमेशा एक उदासी उदासी लिए रहे ना, तो लोगों को लगने लग जाता है, परिवार को लगने लग जाता है, हमेशा ये इतना दुखी क्यों रहते हैं।
0: और इनसे दूर
1: लेकिन
0: ही भागते लोग।
1: हाँ, ऐसा भी होता है। और देखो एक और संदेश है, ये कहता है कि प्रसन्नता का पैमाना न धन है न पद, उसका पैमाना है कि रात को नींद कितनी गहरी आती है, सुबह मन कितना हल्का उठता है, और किसी दूसरे की खुशी देखकर आपके भीतर जलन नहीं बल्कि एक सच्ची मुस्कान आती है। जब छोटी छोटी बातों में भी दिल कहे कि जो है बहुत है, और कल की चिंता आज की शांति को नहीं छीन पाती, तो समझिए आप सच में प्रसन्न है। भाई ये तो इतना प्यारा संदेश है, इसको तो ऐसा लगता है 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए, है ना,
0: या फिर
1: दो,
0: अपने पास रख लेना चाहिए, है ना।
1: हाँ, इसको सेव करके रखा जा सकता है। बिल्कुल
0: एक
1: सही कहा
0: साथी कहते हैं,
1: सोनाली।
0: प्रसन्नता बांटने से नहीं बढ़ती, सॉरी, प्रसन्नता बांटने से बढ़ती है। प्रसन्नता केवल हंसने का नाम नहीं बल्कि मन के भीतर की वो शांति है जो छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सिखाती है। जब अपेक्षाएं कम और कृतज्ञता अधिक होती है तो साधारण सा दिन भी खास लगने लगता है। ये संदेश भी कितना सुंदर है
1: बहुत सुंदर।
0: जी।
1: एक संदेश कहता है कि खुश रहना, प्रसन्नता, प्रसन्न रहना जीवन का वो आंतरिक आनंद है जो बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण और संतोष पर निर्भर करता है। प्रसन्न रहना जीवन जीने का एक खूबसूरत तरीका है, ये तो हमारे मन के भीतर की भीतर ही निवास करती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे बाहर ढूंढते रहते हैं। जो व्यक्ति आज में जीना सीख लेता है वही असली मायनों में प्रसन्न रहता है। अपनी मुस्कान की वजह खुद बनिए, किसी और का इंतजार मत करिए।
0: और अपनी खुशी अपने हाथ में रखिए, किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बस जैसे है वैसे रहे, बस खुश।

0: दीपा कहाँ खो गई थी? व्यंजन में?
1: व्यंजन में बिल्कुल। तो आप पढ़ रही हैं? मैं पढ़ रही हूँ
0: जी। हमारे एक साथी ने नारियल का मैसूर पाक लिखने की रेसिपी लिखकर भेजी है। कहते हैं कि पानी वाला नारियल है, शक्कर और घी, नारियल का कल वाला हिस्सा निकालकर सफ़ेद वाले हिस्से को मिक्सी में डालकर बिना पानी के अच्छे से ग्राइंड कर ले। नारियल का बुरादा को कटोरी में भरकर नाप ले। अगर कटोरी नारियल का बुरादा है तो पौना कटोरी शक्कर और एक कटोरी घी लगेगा। तीनों को मिलाकर कढ़ाई को मध्यम आंच पर एक ही डायरेक्शन में चलाते रहे। धीरे धीरे शक्कर घूमेगी और फिर घी बाहर आएगा। इस वक्त अपने हाथों को बचाकर रखना होगा क्योंकि घी उड़ता है। लगातार एक ही डायरेक्शन पर चलाते रहना है और कढ़ाई पर जब हल्का गुलाबी सा रंग दिखे तो इसमें पहले ही तैयार स्टील की छन्नी और इसके नीचे एक बर्तन रख दे। मिश्रण को इस पर फैला दे। घी पूरा नीचे आ जाएगा और जब ठंडा हो जाएगा तो टुकड़े कर ले। बहुत स्वादिष्ट लगता है।
1: बिल्कुल। और ये एक रेसिपी है नारियल की बर्फी। तो इसके लिए आपको नारियल का बुरादा लेना है 2 कप, और चीनी 1.5 कप, दूध 1 कप, या मावा भी ले सकते हैं यानी कि खोया 3/4 कप, देसी घी 1 बड़ा चम्मच, इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, और कुछ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो थाली को चिकना कर लें पहले, और एक थाली या ट्रे में थोड़ा सा देसी घी लगाकर अच्छी तरह चिकना कर लें। फिर एक कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच घी गर्म करें। इसमें दूध और चीनी डालकर धीमी आँच पर चीनी घुलने तक पकाएं, और यदि आप मावा मिला रहे हैं तो इसे भी इसी समय दूध चीनी के साथ कढ़ाई में डाल दें।

0: फिर इसमें अब नारियल का बुरादा, इलायची पाउडर और लगातार चलाते रहें डालने के बाद, और जब ये मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो कढ़ाई में न छोड़ने लगे ऐसा देखना चाहिए आपको। और फिर आप इस पे, आप इसको जो थाली आपने तैयार करी घी लगी उस पे बर्फ़ी बना के बर्फ़ी के लिए जमा सकते हैं, और बाद में जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो बर्फ़ी के शेप में काट लीजिए
1: और खा लीजिए।
0: बिल्कुल।

0: अब मीठा हो गया तो एक नमकीन भी बनना चाहिए ना, तो दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं और एक बेहद स्वादिष्ट और खुशबूदार डिश बनाते हैं, नारियली चावल। इसके लिए सामग्री आपको लेना है बासमती चावल 1 कप, नारियल का दूध लेना है 1 कप, पानी 1 कप, और बघार यानी छोंक के लिए लेना है राई, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, घी और काजू। बनाने की विधि कैसे होगी, कुकर में घी गरम करें, उसमें राई, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची और काजू डाल के भून लीजिए। जो धुली हुई बासमती चावल है वो डाल दीजिए, 1 मिनट तक चलाएं। अब इसमें 1 कप पानी और 1 कप नारियल का दूध मिला करके डालें और बाद में बिल्कुल आखिर में नमक डालें। कुकर का ढक्कन बंद करें, धीमी आंच पर 2 सीटी आने तक पकाएं। आपके ये जो खिले खिले नारियल चावल हैं वो तैयार।
1: तो मैं तो आज घर में ये सारी रेसिपीज बनाने वाली हूं।
0: मैं भी यही सोच रही थी।
1: आप गाना सुन ले
0: चलिए।

0: तो श्रोताओं को धन्यवाद कहते हैं, इतने सुंदर सुंदर श्रोताओं ने कमेंट्स लिखे, उनके कारण कार्यक्रम में बहुत बहुत हमें मजा आया।
1: बिल्कुल,
0: और ऐसा लग रहा था कि हमारे सारे श्रोता हमारे साथ में हैं।
1: और पौष्टिक जो आपने व्यंजन विधियां भेजी है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और अब लेते हैं इजाजत, आप सभी को सोनाली पाठक
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं लेखिका ज्योति जैन से ममता सिंह की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है साहित्यकार ज्योति जैन जी को, जो इंदौर से आई हैं। विविध भारती के स्टूडियो में ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये बताइए कि रेडियो में आज आकर आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि रेडियो से आपका बड़ा गहरा नाता रहा है। कैजुअल अनाउंसर रही हैं और फिर परमानेंट अनाउंसर के लिए कॉल लेटर आया था जो ज्वाइन नहीं किया, तो क्या कहानी है ये बताइए आप।
2: जी ममता जी, देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं जहां बैठी हूं ये जगह मेरे लिए अपरिचित नहीं है, क्योंकि आज से 40 बरस पूर्व जब मैंने कैजुअल अनाउंसर के तौर पर काम किया तो स्टूडियो का वातावरण मेरे लिए बिल्कुल सुपरिचित रहता है। मैंने कैजुअल अनाउंसर के तौर पर 3 वर्ष काम किया पढ़ाई के साथ साथ, फिर परमानेंट के लिए एग्ज़ाम दी और जब उसका रिजल्ट आया तो मेरी नियुक्ति होने वाली थी, लेकिन उन्हीं दिनों मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रपोज़ किया।
1: अच्छा।
2: और दरअसल उस वक्त क्या होता है, जब आप प्रेम में होते हैं ना तो प्रेम के अलावा और कुछ नजर नहीं आता।
1: जी जी बिल्कुल।
2: तो और चूंकि मैं जिस परिवार में आ रही थी वहाँ थोड़ा सा मारवाड़ी कल्चर है, तो नौकरी पेशा, और उस समय 40 साल पहले लड़कियां इतनी नौकरी नहीं करती थी बहुत ज्यादा, और ये मेरा निर्णय था कि नहीं, मुझे दोनों में से अगर किसी को चुनना है तो मैंने निश्चित रूप से अपने प्रेम को चुना
1: जी।
2: और इस तरह से बस शादी हो गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों तक मैंने अपने दाम्पत्य और मातृत्व का आनंद लिया, और उसके बाद मैं आकाशवाणी इंदौर से अभी भी जुड़ी हूँ, कविताओं के माध्यम से, कहानी के माध्यम से या वार्ताओं के माध्यम से
1: जी,
2: और कुछ प्ले में भी मैंने अपने स्वर दिए हैं।
1: क्या बात है।
2: जी जी।
1: तो बात कविताओं की चली है और इधर आप बता रही थी कि आपके पतिदेव ने प्रपोज किया तो कोई प्रेम कविता उनके लिए लिखी है?
2: हाँ, उनके लिए दरअसल जिस समय हम कोर्टशिप में थे तो बड़ी सारी कविताएं खूब लिखी। जब आप प्रेम में होते हैं ना ममता जी, तो
1: शब्द फूटते हैं बहुत सारे।
2: शब्द फूटते हैं, से झरना फूट पड़ता है शब्दों का। और प्रकृति में प्रेम ही प्रेम नजर आता है, तितलियों में प्रेम, फूलों में प्रेम, हर जगह प्रेम नजर आता है, और जो संवेदनाएं थी वो शब्दों में अभिव्यक्त हो गई
1: जी।
2: और उस समय तो खूब सारी कविताएं लिखी, बाद में जब वो कविताएं पढ़ती थी तो लगता था अरे क्या लिखा है, ऐसी अनगढ़ कविताएं हुआ करती थी
1: जी, जी।
2: लेकिन बाद में, और शरद जी पर तो मैंने खूब प्रेम कविताएं लिखी। एक दफा,
1: शरद जी नहीं, आपके पतिदेव।
2: जी जी, मेरे पतिदेव। एक बार जनवरी में हमारी शादी की सालगिरह होती है और वैलेंटाइन डे फरवरी में आता है, तो उस समय मैंने उनके लिए कविता लिखी थी कि संत वैलेंटाइन क्या सचमुच होते हैं? हाँ देखा है मैंने।
1: क्या बात।
2: मेरी कमजोरियों को थामते, मेरी भावनाओं को तराशते, सत्य शिव और सुंदरम की शाश्वत अभिव्यक्ति, हाँ वही है मेरी बेटियों के पिता।
1: क्या बात है
2: जी। इस तरह से एक पूरी कविता शरद जी को समर्पित की थी जी।
1: तो बात कविता की चली है और पतिदेव की चली है, तो मुझे लगता है कि पतिदेव के लिए कोई गाना बनता है यहाँ पर, कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे?
2: पहला गाना मैं जो सुनवाना चाहूंगी, चूंकि आपने बात पतिदेव की कही है, तो जिस समय शरद जी ने मुझे प्रपोज किया उस समय दरअसल कैसेट्स का जमाना था, है ना, तो कैसेट में बड़े गाने भर भर के दिए जाते
1: और
2: थे,
1: ऑर्डर देके भरवाते थे। हाँ, ये वाला गाना,
2: वो लिस्ट वाला होती थी एक छोटे से। हाँ। तो शरद जी ने जो मुझे पहली कैसेट दी थी, हाँ, और उसमें जो पहला गाना था वो था हंसते जख्म का, तुम जो मिल गए हो तो लगता है, तो वो गाना सुनवा दीजिए
1: जी।

0: आप सुना है कि सिंथेसाइजर भी बजाया करती थी, और श्रोताओं को बता दें कि ज्योति जी के पास गुणों का खजाना है, उनके गुणों की चर्चा हम करते रहेंगे पूरे प्रोग्राम में। तो सिंथेसाइजर वाली बात बताइए, कब कहाँ से सीखा और कहाँ से विचार आया?
1: नहीं, दरअसल जब भी मेरी बेटियां छोटी थी, शिखा चानी, दोनों जब बच्ची छोटी थी, तो पहले एक छोटा सा सिंथेसाइजर हुआ करता था, कुछ 1 फुट का होता था, वो बहुत
0: जी
1: बड़ा नहीं होता था, तो वो हमने बच्चों को ला करके दिया और बच्चे बजाते थे।
0: जी
1: मेरी जो बड़ी बेटी है वो बड़ी अच्छी धुनें निकाल लेती थी मन से, कहीं विधिवत सीखा नहीं,
0: जी
1: तो मैं भी थोड़ा बहुत उस पर अपना ऐसे हाथ आजमा लिया करती थी।
0: जी
1: बाद में बच्चियाँ बड़ी हुई, मैं भी थोड़ा सा फुर्सत पाई, तो बच्चों ने मदर्स डे पर एक बड़ा सारा सिंथेसाइजर ला के दिया। मुझे लगता है

0: सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और मुझे ये भी महसूस होता है कि जब तक जीवन है तब तक आप सीखना चाहें तो सीखते रह सकते हैं। सीखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई कमी नहीं है। तो मुझे चूंकि संगीत का शौक है तो मैंने उस सिंथेसाइजर पर धुनें निकालना शुरू की, और बगैर सीखे जो पसंदीदा गीत होते हैं तो वो मैंने उस पे अपने आप से निकालना शुरू किया,
1: जी
0: और इस तरह से दो दो चार चार लाइनें बजा लेती हूँ शौकिया।
1: जी तो ज्योति जी, सिंथेसाइजर की बातें हुई और अब आपके लेखन की दुनिया में हम छलांग लगाना चाहते हैं, फिर बीच
0: जी
1: बीच में यादों के गलियारों में भी सैर करवाते रहेंगे।
0: जी
1: बताइए
0: बिल्कुल।
1: कि आपके लेखन की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से प्रेरणा मिली?
0: जी, लेखन की शुरुआत में कहूंगी कि जब मैं चौथी पांचवी या छठी क्लास में थी, हम लोग मंदसौर से हैं मूलतः। मेरा जन्म स्थान जो है वो मंदसौर है, मालवा का एक छोटा सा कस्बा है,
1: जी
0: इंदौर से करीब 4 घंटे का रास्ता होगा।
1: जी जी
0: तो चूंकि मेरे माता पिता दोनों नौकरी पेशा थे
1: जी
0: और जिस जगह हम रहते थे वहाँ पर मेरी जो माँ है वो सबसे पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा महिला थी।
1: क्या बात है,
0: हाँ जी, तो
1: क्या काम
0: हमारे
1: करती थी?
0: मम्मी, मेरी माँ नर्स रही हैं, श्रीमती अन्नपूर्णा तिवारी। और मैं यहाँ आपको एक लगे हाथों तो एक बात और बता दूँ कि मेरी माँ नर्स रही और उन्हें अपनी नर्सिंग सेवाओं के लिए आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब के हाथों वो सम्मानित भी हुई
1: क्या
0: है।
1: बात है भाई,
0: हाँ जी,
1: बहुत बढ़िया।
0: तो चूंकि घर में वातावरण ऐसा था, बाऊजी भी साहित्य प्रेमी थे, तो हमारे घर में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका और अखंड ज्योति, ये चार पत्रिकाएं मुझे ध्यान है नियमित आती थी।
1: जी
0: और उसके थोड़े समय बाद बाऊजी को लगा कि ये पढ़ने की शौकीन है, तो हमारे यहाँ बाऊजी खरीद कर चंदा मामा, चंपक, नंदन, पराग, ये चार, देवकीनंदन जी उस समय शायद पराग देखते थे, तो
1: जी
0: ये पत्रिकाएं हमारे यहाँ आई। तो मैं पढ़ाई में बहुत एवरेज स्टूडेंट रही लेकिन घर में साहित्यिक पत्रिकाएं आती थी तो मैं वो ज़रूर पढ़ती थी।
1: जी
0: मुझे याद है कि मालती जोशी की धारावाहिक कहानियां इस तरह से धर्मयुग में लगातार आती थी और हम
1: साप्ताहिक हिंदुस्तान में भी छपी
0: साप्ताहिक
1: थी।
0: हिंदुस्तान
1: जी
0: में, तो
1: बिल्कुल,
0: हम, मतलब मैं पढ़ती और फिर वो वहाँ क्रमशः में आती तो उत्सुकता रहती थी कि आगे
1: आगे
0: क्या
1: क्या
0: हुआ।
1: होगा, क्या बात
0: तो
1: है।
0: मुझे लगता है लेखन का बीज वहाँ पढ़ने से शुरू हुआ, वहाँ ये बीज पड़ा और फिर धीरे धीरे और अधिक, जहाँ जिन घरों में मैंने देखा है वाचन संस्कृति होती, वाचिक परंपरा जहाँ है वहाँ पर लेखन का बीज पढ़ने की संभावनाएं रहती हैं।
1: जी
0: तो बस इस तरह से वो पुस्तकें पढ़ने के बाद, और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि अखंड ज्योति जो पत्रिका थी और उन दिनों सारिका भी लघु कथाएं छापने लगी थी, तो अखंड ज्योति में छोटे छोटे प्रेरक प्रसंग आया करते थे, तो शायद उन प्रेरक प्रसंगों को पढ़ पढ़ करके मेरे अंदर कहीं लघु कथा का बीज पनपा,
1: जी
0: छोटा छोटा लिखना शुरू किया। फिर जब मैं हायर सेकेंडरी में आई तो हमारे गुरु थे श्री राम ताम्रकर सर,
1: जी
0: तो जब उन्होंने मुझे एंकरिंग दिया कि उनको लगा कि इसके अंदर कुछ लेखन क्षमता है, तो उन्होंने कहा ज्योति एंकरिंग करोगी? मैंने कहा जी सर बिल्कुल करूँगी। तो उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम दे दिया, तो प्रोग्राम आपको प्रस्तुत करना है तो लिखना पड़ेगा,
1: जी जी
0: है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया, दो दो लाइनें ऐसे तुकबंदी की, तो सर ने मुझे कविराज कहना शुरू कर दिया कि अरे, तो बस वो एक कच्चा कच्चे, एक्चुअली बोलते कि वो एक पगडंडी थी कच्ची, सड़क पे आने में देर थी लेकिन वो पगडंडी पे वहाँ चलना शुरू कर दिया था, यात्रा वहाँ से शुरू हो गई थी।
1: जी,
0: जी
1: तो या वो जो यात्रा शुरू हुई और यात्रा का पड़ाव जो सड़क पर पहुंची पगडंडी से, तो सड़क वाली यात्रा को याद कीजिए और कोई कविता सुनाइए हमारे श्रोताओं को।
0: मुझे लगता है कि शादी के बाद मैंने फिर, मुझे लगता है कि विधिवत वापस से लिखना शुरू किया।
1: एक संग्रह हमें याद आ रहा है, दुनिया काठ की,
0: हाँ जी, हाँ
1: तो
0: जी,
1: क्या इस संग्रह से कोई कविता सुनाएंगे?
0: हाँ हाँ बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, आपने दुनिया काटकी का जिक्र किया है, तो दुनिया काटकी का विचार ऐसे मन में आया कि एक बुजुर्ग को मैंने देखा कि उनको चौखट से ठोकर लग गई और वो लड़खड़ा के गिरने को हुए, लेकिन तत्काल उन्होंने हाथ में पकड़ी लकड़ी से, छड़ी से संभाल लिया अपने आप को।
1: अच्छा।
0: तो बस एक बिजली की तरह एक विचार कौंधा कि जिससे ठोकर लगी वो भी लकड़ी
1: जी
0: और
1: जी
0: जिसने सहारा दिया, संभाला, वो भी लकड़ी।
1: क्या बात है।
0: तो बस ऐसा लगा कि लकड़ी पर क्यों ना कुछ लिखा जाए।
1: जी
0: तो जब यादों को टटोलने लगी, अपने शब्दों के संग्रह को, तो जब अभिव्यक्ति वो डायरी में आई पन्नों पर, तो मुझे लगा कि बचपन से लेकर के जीवन के अंत तक लकड़ी आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा रहती है।
1: सही बात है, बिल्कुल।
0: तो इस तरह से ये दुनिया काठ की का अस्तित्व आया सबके सामने।
1: वो तो अंतिम संस्कार में भी लकड़ी
0: जी
1: का
0: जी
1: प्रयोग
0: जी
1: होता है,
0: बिल्कुल।
1: तो जन्म से मृत्यु
0: हाँ
1: तक।
0: जी, मैं इसकी पहली कविता सुनाती हूँ पहले आपको,
1: जी।
0: जिसका शीर्षक है पलना। गर्भ में मुलायम तरल में बहता शिशु बाहर आते ही माँ की हथेलियों में आ जाता है।
1: क्या बात है,
0: जो तरल तो नहीं, लेकिन ममत्व उसे मुलायम ही बनाता है।
1: वाह।
0: देखिए, क्योंकि गर्भ में एकदम तरल है और फिर वहां से हथेलियों में आता है, लेकिन हथेलियां भी मुलायम है। लेकिन चंद पलों बाद ही लकड़ी का पलना उस शिशु का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है
1: जी,
0: अगले चंद माहों के लिए।
1: वाह।
0: तरलता कोमलता के पश्चात कठोरता जन्म लेते ही पाठ पढ़ा देती है कि आने वाले जीवन की कठोरता से।
1: क्या बात है।
0: तरलता कोमलता के पश्चात कठोरता जन्म लेते ही पाठ पढ़ा देती है आने वाले जीवन की कठोरता से लड़ने की ताकत देने का।
1: वाह, क्या बात है, बहुत
0: लकड़ी का
1: बढ़िया
0: पलना ऐसा होता है।
1: जी,
0: जी
1: बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ एक गाना सुनते
0: जी
1: हैं, फिर हम आगे और बातें करते हैं। बताइए, आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं?
0: गीत तो देखिए मुझे बहुत सारे पसंद है, क्योंकि मुझे संगीत पसंद है, गीत पसंद है, गुनगुनाना अच्छा लगता है।
1: जी
0: मैं आपको बता दूं कि एक बार ताम्रकर सर ने मुझे एक छोटा सा ट्रांजिस्टर दिया था जब मेरी पहली पुस्तक का विमोचन हुआ था,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: वो किचन में रख के विविध भारती सुनना मेरा प्रिय शगल रहा
1: क्या
0: है।
1: बात है।
0: तो यहाँ पर मुझे दरअसल ज़िंदगी में मुझे लगता है सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है, और वैसे भी मैं ब्लड ग्रुप से भी बी पॉजिटिव हूँ। तो मुझे हमराज का एक गीत मुझे बहुत पसंद है, सुनील दत्त साहब की मूवी थी, और गीत के बोल हैं, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो,
1: क्या बात है,
0: गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के
1: मुस्कुरा
0: जियो।
1: के जियो,
0: जी
1: हमराज
0: जी
1: फिल्म का ये गाना
0: हाँ जी
1: सुनते हैं
0: जी
1: यही।
0: न मुँह छुपा के जियो और

0: हमराज फिल्म के गाने के बाद हमें बताइए कि ये नजर बट्टू क्या है। वैसे हमें पता है कि कहानी संग्रह नजर बट्टू, भोरवेला और सेतु,
1: जी
0: और नजर बट्टू पर शोध भी किया गया ऐसा कहीं हमने सुना और पढ़ा है,
1: जी
0: तो इसके बारे में बताइए। क्या फिलाडेल्फिया में इसी के लिए यही
1: नहीं
0: शामिल हुआ था?
1: नहीं नहीं नहीं देखिए, फिलाडेल्फिया में जो मुझे सम्मान मिला था, मतलब मैं तो फिलाडेल्फिया नहीं गई, वहाँ की जो संस्था है वो वर्ष में एक बार भारत आती है और
0: अच्छा
1: विभिन्न शहरों में ये साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न काम करने वालों को, उनके समग्र साहित्य पर ये सम्मान प्रदान किया जाता है हिंदी में काम करने वालों के लिए। तो वो फिलाडेल्फिया वाला सम्मान अलग है, लेकिन नज़र बट्टू की जहाँ तक बात है, तो ये मॉरिशस की एक शिक्षिका है, वो इंदौर आई थी एक कार्यक्रम में, वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई। वो अपने साथ मेरी कुछ 3-4 किताबें ले गई। जब वे मॉरिशस गई तो वहाँ पर महात्मा गांधी हिंदी शोध संस्थान है, वहाँ पर वो पढ़ाती हैं। तो वहाँ की एक विद्यार्थी है श्रावणी बिहारी करके, उसने शोध प्रबंध लिखने के लिए उनसे कुछ विषय चाहे।
0: जी
1: तो जो मैम थी उन्होंने उन्हें मेरी नज़र बट्टू किताब दी और कहा कि तुम इसे पढ़कर देखो और फिर बात करते हैं। जब उस विद्यार्थी ने वो नज़र बट्टू किताब पढ़ी तो उसे मेरी जो कहानियाँ उनको बहुत पसंद आई, तो उन्होंने फिर मुझे मैसेज किया, अपना पूरा परिचय दिया और फिर ये जानना चाहा कि मैडम नज़र बट्टू किताब तो बहुत अच्छी है लेकिन नज़र बट्टू का मतलब क्या है। तो मैंने उसे बताया कि नज़र बट्टू यानी कि जो नज़र से बचा है वो, तो जो नज़र बट्टू होता है वो नींबू मिर्ची भी होते हैं जो कि कई बार बड़े बड़े ट्रकों पर लगे रहते हैं, है
0: बिल्कुल,
1: ना,
0: गाड़ियों में
1: तो
0: लगे रहते
1: गाड़ियों
0: हैं,
1: में।
0: स्कूटर
1: ये
0: बाइक
1: बात
0: पे।
1: अलग है कि उनसे ब्रेक
0: हाँ
1: नहीं लगता लेकिन
0: बिल्कुल,
1: एक आस्था होती है,
0: हाँ
1: इसलिए वो
0: हाँ
1: नज़र बट्टू गाड़ी पर
0: हाँ
1: टंगाया
0: और
1: जाता
0: खेतों
1: है
0: में
1: और
0: किसान
1: खेतों में
0: कृषक भाई भी
1: किसान।
0: लगाते हैं।
1: और जो एक और नज़र बट्टू है वो है काले धागे। तो जो मेरी जो नज़र बट्टू कहानी है, उस कहानी संग्रह की जो शीर्षक कहानी है नज़र बट्टू, वो काले धागे और नींबू मिर्च की थीम को लेकर ही वो कहानी है
0: जी
1: और कुछ मार्मिक कहानी है और लोगों को, पाठकों को वो बहुत पसंद आती है। तो उन्होंने नज़र बट्टू की सारी कहानियों पर शोध प्रबंध किया। इस तरह मॉरिशस की जो विद्यार्थी है उसका शोध प्रबंध मेरी ये कहानी संग्रह नज़र बट्टू पर संपन्न हुआ है।
0: और फिलाडेल्फिया में जो आपका संग्रह गया था जो शोध के लिए, वो क्या कहानी है उसके बारे में बताइए।
1: वो समस्त समग्र साहित्य पर मिला है वो सम्मान मुझे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ हिंदी में कार्य करने वालों को ही वो दिया जाता है वो सम्मान।
0: तो
1: जी
0: कैसे वहां जुड़ी आप?
1: मुझे ना ममता जी एक चीज़ लगती है कि कोई अगर मेरी किताब चाहता है तो मैं हमेशा अपनी किताबें देना पसंद करती हूँ।
0: और ये तो बहुत अच्छी बात है,
1: जी
0: किताबें तोहफे में देना,
1: हाँ
0: और सबको ये सीखना चाहिए
1: जी
0: कि बड़े बड़े गिफ्ट की बजाय किताब तोहफे में
1: हाँ
0: दें।
1: मैं यहाँ आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जब किताबों की भेंट की बात

0: चलिए, तो मेरी एक कविता संग्रह है माँ बेटी। वो मैंने माँ बेटी, सिर्फ माँ और बेटी पर कविताएं हैं उसमें। इंदौर के कई प्रतिष्ठित परिवारों ने अपनी बेटियों की शादी में वो पुस्तक बारातियों को तोहफे में दी।
1: क्या बात है।
0: हाँ जी, मतलब 100-100 किताबें बल्क में खरीद कर और ये किताबें भेंट दिए। तो किताबें भेंट देना मुझे अच्छा लगता है, तो इसी तरह जब मैंने किसी को भेंट की और मुझे पता नहीं चला कि वो उनके किन रिश्तेदारों के माध्यम से वो किताब फिलाडेल्फिया पहुंच गई, और जब फिलाडेल्फिया पहुंची, 2 या 3 पुस्तकें थी कुल,
1: जी
0: फिर उनका मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप पे। आजकल ये सुविधा बहुत हो गई, पहले तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने मेरा पूरा परिचय मांगा, मेरी बाकी किताबों की जानकारी ली, कुछ गूगल से प्रोफाइल लिया उन्होंने, और फिर इस तरह उन्होंने समग्र साहित्य का अध्ययन करके और फिर वो पुरस्कार मुझे प्रदान किया।
1: क्या बात है,
0: जी
1: बहुत बहुत बधाई हो इस बात के लिए और
0: जी
1: बहुत बढ़िया।
0: धन्यवाद।
1: और बात कविता की चली है, माँ बेटी कविता संग्रह, तो उस संग्रह से कुछ लाइनें सुनाएंगी हमारे श्रोताओं को?
0: हाँ जी, वो जो काव्य संग्रह है उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है।
1: कहानी है।
0: जिस समय मैंने अपने उम्र के 50 वर्ष पूरे किए, बच्चों ने मेरे को, मुझे दोनों बेटियों ने बड़े सरप्राइजेस दिए कि 7 दिन तक मम्मा का बर्थडे मनाएंगे, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, खूब सरप्राइज दिए। तो मुझे लगा कि क्या किया जाए, तो मैंने माँ बेटी, चूंकि मेरी माँ भी है, माँ का आशीर्वाद भी है अभी, तो माँ और बेटी को लेकर के एक एक मैंने कविताएं रच दी। इस तरह से वो, चूंकि 50 साल की हुई थी, तो 50 कविताएं आ गई माँ बेटी में। उसकी कुछ कविताएं हमारे परिचित हैं, उन्होंने अपनी बेटी की पत्रिका में वो कविताएं छपवाई हैं।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: जी।
0: और एक डॉक्टर साहब है वहाँ, डॉक्टर मोड़, उन्होंने तो अपनी बेटी की शादी के रिसेप्शन में उन कविताओं के बड़े बड़े पोस्टर बनवा के रिसेप्शन हॉल में लगवाए।
1: क्या बात है भाई,
0: हाँ जी,
1: वाह।
0: माँ कभी मंदिर नहीं जाती थी,
1: माँ कभी मंदिर नहीं
0: माँ
1: जाती
0: कभी
1: थी।
0: मंदिर नहीं जाती थी। बाद में समझ में आया कि उन्होंने घर को ही मंदिर बना रखा था, वो मंदिर जाती किसके लिए?
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: क्योंकि उनके लिए उनका कर्म ही उनकी पूजा थी। नजर से बचाने को माँ ने बांध दिए हाथ पैरों में काले धागे, मगर माँ नहीं जानती थी कि ताकत काले धागों में नहीं, माँ के हाथों में है।
1: वाह क्या बात है।
0: जी
1: मेरे हिस्से का आकाश, जिसका जिक्र भी किया, जेब में भरकर सपने सारे और चुस्कियाँ, तो ये सारी कविता संग्रह
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: इनकी इनका भी जिक्र कीजिए, क्या इनके पीछे भी कोई प्रेरणा है, कोई कहानी
0: नहीं,
1: है? और कितने
0: दरअसल
1: कविता संग्रह आए ये भी बताइए।
0: हाँ, मेरे 5 कविता संग्रह आए हैं। लोगों के लेखन की अलग अलग शैली होती है।
1: जी।
0: तो पहले तो मेरे हिस्से का आकाश कविता संग्रह की बात करूं, तो मैं हमेशा ये कहती थी कि हर स्त्री को अपना अस्तित्व, अपना आत्मबल बनाए रखना चाहिए। ठीक है, बेशक पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन स्त्रियों का अपना अस्तित्व है। स्त्रियों ने अपनी बेटियों को उनके बेटी होने के गर्व के साथ परवरिश देना चाहिए।
1: जी।
0: मुझे हमेशा अपने स्त्री होने पर गर्व रहा, और मुझे लगता है कि अपने हिस्से का आकाश तो हमें ले ही लेना चाहिए। कोई कहता है एक मुट्ठी आसमान, भाई एक मुट्ठी आसमान क्यों, हमारे हिस्से का जितना आकाश है
1: सारा
0: पूरा
1: आकाश,
0: दीजिए
1: क्या
0: ना,
1: बात
0: है
1: है।
0: ना, सारा आकाश। तो मेरे हिस्से का आकाश ये कविता संग्रह था। मुझे लगता है कि अमूमन जो स्त्रियों की स्थिति है
1: जी।
0: वो कैसी है, तो उसकी एक कविता है जाल,
1: जी।
0: शीर्षक है जाल। मैं चहचहाती थी, मैं मुखर थी,
1: क्या बात है।
0: उसने कहा तुम वाचाल हो। मैं चुप रही, कुछ ना बोली, उसने कहा गुन्नी हो।
1: ओ
0: मैंने तिनका तिनका जोड़कर घर सजाना चाहा, उसने कहा खर्चीली हो। मैंने कुछ नहीं किया, उसने कहा निकम्मी हो।
1: ओहो।
0: मैंने धरती चाही, उसने पिंजरा बना दिया। मैंने आकाश चाहा, उसने जाल बुन दिया।
1: क्या बात है।
0: तो क्या मेरा कुछ नहीं, तो क्या
1: मेरा
0: मेरा
1: कुछ
0: कुछ
1: नहीं।
0: नहीं,
1: जी।
0: उसने उदारता दिखाई और मुझे क्षितिज दे दिया, कहा
1: वाह।
0: जा पूरा क्षितिज तेरा, जो दिखाई तो दिया मगर हाथ नहीं आया।
1: क्या बात है, वाह। बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई। तो हम जरा विराम देते हैं
0: जी
1: बातचीत को और एक गाना सुन लेते हैं, फिर हम

0: आगे चलते हैं।
1: सोनू निगम का जो अग्निपथ वाला गाना है,
0: हाँ
1: अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी
0: बाकी
1: है
0: है
1: जिंदगी,
0: जी,
1: वो वाला सुनवा दीजिए
0: तो चलिए सुनते हैं ये
1: जी।
0: गाना।

0: तो शरद जी की आपके लेखन की दुनिया में क्या भूमिका रही है?
1: शरद जी से भी जब कोई ये सवाल करते हैं तो बोलते हैं, अरे भाई मेरी भूमिका कुछ नहीं रही है, और इतनी भी नहीं है कि मैं उसका लिखा हुआ पढ़ता हूँ, वो लिखा हुआ भी नहीं पढ़ते हैं, टीका टिप्पणी भी नहीं, लेकिन जब भी समाचार पत्रों में कुछ आता है तो वो ज़रूर पढ़ते हैं और कभी कभी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि बहुत अच्छा लिखा है और ऐसा सब। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे कुछ करने के लिए उनकी इजाज़त लेना पड़ती है, मैं अपने कार्य करती हूँ, है ना, उनका अपना फील्ड अलग है, मेरा अलग है, लेकिन कभी उन्होंने किसी प्रकार की रोक ऐसी नहीं लगाई कि नहीं ये नहीं करो ये नहीं करो।
0: जी
1: और लेखन चूंकि मैं मुझे प्रिय रहा है और लेखन के लिए मैं हमेशा अपने आप को तैयार पाती हूँ, उनकी भूमिका इसलिए भी बहुत ज़्यादा नहीं होती।
0: कि
1: मेरा जो
0: उनके
1: लेखन का वक्त है वो दोपहर का है,
0: अच्छा जी
1: कभी कभी सुबह भी होता है।

0: ये कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अरे लेखन के लिए मुझे एकांत चाहिए। जैसे मेरे दिमाग में कोई चीज़ आई कि मुझे ये लिखना है, तो अपने किचन में मैंने एक डायरी और पेन रखा हुआ है, वो फिक्स है।
1: बढ़िया।
0: कभी कभी काम करते करते कोई विचार आया
1: तो नोट कर
0: तो
1: लेते हैं।
0: आटा गूंद रहे हैं और फटाक से हाथ धोए और पहले उसके 4 बिंदु लिख लिए
1: वाह क्या बात है।
0: जी, और फिर उसको विस्तार दे देती हूँ। क्योंकि कई बार कोई बिंदु आपके दिमाग में आता है, वो छिटक जाता है कई बार, तो वो लिख लेती हूँ। तो मुझे ये शिकायत कभी नहीं रही कि अरे मुझे
1: लिखने का वक्त नहीं
0: एकांत
1: मिलता।
0: नहीं मिला या लिखने का वक्त नहीं मिला। वक्त तो चुराना पड़ता है किसी भी काम के लिए, और वो वक्त चुराने में मुझे लगता है कि मैं माहिर हूँ, चुरा लेती
1: जी तो ये
0: हूँ।
1: बहुत बढ़िया बात है।
0: जी
1: तो ये आपकी जो प्रेम कहानी है कैसे शुरू हुई और कहाँ मुलाकात हुई वो एक दृश्य भी बताती चलिए।
0: मुलाकात हमारी एक कॉमन फ्रेंड थी, वो डॉक्टर थी। अनफॉर्चुनेटली वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो हम उनके उनके यहाँ मिले। उस वक्त मैं पढ़ रही थी, बीए कर रही थी, और शरद जी भी वहाँ आए अपने मित्र के साथ। तो बाद में उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि मुझे तो ना इस लड़की से शादी करनी है, ये जो येलो फ्रॉक वाली लड़की
1: अरे
0: से। फिर उसके बाद हम काफ़ी समय तक नहीं मिले, लेकिन फिर इनकी एक और मित्र है, उनकी पत्नी के पड़ोस में हम रहने चले गए किराए
1: जी
0: से। तो जैसे उसने मुझे देखा तो उससे जाके पीसीओ से, वो एसटीडी पीसीओ होते थे उस समय, वहां से इनको फोन किया कि अरे आप जिस लड़की को ढूंढ रहे थे वो हमारे घर के बाजू में रहने आइए। तो शरद जी वहां आ गए
1: हाँ
0: और हमारी दो चार मुलाकातें हुई। तब तक मुझे इस चीज का
1: अंदाजा नहीं था।
0: अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ इनके मन में है। फिर लेकिन इन्होंने होली वाले दिन जो है वो प्रपोज कर दिया,
1: होली के दिन।
0: होली के दिन प्रपोज किया, रंगे पूते थे बिल्कुल।
1: हाँ
0: और पहले उस समय ग्रीन और पिंक कलर चला करता था, उसमें रंगे हुए थे। लेकिन
1: हाँ
0: तो मैं थोड़ा सा चौंक गई कि अरे एकदम अप्रत्याशित था वो। तो उस समय तो मैंने, और मेरी चूंकि एग्जाम चल रही थी तो मुझे पूरा ध्यान उधर देना था, लेकिन पता नहीं फिर कुछ मेरे मन में भी कुछ तो अंकुरित हुआ होगा। तो फिर फाइनली हम लगभग 1 महीने के बाद में मेरी रजामंदी रही।
1: ज्योति जी एक बार फिर हम आपके लेखन की दुनिया में लौटते
0: जी
1: हैं। आपकी जहाँ तक मुझे जानकारी है 17 किताबें हैं
0: जी
1: और बहुत सारी किताबों को पुरस्कृत किया गया।
0: जी
1: मध्य प्रदेश का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला।
0: जी
1: शब्द साधिका सम्मान से आपको
0: जी
1: सम्मानित किया गया।
0: जी
1: किस कृति के लिए मिला और वो कैसा था एक्सपीरियंस आपका?
0: ये जो साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार मुझे मिला है, ये मेरी पुस्तक यात्राओं का इंद्रधनुष के लिए मिला। इसमें मेरे सारे यात्राओं के वर्णन हैं।
1: जी
0: और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से अखिल भारतीय पुरस्कार मिलना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान
1: गौरव
0: की
1: की
0: बात
1: बात है।
0: थी, गौरव
1: बिल्कुल।
0: की बात थी। यात्राओं के वृत्तांत का चलन अंग्रेजी में बहुत है, हिंदी में बहुत कम है।
1: जी
0: वो किताब जब चयनित हुई तो मुझे निश्चित रूप से प्रसन्नता होती है। हमको जब भी मैं यात्राएं करती हूँ तो आने के बाद में सब थक्के सो जाते हैं, लेकिन मेरी आदत चूंकि सुबह जल्दी उठने की है तो 5 बजे नींद खुलती है और मैं डायरी लेके पिछले दिन की तमाम बातें नोट कर लेती हूँ।
1: बढ़िया।
0: तो जब हम यात्रा वृत्तांत लिखने लगते हैं तो वो सारी चीज़ें काम आती हैं। तो मैं जब भी बाहर से आती हूँ सारे यात्राओं के वृत्तांत लिखती हूँ। तो जब बात पहाड़ों की हो रही थी तो जितनी भी कठिन यात्राएं हैं हम कर चुके हैं,
1: जी।
0: जिसमें सिक्किम के, लेह लद्दाख के, ये सब तो थे ही। इसके अलावा जो हमारी एक प्रमुख यात्रा है वो है कैलाश मानसरोवर की। वो अद्भुत यात्रा है। कैलाश मानसरोवर तो है ही, कैलाश पर्वत में एक चुंबकीय आकर्षण है। मुझे लगता है वो हमको अपनी ओर खींचता है। जब हम 3.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए जब कैलाश के चरण स्पर्श को जाते हैं,
1: जी
0: तो मेरा अनुभव तो ये था कि मैं वहाँ से लौटना ही नहीं चाहती थी।
1: वाह क्या बात है।
0: और मुझे मालूम नहीं ये आस्था है क्या है, कुछ तो स्पिरिचुअल है। और वहाँ मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए, ये भाव वहाँ पर आते हैं। और कठिन यात्राओं में 2 बार मैंने स्कूबा डाइविंग किया है, क्योंकि मुझे मछलियों की तरह तैरना अच्छा लगता है।
1: कहाँ पर की है स्कूबा
0: स्कूबा
1: डाइविंग?
0: डाइविंग मैंने एक तो मालवण में की है और दूसरा स्कूबा डाइविंग मैंने किया लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप वाला थोड़ा गहरे पानी में।

0: किया है, पर वो भी अद्भुत अनुभव रहा।
1: जी
0: और इसी तरह मैंने हवाई जहाज से कूदी मारी, स्काई डाइविंग हमने की दुबई में,
1: हाँ
0: और उसमें भी जो चिड़ियाओं की तरह उड़ने वाला था वो पैरासेलिंग और स्काई डाइविंग से पूरा हो गया सपना।
1: हाँ तो चलिए इस खुशी के नाम एक गाना सुनते हैं।
0: शान की आवाज में हम एक गाना सुन लेते हैं, चांद सिफारिश जो करता हमारी।

0: इस गाने के बाद अब आपके एक और हुनर की बात हमें याद आ रही है, वो है कला, मांडना आर्ट,
1: जी
0: जिसमें भी आप माहिर हैं। तो ये कहाँ से सीखा, कहाँ से इसका बीज पड़ा आपके मन में?
1: तो दरअसल मेरा बचपन जहाँ बीता
0: हाँ
1: वहाँ पर बाड़ा होता था, एक गुआड़ी बोलते थे उसको मालवा में।
0: जी
1: तो 16-17 घर थे और हर घर के आगे एक कच्चा ओटला हुआ करता था। वो ओटले का बनावट ऐसी होती थी, चौकोर होता था वो, हर घर के आगे एक ओटला। तो ओटला कैसा होता था कि वो पीली मिट्टी और गोबर से लीप के उसको बनाया जाता था।
0: जी जी
1: एक छोटा सा, समझ लीजिए, सिर्फ एक एक सीढ़ी ऊंचा होता था वो। तो जब उस पर पीली मिट्टी और गोबर का लेप हो जाता था तो बिल्कुल प्लेन होता। और चूंकि मालवा की संस्कृति है मांडना, तो उस पर गेरू और खड़िया यानी सफ़ेद और लाल रंग से डिज़ाइन बनाई जाती थी।
0: जी
1: वो जो पुरानी परंपराएं हैं वही डिज़ाइन होती थी। तो ये हमने हमारी दादी से, बुआ से, अड़ोस पड़ोस की महिलाओं से, चाची भाभी, पहले तो ये रिश्ते होते थे ना, आंटी अंकल तो होते नहीं थे, तो कोई
0: काकी
1: भाभी,
0: चाची होती
1: चाची,
0: थी,
1: काकी, मामी, बुआ जी,
0: दादी
1: मामी
0: नानी।
1: जी, ऐसे होता था।

0: वो लोग, चूंकि माँ नौकरी करती थी तो जब सब महिलाएं मांडने बनाती थी तो चूंकि माँ नहीं है तो चलो भाई माँ की बेटी को पकड़ो, है ना। तो मुझे कहते चलो गुड्डी, गुड्डी मेरा बचपन का नाम था, गुड्डी चलो आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, मांडो बनाई ले, मालवी बोली में बोलते थे हमारे, आ जा तू भी। तो मैं अपना खेरू गड़िया एक कटोरी में लेके बैठ जाती थी खड़िया, और उनके देखा देखी कुछ कुछ टिपकी लगा के गोला बनाया, ऐसे करके मैंने शुरू किया। तो बीज जो था वो वहां पड़ गया, फिर वो बनाती रही, फिर शादी होकर आए तो रंगोली बनाना घर में, घर के आगे ऐसे सब। उन दिनों हमारे यहाँ फर्नीचर का काम चल रहा था तो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े थे, क्योंकि मांडना प्रेम था, और मेरा कॉलेज में बीए में मेरा एक सब्जेक्ट पेंटिंग था,
1: जी जी
0: तो हाथ चलते थे, ब्रश चलता था। तो मैंने उसको टेराकोटा से पेंट करके और उस पर रेड वाइट कलर से अपना बना दिया, मरून कलर से उसको पोत लिया और वाइट कलर से उस पर डिज़ाइन बना ली, कुछ मिरर चिपका दिए छोटे छोटे ऐसे करके। तो मेरी जो छोटी बेटी है चानी, उससे बोला मम्मी बहुत सुंदर बना है, आप थोड़े ज़्यादा बनाओ ना, अपन एग्जीबिशन करते हैं।
1: अच्छा
0: हाँ जी, तो वो क्या है, थोड़ा बिजनेस फैमिली वाली है ना,
1: हाँ हाँ
0: तो चूंकि शरद
1: तो
0: जी बिजनेस में, तो उसके भी दिमाग में बिजनेस के आइडियाज आते रहते हैं।
1: हाँ
0: तो उसने बोला मम्मी एग्जीबिशन करते हैं। तो मैंने जो पहले जो मांडने बनाए वो करीब 300 के करीब मांडने बनाए मैंने,
1: वाह क्या बात है।
0: वो फिर लकड़ियाँ प्लाई लिया ऐसे करके। और आप यकीन मानिए कि मेरी जो पहली एग्जीबिशन थी उसमें सिर्फ 8 मांडने वापस घर आए, बाकी सारे बिक
1: बिक
0: गए।
1: गए,
0: जी,
1: वाह क्या बात है।
0: तो इस तरह से अलग अलग होटल्स में वहाँ पर एग्जीबिशन होती थी तो वो की। और उस वक्त तो सबको बना बना के गिफ्ट में भी यही दे दिया, कभी किताब कभी मांडना, ऐसा
1: जी
0: हस्तलिखित या हाथ की चीज़ की वैल्यू अलग होती है, उसके वो
1: बिल्कुल।
0: अनमोल होती है दरअसल।
1: अब लघु कथाओं की बात करते हैं। लघु
0: जी
1: कथाएं भी आपने लिखी हैं और
0: जी
1: संग्रह है,
0: जी
1: कुल कितने लघु कथाओं के संग्रह है और किसी लघु कथा का जिक्र कीजिए यहाँ पर।
0: जी मेरे पहला लघु कथा संग्रह था मेरा जलतरंग, दूसरा था बीजू का, तीसरा था 99 का फेर, और जो चौथा लघु कथा संग्रह है मेरा वो है गोद भराई, और वो मैंने मालवी में लिखा है। मतलब मालवी हमारे यहाँ की बोली है,
1: जी।
0: मैं चूंकि हिंदी लिखती हूँ, हिंदी ही मेरा विषय रहा है, लेकिन जिस परिवेश में आप रहते हैं, जहाँ बोलियाँ होती हैं, तो मुझे लगता है कि बोलियाँ बचाना भी बोलियों वालों का दायित्व है।
1: जी।
0: तो चूंकि मैं मालवा से हूँ तो मैंने एक पुस्तक मेरी मालवी बोली में मैंने निकाली है, तो एक लघु कथा संग्रह वो है। और मेरा जो पांचवा लघु कथा संग्रह है वो मेरे ख्याल से अगले महीने मेरे हाथ में आ जाएगा,
1: अच्छा।
0: जो षष्ठी पूर्ति के नाम से आ रहा है, क्योंकि जब मैं, मुझे लगा 60 बरस हुए तो 60 बरस में 60 लघु कथाएं तो होनी चाहिए,
1: क्या
0: तो
1: बात
0: काफी
1: है,
0: समय से लिख
1: वाह।
0: रही थी और इस तरह से वो, तो मेरे कुल जमा भी 5 लघु कथा संग्रह है।
1: बढ़िया।
0: तो मैं, आप कहें तो एक लघु कथा यहाँ पर सुनाऊँ मैं।
1: जी
0: दरअसल लघु कथा का शीर्षक है ढक्कन।
1: जी
0: ढक्कन। विष्णु जी और सरला जी दोनों ही उस सुबह अपने दैनंदिनी कार्यों में व्यस्त थे, जीवन की सांध्य बेला में भी उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते थे। विष्णु जी दिन भर में 5-10 दफा कोस लेते थे, उस दिन सुबह भी शहद की बरनी का ढक्कन खोलने का निरर्थक प्रयास करते हुए बड़बड़ा रहे थे। इस उम्र में आकर भी अकेलापन,
1: जी
0: अकेलापन कहाँ, उनसे 2 ही बरस छोटी सरला जी ने उनके हाथ से बरनी लेते हुए हंसकर कहा, मैं इतनी बड़ी दिखाई नहीं देती आपको, अनजान मत बनो, तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं, बच्चों की परवरिश उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी क्या इसी दिन के लिए, उनके स्वर में नाराजगी थी। सरला जी ने मन ही मन सोचा, क्या सारी गलती बच्चों की ही है, क्योंकि वे अपने पति का स्वभाव भी जानती थी, लेकिन प्रत्यक्ष में बोली, यह लीजिए पतले कपड़े की सहायता से ढक्कन खुल गया है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगली बार थोड़ा ढीला छोड़ना होगा ढक्कन को भी और रिश्तों को भी।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये तो एक मुकम्मल लघु कथा आपने
0: हाँ,
1: सुनाई,
0: लघु
1: और
0: कथा की विशेषता ही यह है
1: हाँ
0: कि उसके
1: कि
0: अंत में एक पंच होता है,
1: जी, बहुत
0: और वो
1: बढ़िया
0: पंच जो है वो पूरी लघु कथा का सार होता है।
1: जी।
0: जी
1: ज्योति जी, लेखन की दुनिया में
0: जी
1: बहुत तरह के बदलाव आए हैं,
0: जी
1: लेकिन स्त्री लेखन आज कहाँ पर है? स्त्री लेखन में किस तरह के बदलाव आप महसूस करती हैं? किस तरह की चुनौतियाँ आज अभी भी कायम है?
0: चुनौतियां तो हैं,
1: जी
0: जब हम पुरुष प्रधान समाज में हैं तो चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन

0: स्त्री लेखन में एक जो बदलाव मुझे दिखाई दे रहा है वो है खुलापन अधिक हो गया है। मैं उससे सहमत नहीं होती हूँ
1: जी,
0: क्योंकि मैं मालती जोशी की कहानियों को पढ़कर बड़ी हुई हूँ।
1: जी,
0: उनकी कहानियों की नायिका स्वाभिमानी होती थी, लेकिन उनके लेखन में खुलापन कभी नहीं रहा। उनकी नायिकाएं दबी कुचली नहीं होती थी
1: जी,
0: उनकी नायिकाएं षड्यंत्रकारी भी नहीं होती थी, लेकिन अब खुलापन भी आ गया है और महिलाओं को षड्यंत्रकारी बनाकर प्रस्तुत किया जाता है कई जगह।
1: जी,
0: मुझे लगता है वो आवश्यक नहीं है। कई बार मुझे कुछ लेखिकाएं कहती भी हैं कि तुम्हारे लेखन में इतनी सात्विकता की क्या जरूरत है। मेरा पैटर्न यही है, मैं ऐसे ही लिखती हूँ
1: जी,
0: और उससे मुझे सुख मिलता है। जब आप कोई काम कर रहे हैं, आप लेखन कर रहे हैं, उससे आप सुख मिलता है और संतुष्ट हैं, तब तो आपका लेखन सार्थक है।
1: जी,
0: तो बदलाव आया है। दूसरा ये कि कई बार ऐसा सुनने में आता है और देखने में भी कि महिला लेखिकाओं को मतलब संघर्ष अधिक करना पड़ता है।
1: जी,
0: एक मुकम्मल स्थान उनको कई बार वो नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम अपना लेखन ईमानदारी पूर्वक करते रहें
1: जी, बिल्कुल सही कह रही हूँ,
0: और अपने प्रयासों को जारी रखें, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपना स्थान बनाने से कोई रोक सकेगा।
1: बिल्कुल। हमें ये बताइए कि इतनी सारी किताबें हैं, तकरीबन 17 किताबें आपकी आ गई हैं,
0: जी,
1: तो आपके मुख्य मूल रूप से विषय कहाँ से उठाती हैं, कौन से विषय होते हैं?
0: विषय आसमान से नहीं आते, है ना, विषय हमारे चारों तरफ होते हैं। मैं यहाँ इसको ईश्वर का आशीर्वाद मानती हूँ, क्योंकि देखते तो सभी हैं लेकिन उन्हें पकड़ने की और फिर अभिव्यक्ति की जो ताकत है वो मैं मानती हूँ कि वो ईश्वर प्रदत्त है, जिसे लोग गॉड गिफ्ट कहते हैं। एक अखबार में खबर आई थी, एक बच्चे को, कोई शिशु था, वो झाड़ी में फेंक के कोई चला गया, नवजात शिशु
1: जी।
0: अब नवजात शिशु झाड़ी में फेंक के गया तो पता चला कि वो तो लड़का है। तो एक कोई अम्मा ने बोला, अरे लड़क छोरो फेंक गई, छोरी होती तो बात थी। मतलब देखिए, समाज की मानसिकता कैसी है कि अगर लड़की को फेंक दिया होता तो बात समझ में आती, लड़के को क्यों फेंका? तो ये बीज हो गया। अब इसको विस्तार दे करके कथा का रूप हो गया। एक बार मैं अपनी एक्टिवा पे जा रही थी और पीछे से गाड़ी वाला हॉर्न दे रहा है, तो मैंने बोला कि भाई रेड लाइट है, तो मैंने ऐसे इशारा किया कि ऊपर से निकल जा।
1: अच्छा,
0: हाँ, ऊपर से निकल जा भाई, तेरे को
1: जल्दी है तो।
0: लेकिन वहां उस उन 39 सेकंड में खड़े खड़े दिमाग में आया, तो मैंने जाकर के एक व्यंग लिखा कि हवाई जहाज में चढ़कर हम जाएंगे दफ्तर।
1: क्या बात है,
0: है ना? तो इस तरह से विषय कब आ जाते। और इन सब विषयों के साथ साथ जनरली सामान्यतः लोग बोलते हैं कि राजनीति महिलाओं का विषय नहीं है, राजनीति पर महिलाएं नहीं लिखती। मन्नू भंडारी जी की महाभोज की हम बात करें तो बहुत कम है जिन्होंने, महिलाओं ने राजनीति पर लिखा है। तो मेरा एक उपन्यास है पार्थ तुम्हें जीना होगा, वो पूरा राजनीति पर है उपन्यास। और उसकी नींव ही पड़ी कि मुझे, मैं उन दिनों राजनीतिक परिदृश्य से बहुत विचलित थी और मुझे लगता था कि ऐसा कोई युवा और ईमानदार नेता होना चाहिए जिस पर जनता भरोसा करे, जो ईमानदार है, युवा है और अपने कार्य के प्रति समर्पित है।
1: जी जी,
0: तो वो अर्जुन के रूप में मेरे सम्मुख आकर के खड़ा हो गया। तो मैंने बस उसके बिंदु लिखे कि ये उपन्यास मुझे लिखना है और वो मैंने लिखा। और हमारे आसपास जो सामाजिक विसंगतियां होती हैं वो आपको लिखने के लिए प्रेरित करती हैं।
1: जी जी,
0: और माँ के लिए ही बस दो लाइनें कहूंगी कि गरीबी में भी उसने कभी मेरी फ्रॉक नहीं फटने दी।
1: वाह,
0: गरीबी में भी उसने कभी मेरी फ्रॉक नहीं फटने दी, संस्कारों का धागा जो था माँ के पास।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई। अब चलते चलते कोई एक कविता और सुनाना चाहेंगी?
0: मैं अंतिम, इसकी अंतिम तो नहीं, अंतिम से एक पहले वाली कविता सुनाती हूँ। उसका शीर्षक है अर्थी।

0: पूर्ण हुआ है जीवन, अब तो विदा की बेला आई है। बांसों का ताना बाना बुन अर्थी आज सजाई है। जीते जी जो मिल ना पाए, कांधे सारे आज मिले हैं। चला चली की इस बेला में किसी से भी ना शिकवे गिले हैं। जीवन भर जो इर्द गिर्द रही, उसी काष्ठ की अर्थी सजी है। नया जन्म पाने को ही तो आत्मा ने यह देह तजी है। इसका शीर्षक है खिड़की। यह भी कविता है दुनिया काट की किताब से ली है
1: जी।
0: वह लकड़ी की खिड़की शीशा भी नहीं है जिसमें, जब खुलती है तो भीतर आ जाते हैं सपने हवा के साथ। कभी कभी ले आती है मोगरे की सुगंध भी, और जब रहती है बंद तब भी रात में निकला चांद महसूस कर लेते हैं सपने सारे।
1: क्या बात है, बढ़िया कविता, बहुत ही दिलचस्प बातें आपने साझा की ज्योति जी।
0: जी,
1: आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
0: मुझे भी आपसे मिलकर यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे लेखिका ज्योति जैन से ममता सिंह की बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग मिला योगिता जाधव से, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। आज के मेहमान कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।
3: आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा। पिटारा, पिटारा।

0: संगीतकार उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर,
0: एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
5: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। इस समय शाम के 5 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों की महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा दायित्व को बढ़ावा देना और विचार विमर्श से सुशासन और सेवा वितरण में सुधार लाना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के महासागर दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में सेशल्स एक महत्वपूर्ण साझेदार है। नई दिल्ली में सेशल्स के संसद के अध्यक्ष अजरेल अनेस्टा के साथ बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि भारत और सेशल्स वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निरंतर संसदीय संवाद से दोनों देशों की साझेदारी को नई गति मिलेगी तथा दीर्घकालिक संबंध और मजबूत होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वैश्विक आर्थिक स्थिति और भारत की बदलती विकास गति पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने विश्लेषण क्षमता मजबूत करने, सुदृढ़ व्यापक आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने

0: बांटने और वैश्विक आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए भारत और आईएमएफ के बीच निरंतर सहयोग के महत्व पर बल दिया। भारत से राहत सामग्री लेकर पांचवा विमान आज नेपाल पहुंचा। इसमें 11 सदस्यीय बचाव दल, विशेष उपकरण और 5 टन से अधिक दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। लगभग 4000 लोग अभी भी लापता हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुर में अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। नए डाकघर में स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं मिलेंगी। ये दिव्यांगजनों के लिए सुगम प्रवेश और नागरिकों के लिए सुविधाजनक प्रतीक्षा कक्ष की व्यवस्था भी है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज लद्दाख के करगिल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि अब करगिल और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती का एक नया रेट कार्ड तय आधार पर की जा रही है।
1: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा। आपके इशारों पर जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
0: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य सुरक्षा उपायों के बिना विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन लिस्टिंग और बिक्री के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के अनुसार प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस सत्यापन, खरीदार पात्रता जांच और अनिवार्य सुरक्षा संबंधी खुलासे के बिना अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग सुविधा दी जा रही थी। प्राधिकरण ने कंपनी को विस्फोटक के रूप में वर्गीकृत किसी भी अन्य पदार्थ की लिस्टिंग, होस्टिंग, विज्ञापन या बिक्री पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। नौसेना का नौकायान प्रशिक्षण पोत आईएनएस सुदर्शनी अपने समुद्री अभियान लोकायान 26 के अंतर्गत स्पेन के बार्सिलोना पहुंचा। बार्सिलोना में पोत स्पेन की नौसेना के साथ पेशेवर और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल आगंतुक शुक्रवार को पोत को देखने जा सकेंगे। ये भारत की समुद्री विरासत को देखने का अवसर प्रदान करेगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना है। किदाम्बी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स्ड डबल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शोटी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: धीमी इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।
2: लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले सुनते हैं हीरो फिल्म का गीत, आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की।

ये गीत अभी आपने सुना हीरो फिल्म से अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाजों में। लीजिए अब सुनते हैं संगीत फिल्म का गीत, आवाजें हैं सुरेश वाडेकर और अनुराधा पौडवाल की।

0: ये गीत अभी आपने सुना संगीत फिल्म से। इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है।
1: अरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि हमारे भट्टे पर जो नया मजदूर आया है उसके हाथ पैरों पर बहुत से दाग हैं। उसे इन पर चोट लगने से भी दर्द नहीं होता।
2: अरे ये तो कुष्ठ रोग का लक्षण है, तुम उसे अभी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाओ।
3: यदि आपके आसपास किसी भी व्यक्ति में कुष्ठ रोग का कोई भी लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं। यदि संदिग्ध व्यक्ति में कुष्ठ रोग पाया गया तो सरकार द्वारा सूचित करने वाले व्यक्ति को 250 रुपए दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
0: हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, FM 107.2 MHz पर। लीजिए अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

Hello dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. हर बार की तरह आज भी हम कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन लाए हैं आपके लिए. आजकल तो डेटा साइंस के बारे में कुछ ज्यादा

चर्चा हो रहा है, स्पेशली यंगस्टर्स कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्या है ये डेटा साइंस, व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस, आगे बढ़कर क्या होगा, उसे सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आइए जानते हैं इस इंफॉर्मेशन के बारे में आज के लम्हे प्रोग्राम में। डेटा साइंस एक प्रक्रिया है जिसमें डेटा का अध्ययन, विश्लेषण और उसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करके नए ज्ञान और अंतर्निहित संबंधों की पहचान की जाती है ये डेटा को संरचित और असंरचित रूप में उपयोग करके नए जानकारी और अद्यतित सूचनाओं का उपयोग करने की प्रक्रिया है। डेटा साइंस के माध्यम से आप बड़े डेटा सेट से नए निर्णय ले सकते हैं, मशीन लर्निंग के माध्यम से वैश्विक मानक एल्गोरिथम्स का निर्माण कर सकते हैं और दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा नीतियों को बना सकते हैं। डेटा साइंस का महत्व बढ़ता जा रहा है क्योंकि आजकल डेटा हमारे जीवन के हर क्षेत्र में मौजूद होता है। ये संगठनों को बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है, उद्योग में नए संभावनाएं प्राप्त करता है, ग्राहकों के अनुभव को सुधारता है और सामाजिक मुद्दों के समाधान में सहायता प्रदान करता है। डेटा साइंस में करियर के अवसर भी बहुत बढ़ते हैं। ये एक रोचक क्षेत्र है जहां आप डेटा साइंस, डेटा प्लानिंग, डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, बिजनेस एनालिस्ट और बड़े डेटा विश्लेषक जैसे पदों पर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही डेटा साइंस का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में जैसे वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं। डेटा साइंस का अध्ययन करके आप डेटा के बड़े वाले बाजार में रुचिकर करियर बना सकते हैं और आपको अच्छी सैलरी और प्रोफेशनल विकास की संभावनाएं मिलेंगी। दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं, हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla। डेटा साइंस का महत्व विशेष रूप से बढ़ रहा है क्योंकि आजकल विभिन्न संगठन और उद्यम डेटा के माध्यम से और बेहतर निर्णय लेने के लिए डेटा साइंस का उपयोग कर रहे हैं। यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग और सांख्यिकी के माध्यम से संगठित और असंगठित डेटा से नई जानकारी प्राप्त करके उद्योग, सरकार और सामाजिक माध्यम के लिए महत्वपूर्ण नई दिशाएं खोजने में मदद करती है। डेटा साइंस बड़ी मात्रा में डेटा का गहन अध्ययन है जिसमें कच्चे, संरचित और असंरचित डेटा से कुछ अर्थ निकालना शामिल है। बड़ी मात्रा में सार्थक डेटा निकालने के लिए डेटा की प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है और ये प्रोसेसिंग सांख्यिकीय तकनीकों और एल्गोरिथम, वैज्ञानिक तकनीकें, विभिन्न तकनीक आदि का उपयोग करके की जा सकती है। ये कच्चे डेटा से सार्थक डेटा निकालने के लिए विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करता है। डेटा साइंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, रवि को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है लेकिन जब भी वो किताब खरीदना चाहता है तो वह हमेशा उलझन में रहता है कि उसे कौन सी किताब खरीदना चाहिए क्योंकि उसके सामने बहुत सारे विकल्प हैं। यहाँ डेटा साइंस तकनीक उपयोगी होगी। जब वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खोलते हैं तो उसे अपने पिछले डेटा के आधार पर उत्पाद अनुशंसा मिलेंगे। जब वे उसमें से किसी एक को चुनते हैं तो उसे इस पुस्तक के साथ इस पुस्तकों को खरीदने की अनुशंसा भी मिलती है क्योंकि ये सेट सबसे ज्यादा खरीदा जाता है। इसीलिए उत्पादों की सभी अनुशंसाओं और सामूहिक रूप से खरीदी गई पुस्तकों के सेट दिखाने डेटा साइंस के उदाहरण में से एक है। डेटा साइंस का सबसे उपयोगी अनुप्रयोगी सर्च इंजन है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम इंटरनेट पर कुछ खोजना चाहते हैं तो हम ज्यादातर सर्च इंजन का उपयोग करते हैं, इसीलिए डेटा साइंस का उपयोग सर्च को तेजी से करने के लिए किया जाता है। डेटा साइंस का इस्तेमाल रियल टाइम में ट्रांसपोर्ट फील्ड जैसे ड्राइवरलेस कारों में भी किया जा सकता है। ड्राइवरलेस कारों की मदद से दुर्घटनाओं की संख्या को कम करना आसान है। उदाहरण के

चालक रहित कारों में प्रशिक्षण डेटा को एल्गोरिथम में डाला जाता है और डेटा वैज्ञानिक तकनीक की मदद से डेटा का विश्लेषण किया जाता है, जैसे कि हाईवे, संकीर्ण सड़कें आदि में गति सीमा क्या है और ड्राइविंग करते समय विभिन्न स्थितियों को कैसे संभालना है आदि। वित्तीय उद्योग में डेटा विज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वित्तीय उद्योग में हमेशा फाइनेंस डीलिंग्स में हमेशा धोखाधड़ी और नुकसान के जोखिम का मुद्दा रहता है। इस प्रकार वित्तीय उद्योगों को कंपनी के लिए रणनीति निर्णय लेने के लिए नुकसान के जोखिम विश्लेषण को स्वचालित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा वित्तीय उद्योग भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए डेटा विज्ञान विश्लेषक उपकरणों का उपयोग करते हैं। ये कंपनियों को ग्राहक के जीवन काल मूल्य और उनके शेयर बाजार की चाल का अनुमान लगाने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए स्टॉक मार्केट में डेटा साइंस मुख्य भाग है। स्टॉक मार्केट में डेटा साइंस का उपयोग पिछले डेटा के साथ पिछले व्यवहार की जांच करने के लिए किया जाता है और उनका लक्ष्य भविष्य के परिणाम की जांच करता है। हर उद्योग डेटा की शक्ति का उपयोग करके नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अपने कौशल को निखार और 12वीं सदी के सबसे हॉट ट्रेंड का हिस्सा बने। तो दोस्तों, अगली कड़ी में फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla spice.lamhe.vanilla। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब प्रस्तुत है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: TIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले एक सुंदर विचार। इसे भेजने वाले हैं माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल।

0: दीपांजलि पटेल और दीपक पटेल जी
1: लिखते हैं, हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। बीते कल की चिंता छोड़कर आज को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि छोटी छोटी अच्छी कोशिशें ही बड़ी सफलता की राह बनाती हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर और प्रेरणादायी संदेश के लिए। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: नोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और पोता मास्टर अल कबीर।
0: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी लिखते हैं,
1: खूबसूरत तस्वीरें नेगेटिव से तैयार होती हैं, वो भी अंधेरे में। इसलिए जब भी आपके जीवन में अंधकार नजर आए तो समझ लीजिए कि कोई आपके भविष्य की सुंदर सी तस्वीर का निर्माण कर रहा है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए, लेकिन एक बार फिर से हमारा निवेदन है कि सुविचार जरूर भेजें, पर उससे कहीं अधिक कार्यक्रमों पर लिखें, प्रतिक्रिया भेजें और प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
1: एक बार ऐसा करके देखिए, सचमुच आपको बहुत आनंद आएगा।
0: जी हाँ, सच में बहुत आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए। तो श्रोताओं, ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। साथियों, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई मजेदार और प्रेरक अनूठी जानकारी। तो विमलेश जी, क्या है वो मजेदार अनूठी बात जो हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं?
1: अजी जी, बात तो सचमुच बड़ी प्रेरक है। हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो बेशक सुनने में बहुत मामूली सी लगती है, लेकिन ये हमारे जीवन के दृष्टिकोण को बदल देने की क्षमता रखती है। तो श्रोता मित्रों, जरा कल्पना कीजिए कि किसी फैक्ट्री में एक मशीन ने 20 या 30 वर्षों तक लगातार काम किया।
0: उस मशीन ने लाखों वस्तुएं बनाई, वस्तुएं बाजारों में गई, उनके कारण व्यवसाय हुआ, यानी उस मशीन ने हजारों परिवारों की रोजी रोटी में योगदान दिया। मगर अब वो पुरानी हो चुकी है और उसकी जगह नई मशीन आने वाली है।
1: जी,
0: आप कहेंगे ये ठीक भी है, क्योंकि बदलती तकनीक के साथ मशीनें तो बदलती हैं।
1: श्रोताओं, ऐसा अक्सर होता है ना कि कई जगहों पर पुरानी मशीन को कबाड़ समझकर हटा दिया जाता है। आज हम बात करेंगे जापान में प्रचलित एक अनूठी संस्कृति के बारे में। जापान में कुछ कंपनियां और कर्मचारी उस पुरानी मशीन को हटाने या रिटायर करने से पहले खास काम करते हैं।
0: श्रोताओं, हटाए जाने से पहले उस दिन वहां के कर्मचारी मशीन के पास जमा होते हैं।
1: जी,
0: वे याद करते हैं कि किस प्रकार इस मशीन ने उनका परिवार चलाया, रोजी रोटी चलाई और बच्चों को पाला। वे याद करते हैं कि किस प्रकार उस मशीन ने देश की अर्थव्यवस्था और उस देश की प्रगति में योगदान दिया।
1: थोड़ी देर वे इस बात पर भी कृतज्ञता से चर्चा करते हैं, फिर वे मशीन के सामने खड़े होकर सर झुकाते हैं और उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वे कुछ क्षण रुकते हैं और कहते हैं,
0: धन्यवाद, तुमने वर्षों तक हमारा साथ दिया, तुमने पेट पालने में हमारी सहायता की। श्रोताओं, आपको विशेष रूप से बता दें कि ऐसा करना कोई सरकारी नियम नहीं है, लेकिन यह जापान में मशीनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की संस्कृति का हिस्सा है।
1: साथियों, ये बात बहुत गहरा चिंतन और दृष्टिकोण लेकर हमारे सामने आती है। आइए जरा हम सब सोचें, अगर एक निर्जीव मशीन के प्रति इतना सम्मान हो सकता है, तो उन जीवित लोगों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए जिन्होंने हमारे जीवन में कभी न कभी योगदान दिया है।
0: जी हाँ श्रोताओ, क्या हमने कभी अपने स्कूल के उस शिक्षक को धन्यवाद के साथ याद किया जिसने कभी हमें पढ़ाया था?
1: जी,
0: माता पिता भी इस सूची में शामिल होते हैं। श्रोताओ, कड़वी सच्चाई तो ये है कि हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जो चुपचाप हमारी जिंदगी को आसान बनाते रहते हैं और महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हम उनके प्रति कई बार कृतज्ञ नहीं रह पाते।
1: जी हाँ श्रोताओ, कृतज्ञता केवल धन्यवाद कह देना ही नहीं है, ये एक दृष्टिकोण है। ये स्वीकार करना है कि मेरी सफलता समृद्धि में अनेक लोगों का योगदान है।
0: जी श्रोताओ, एक बात और, आइए जरा अपने घर के चारों ओर नजर दौड़ाकर देखें। वो पुरानी कुर्सी, वो पुरानी टेबल, शायद वो हमारा पुराना कंप्यूटर,
1: जी
0: शायद वो पुरानी किताब जिसने हमें अपने जीवन का रास्ता दिखाया, क्या वे सभी हमारी आभार के पात्र नहीं है? वे सभी हमारे आभार के पात्र हैं। इस्तेमाल की हुई वस्तुएं भी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, मशीनों को रिटायर करने की जापान की एक छोटी सी प्यारी सी परंपरा हमें याद दिलाती है कि जिन निर्जीव वस्तुओं से हमारा जीवन चलता है, उन्हें हमेशा सम्मान मिलना ही चाहिए।
0: तो श्रोताओ, उमंग कार्यक्रम के द्वारा आज हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि यदि आपके जीवन में कोई पुरानी वस्तु जो अब उपयोग में नहीं आने वाली है, तो उसे भी सम्मान पूर्वक विदा कीजिए।
1: जी,
0: क्योंकि उसने भी कभी न कभी आपकी सेवा की है।
1: याद रखिए, महानता इस बात में नहीं कि हमारे पास कितना है, महानता इस बात में है कि जो कुछ हमारे पास रहा है उसके प्रति हम कितने आभारी हैं।
0: श्रोताओ, हमारे देश में भी मशीनों का सम्मान विशेष अवसरों और त्योहारों पर किया जाता है। जो हमारी समृद्ध संस्कृति

0: विरासत को दर्शाता है।
1: जी, आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
0: और हाँ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए, वहाँ आपको कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
1: जी, तो प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है?
0: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम द स्मार्ट मंकी।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया है और बताया गया है कि कूड़ा इधर उधर न फेंकना और उसका उचित स्थान पर निपटान करना हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: CIET NCERT presents the program द स्मार्ट मंकी।

0: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। और उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
1: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए सुनते हैं एक और कार्यक्रम, शीर्षक है कालीबाई बंगा।
3: ये कार्यक्रम राजस्थान की वीर बालिका कालीबाई बंगा के बारे में जानकारी देते हुए उल्लेख करता है कि किस प्रकार उसने भारत के स्वाधीनता के आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाया और अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करते हुए अपना जीवन भारत माता के लिए उत्सर्ग कर दिया।
4: नमस्कार साथियों।
5: मेरा भी नमस्कार।
4: साथियों, राजस्थान की भूमि रण बांकुरों की भूमि है। यहाँ की माटी ने बहुत से वीरों, वीरांगनाओं और शहीदों को जन्म दिया है। आज हम सुनने जा रहे हैं इसी राजस्थान की भूमि की एक वीर गाथा।
5: तो आइए चलते हैं सन 1947 के पहले के राजस्थान के डूंगरपुर जिले में और पलटते हैं वहाँ के समृद्ध इतिहास के गौरवशाली पन्नों को।
4: और जब उन पन्नों को हम पलटते चले जाएंगे तो हमारी उंगलियां ठहर जाएंगी बहुत से सुनहरे पन्नों के बीच एक ऐसे पन्ने पर, जिस पर लिखी है एक बालिका के रक्त रंजित जीवन उत्सर्ग और बलिदान की गौरव गाथा।
5: आप पूछेंगे कौन थी ये बालिका, क्या है इसका परिचय, ऐसा क्या किया था इसने कि आज पूरा राष्ट्र उसे सम्मान के साथ याद करता है, क्या है इसका नाम जिसकी कीर्ति में आज अरावली की पहाड़ियों में लोग गीत गूंजते हैं और कृतज्ञ राष्ट्र उसे श्रद्धा के साथ नमन करता है।
4: तो चलिए हम बताए देते हैं, वह बालिका थी कालीबाई कलसुआ, जिसकी उम्र थी 13 वर्ष। कालीबाई कलसुआ भील जनजाति की बालिका थी।
5: आदिवासियों का गढ़ है दक्षिणी राजस्थान। इस क्षेत्र का एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले का एक गांव है रास्तापाल। भारत की आजादी के पहले तक यहां कोई सरकारी स्कूल नहीं था, लेकिन एक सामुदायिक स्कूल जरूर था जिसे स्थानीय प्रजामंडल चलाता था।
4: इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी, और इन्हीं

0: बालिकाओं में से एक थी कालीबाई कलसुआ। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नाना भाई खाट, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे।
1: इसी पाठशाला में एक शिक्षक थे श्री सेंगा भाई रोत, जो पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ाते थे। शिक्षक सेंगा भाई बालकों को कभी अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों के बारे में बताते थे, तो कभी उन अंग्रेजों के चाटुकार अत्याचारी सामंतों की कहानी सुनाते थे।
0: ये बात उन दिनों की है जब पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था।
2: अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो,
3: भारत माता की
2: जय,
3: भारत माता की जय।
0: आजादी की उत्कंठा सारे देश में हिलोरें ले रही थी, तो भला राजस्थान इसमें पीछे क्यों रहता। डूंगरपुर का प्रजा मंडल इन पाठशालाओं की मदद से आजादी का विचार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा था। शिक्षक श्री सेंगा भाई रोत बच्चों में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर रहे थे।
1: कालीबाई इन कहानियों को ध्यान से सुनती थी, सुनते सुनते उसका खून खौल उठता था। सेंगा भाई उनके लिए परम आदरणीय थे। कालीबाई अपने गुरु की परम भक्त थी। जैसा कि हमने सुना था कि इस विद्यालय का संचालन प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता था, प्रजामंडल के सदस्य नहीं चाहते थे कि इस विद्यालय में अंग्रेजों के विरुद्ध बात हो और देश प्रेम की चर्चा हो।
0: प्रजामंडल के सदस्य चाहते थे कि इस विद्यालय को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस विद्यालय में देश प्रेम की चर्चा होती थी। प्रजामंडल के लोगों ने पाठशाला बंद करवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में पाठशाला के संरक्षक नाना भाई भी उपस्थित थे। नाना भाई ने इस बैठक में प्रण किया कि मैं किसी भी हाल में अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला को बंद नहीं होने दूंगा।
1: वास्तव में वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे के मन में देशभक्ति की भावना जगे, परंतु ये बात रास्तापाल के जागीरदार को नहीं पची। वो नहीं चाहता था कि गांव के लोगों में शिक्षा का प्रचार हो।
0: नाना भाई ने घर घर जाकर लोगों को समझाया और समझाने के परिणाम स्वरूप एक भी व्यक्ति ने उस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। गांव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो वो जागीरदार झल्ला उठा। उसने सारी घटना नमक मिर्च लगाकर सामंत को कह डाली।
1: और जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल गांव की पाठशाला बंद नहीं की गई, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने के लिए वहां आ पहुंचे।
0: वो दिन था 19 जून 1947 का। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत में गई हुई थी।
1: पाठशाला में उस समय नाना भाई और सेंगा भाई दोनों उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने नाना भाई और सेंगा भाई से कहा, पाठशाला बंद करो और चाबी हमको दे दो। इस पर सेंगा भाई ने बड़ी नम्रता के साथ कहा,
0: न्यायाधीश महोदय, आप तो न्याय करते हैं, बच्चों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है, आप उसे भी बंद करवाना चाहते हैं, यह तो बच्चों के साथ अन्याय है।
1: जिला न्यायाधीश ये बात सुनकर आग बबूला हो गए और बोले,
4: तुम मुझे न्याय की सीख दे रहे हो? अपनी औकात पहले देखो, अभी बताता हूँ तुमको। सिपाहियों, इसे ट्रक से बांध कर घसीटो।
1: इस पर नाना भाई हाथ जोड़कर बोले,
0: साहब, ये पाठशाला तो प्रजामंडल के आदेश से ही तो चल रही है, आपके आदेश से नहीं। हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे बच्चों का ही भला होगा।
1: पुलिस अधिकारी ऐसा उत्तर भला कैसे सहन कर पाता। वो क्रोध से आग बबूला हो गया। फिर क्या था, उसका संकेत पाते ही सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े और उन्होंने नाना भाई की जमकर पिटाई की।
0: इससे वे बुरी तरह घायल हो गए और इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा।

0: नाना भाई से यह देखा नहीं गया। वे सेंगा भाई को बचाना चाहते थे।
1: किसी तरह नाना भाई उठे और सेंगा भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की,
0: लेकिन तभी उन पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कुंदा दे मारा। नाना भाई निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े और फिर कभी नहीं उठे।
1: उनके प्राण पखेरु उड़ गए।
0: उधर सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था।
1: धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव और आसपास के गांवों में फैल गई।
0: पाठशाला के बाहर गांव के स्त्री पुरुषों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन हर कोई बेबस था। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर सेंगा भाई को बचा सके।
1: कालीबाई उस समय खेत से पशु चारा के लिए घास काटकर आ रही थी। उसके सिर पर घास का गट्ठर था, उसके हाथ में हसिया था।
0: जब उसने अपने गुरुजी सेंगा भाई को ट्रक द्वारा घसीटे जाते देखा तो उससे ऐसा देखा नहीं गया। उसने आओ देखा ना ताओ घास का गट्ठर वहीं जमीन पर डालकर उसने ललकार कर कहा,
1: ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीट कर कहां ले जा रहे हो।
0: ये कहते हुए कालीबाई बिजली की गति से उस ट्रक की तरफ लपकी। उसने ट्रक से बंधी रस्सी को हसिये से एक झटके से काट दिया।
1: सेंगा भाई मौत के मुंह में जाने से बच गए, किंतु अफसोस सिपाहियों ने कालीबाई को उसी समय गोलियों से भून दिया।
0: उसे बचाने के लिए कुछ औरतें भाग कर आई, उन पर भी निर्मम पुलिस ने लाठियां बरसाई।
1: एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था और दूसरी तरफ लहू से लथपथ काली बाई।
0: थोड़ी देर में अरावली की पहाड़ियों में भील जनजाति के लोगों द्वारा शोक प्रकट करने का मारू ढोल गूंज उठा। भारी भीड़ जमा होने लगी, लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा, मरो या मारो वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। इस विकट स्थिति को समझकर कातिल वहां से भाग खड़े हुए
1: और बेहद जख्मी हालत में कालीबाई को डूंगरपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
0: लगभग 40 घंटे बेहोश रहने के बाद 20 जून 1947 को राजस्थान की इस वीर बाला ने दम तोड़ दिया। कालीबाई तो शहीद हो गई, लेकिन अपने गुरुजी को बचाकर उसने अपनी अखंड गुरु भक्ति का परिचय तो दिया ही,
1: साथ ही उसने जनजातीय लोगों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में आजादी की मशाल जला दी।
0: आज भी रास्तापाल गांव में कालीबाई की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है और वहीं के एक पार्क में कालीबाई की मूर्ति भी लगी हुई है।
1: राष्ट्र इस त्याग की प्रतिमूर्ति नन्ही आदिवासी वीरांगना कालीबाई को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।
0: कालीबाई तुम्हें हमारा सलाम।
2: कालीबाई भारत की एक जनजातीय वीरांगना। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
3: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, ध्वनि अंकन मयंक कुमार, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण जगबंधु जाना,
2: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
4: श्रोता अभी आपने सुना कार्यक्रम कालीबाई बंगा।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और अब हम आपसे आज्ञा चाहेंगे, क्योंकि उमंग कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी चेतना, कुसुमलता, जगबंधु और मंजू जी के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। इस समय शाम के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों की महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा दायित्व को बढ़ाना और विचार विमर्श से सुशासन और सेवा वितरण में सुधार लाना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों को इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने तथा 15 दिन के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। नए डाकघर में स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं मिलेंगी। यहां दिव्यांगजनों के लिए सुगम प्रवेश और नागरिकों के लिए सुविधाजनक प्रतीक्षा कक्ष की व्यवस्था भी है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज लद्दाख के करगिल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि अब करगिल और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की

0: आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती रेड कार्ड के आधार पर की जा रही है।
1: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा। आपके इशारों पर जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
0: एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। साथ ही ट्रस्ट में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति भी की गई है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य सुरक्षा उपायों के बिना विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के अनुसार प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस सत्यापन, खरीदार पात्रता जांच और अनिवार्य सुरक्षा संबंधी जानकारी के बिना अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग सुविधा दी जा रही थी। सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। बलजीत कौर और स्काल जेंग रिगजिन को भू साहसिक अभियानों, रिमो साहा को जल साहसिक अभियान और शिव प्रसाद चमोली को आजीवन उपलब्धि के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। भारत से राहत सामग्री लेकर 5वां विमान आज नेपाल पहुंचा। इसमें 11 सदस्यीय बचाव दल, विशेष उपकरण और 5 टन से अधिक दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 374 अंक गिरकर 76,570 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 141 अंक गिरकर 23,914 पर आ गया। किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने चीनी ताइपे के ची यू जेन और तन्वी ने डेनमार्क के अमाली शुल्ज को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 MHz ਤੇ।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: धीमी इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान? तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 MBPS प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपये की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।
1: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
4: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए

0: हैं।
1: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
1: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
0: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
1: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
2: अरोड़ा प्लाईवुड
3: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
2: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।

0: FM 137.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:10 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ 6:10 ਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6:20 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा ने वर्तमान वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों में राज्य जीएसटी संग्रह में 29% के रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की। हरियाणा सरकार ने कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के विस्तार के दूसरे चरण की योजना तैयार की। 505 नए बेड जोड़े जाएंगे। हरियाणा में नाबार्ड के सहयोग से 582 विलेज नॉलेज सेंटर स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सफाई कर्मचारियों की मांगें स्वीकार करने की घोषणा की। कहा, वेतन वृद्धि और अन्य लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षा दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 लागू किया और नूह जिले के कोलगाम, जलालपुर, फिरोजपुर और ख्वाजली कला में नए उपस्वास्थ्य केंद्र खोलने को मंजूरी दी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा ने वर्तमान वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों में राज्य जीएसटी संग्रह में 29% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है, जो देश भर में सर्वाधिक है। इस अवधि के दौरान प्रदेश का राज्य जीएसटी संग्रह बढ़कर 24,662 करोड़ रुपए हो गया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अगस्त माह में राज्य को राज्य वस्तु एवं सेवा कर से 4,982 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो पिछले वर्ष के इसी महीने के 21% अधिक है। इसके अलावा वर्तमान वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों में प्रदेश के वैट और केंद्रीय सेवा कर संग्रह में भी 13.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हरियाणा सरकार ने करनाल स्थित कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के विस्तार के दूसरे चरण की योजना तैयार की है। इस पर 404 करोड़ 95 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।

0: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई राज्य वित्त समिति की बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा की गई। दूसरे चरण के अस्पताल में 505 नए बेड जोड़े जाएंगे, जिससे कुल बेड क्षमता 600 से बढ़कर 1100 हो जाएगी। साथ ही मेडिकल कॉलेज में MBBS की दाखिला सीट भी 120 से बढ़ाकर 250 सीट करने का प्रस्ताव है। अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर, बर्न यूनिट, ICU, नेफ्रोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, मनोरोग विभाग और हेलीपैड जैसी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा संस्थान में 169.58 करोड़ रुपए की लागत से नए छात्रावास और आवासीय परिसरों का निर्माण भी जारी है। हरियाणा सरकार नाबार्ड के सहयोग से प्रदेश में 582 विलेज नॉलेज सेंटर स्थापित करेगी, जिस पर 514.53 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य वित्त समिति की बैठक में ग्रामीण विकास को लेकर अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रत्येक केंद्र लगभग 88,33,000 रुपए की लागत से एक ऑल इन वन सहायता केंद्र के रूप में विकसित होगा। यहां ग्रामीणों को सरपंच कार्यालय, सामुदायिक सलाहकार केंद्र, डिजिटल लाइब्रेरी और बैठक कक्ष जैसी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने इन केंद्रों में पारंपरिक ग्रामीण संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए चबूतरे के साथ छायादार पेड़ लगाने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और गलियों की पूरी तरह से उखाड़ने की जगह केवल क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत करने के सख्त निर्देश भी दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने घोषणा की है कि सफाई कर्मियों को 60 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षा दी जाएगी, साथ ही वेतन वृद्धि और अन्य लाभ भी मिलेंगे। आज चंडीगढ़ में मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने सफाई कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया है।
1: पालिका रोल पर कार्यरत जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज एक्ट 2024 के तहत उन्हें सुरक्षा देने का निर्णय लिया गया और 60 वर्ष तक उनका जॉब सिक्योरिटी देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। वर्तमान वेतन भत्तों सहित प्रतिमाह वेतन में बढ़ोतरी कर 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत पात्र सफाई कर्मियों की कुल 25,560 रुपए वेतन मिलेगा। इसके साथ वार्षिक महंगाई भत्ता, मृत्यु सह सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी, मातृत्व अवकाश, HKRN के अंतर्गत एक्स ग्रेशिया वित्तीय सहायता और एक्स क्रेशिया नियुक्ति जैसी सुविधाएं भी मिलने लगेंगी।
0: मंत्री विपुल गोयल ने सफाई कर्मियों को प्रदेश की स्वच्छता व्यवस्था का अहम हिस्सा बताते हुए उनसे तुरंत हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने की अपील की है। हरियाणा सरकार ने राज्य में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 को लागू कर दिया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना, नियमों को सरल बनाना और अनुपालन के अनावश्यक बोझ को कम करना है। नए संशोधनों के तहत छोटे मोटे उल्लंघनों के लिए कानूनी कार्रवाई के स्थान पर वित्तीय जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है, जबकि बिना मंजूरी के औद्योगिक इकाइयां चलाने जैसे गंभीर उल्लंघनों पर सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नए दिशा निर्देशों को प्रभावी रूप से लागू करेगा। राज्य सरकार ने सभी औद्योगिक इकाइयों और स्थानीय निकायों से नियमों का पालन करने और नदियों को स्वच्छ रखने की अपील की है। हरियाणा सरकार ने नूह जिले के 3 गांवों कोलगांव, जलालपुर, फिरोजपुर और ख्वाजली कला में नए उपस्वास्थ्य केंद्र खोलने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने चंडीगढ़ में कहा कि इन केंद्रों के शुरू होने से ग्रामीणों को गांव के स्तर पर ही नियमित स्वास्थ्य जांच, प्राथमिक इलाज, गर्भवती महिलाओं की देखभाल और बच्चों के टीकाकरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कहा है कि हरियाणा सरकार किसानों के कल्याण और समृद्धि के लिए निरंतर काम कर रही है। अंबाला में आयोजित किसान जागरूकता शिविर में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को पराली प्रबंधन के लिए बेलर और सुपर सीडर जैसी कृषि मशीनों पर भारी सब्सिडी दे रही है, साथ ही फसलों की खरीद का भुगतान भी

0: सीधे किसानों के खातों में भेजा जा रहा है। श्री गोयल ने बताया कि प्रदेश के किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए ये शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अंबाला के लिए नया दुग्ध संयंत्र भी स्वीकृत किया गया है।
1: मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ बीटा प्लांट को मंजूरी दी है। जो हमारा अभी प्लांट है इससे 5 गुना एग्जिस्टिंग से 5 गुना बढ़ के प्लांट जो है यहाँ बिल्कुल अत्याधुनिक तकनीक के साथ स्थापित।
0: हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खीजड़ ने कहा कि हरियाणा में मानसून की सक्रियता फिर से बढ़ेगी।
2: मॉनसून ट्रफ अभी थोड़ा नीचे आने की संभावना बन रही है। अभी पंजाब के आसपास बना हुआ है, मॉनसून ट्रफ जो बंगाल की खाड़ी तक बना हुआ है, जिससे कारण उत्तरी हरियाणा में कहीं कहीं बूंदाबांदी हल्की बारिश हो रही है। तो अगले 2-3 दिनों के अंदर मॉनसून ट्रफ थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो उसके बाद में हरियाणा में ज्यादातर क्षेत्रों में कहीं बूंदाबांदी हल्की बारिश, परंतु 5-6 सितम्बर तक हरियाणा ज्यादातर क्षेत्रों में बूंदाबांदी हल्की बारिश और कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना बन रही है।
0: पंचकुला के बरवाला स्थित अलीपुर औद्योगिक क्षेत्र में आज पीसीबी चिप बनाने वाली कंपनी आईसीएल के 2 यूनिटों में भीषण आग लग गई। हादसे में फैक्ट्री मालिक का करोड़ों रुपए का सामान और मशीनरी जलकर खाक हो गई। आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। पंचकुला, चंडीगढ़, डेराबस्सी और नारायणगढ़ की 15 दमकल गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और इसे आसपास की फैक्ट्रियों में फैलने से रोक लिया। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने कुरुक्षेत्र के ईश्वरगढ़ और शंकर कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से ईश्वरगढ़, शंकर कॉलोनी, छारपुरा और मुकरगर गांवों में विकास कार्यों के लिए 21 लाख रुपये देने का ऐलान किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा ने वर्तमान वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों में राज्य जीएसटी संग्रह में 29% के रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की। हरियाणा सरकार ने कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के विस्तार के दूसरे चरण की योजना तैयार की। 505 नए बेड जोड़े जाएंगे। हरियाणा में नाबार्ड के सहयोग से 582 विलेज नॉलेज सेंटर स्थापित किए जाएंगे और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सफाई कर्मचारियों की मांगें स्वीकार करने की घोषणा की। कहा वेतन वृद्धि और अन्य लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षा दी जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।

0: कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है, हूं तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। सरकार ने खंड व्यापारियों लिए भंडार हद 4000 क्विंटल तो घटा के 2000 क्विंटल की। ये नियम 15 सितंबर तो 30 नवंबर तक लागू रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे से पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार से इल्जाम लगाया। मामले की जांच CBI तो करवाने की मांग की। कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा पंजाब सरकार वल्लों BC सर्टिफिकेट संबंधी अस्पष्टता दूर करने लिए सूबा पदरी मुहिम चलाई जाएगी। श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पुरब को मनाने लिए पंजाब भर च वख वख समागमों का सिलसिला जारी। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी वल्लों श्री अमृतसर साहब के 450वें स्थापना वरेगंढ मनाने लिए साल भर चलने वाली पहलकदमी की शुरुआत। सरकार ने खंड के व्यापारियों लिए भंडार हद 4000 क्विंटल तो घटा के 2000 क्विंटल कर दी है। यह नियम 15 सितंबर तो 30 नवंबर तक लागू रहेगा। सोधे हुए प्रबंधा तहत कोई भी खंड कारोबारी प्राप्ति की तरीक तो 30 दिनों से वध समय लिए कोई भंडार नहीं रख सकता। खंड व्यापारी देश भर में किसी भी समय और किसी भी थान से 2000 क्विंटल तो वध खंड का भंडार नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी ने अज अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे उत्ते पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार से इल्जाम लगाया है। नवी दिल्ली पत्रकारों नाल गलबात करदिया BJP के बुलारे गौरव पाटिया ने इल्जाम लगाउंदिया कहा कि सीनियर अधिकारियों के तबादले और तैनातियां इस समय एक निश्चित दर कार्डर के आधार पर कीतियां जा रही ने। उन्होंने

0: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਐਫਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
0: श्रोतियों, पेश है प्रोग्राम जयमाला।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देवदर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स और हवन सामग्री।

भुज फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया इस फिल्म के गीत को गाया था अरिजीत सिंह ने, गीतकार थे मनोज मुंतशिर और संगीत दिया था आरको ने।

0: एक महल हो सपनों का, इस फिल्म को, इस फिल्म के इस गीत को गाया था लता मंगेशकर ने। गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीतकार थे रवि।
1: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
2: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
1: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
2: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी।
1: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
2: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावेनिल बालरीवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंदाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
1: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से। मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
0: अगला गीत है काला सोना से, आवाज है आशा भोसले डैनी की, गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार आर डी बर्मन।

आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से। आवाज है लता मंगेशकर की, गीतकार अनजान और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री।
2: सुबह जलाओ शाम जलाओ
3: देव दर्शन धूप।
2: सुबह जलाओ शाम जलाओ
3: देव दर्शन धूप।
4: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमाका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 5-25 सितंबर नू लकी ड्रॉ होगा आज ही खरीदो। TNC अप्लाई।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म हम दोनों से। आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीत दिया है जयदेव ने।

फौजी साथियों, सुनते हैं अगला गीत। फिल्म है द ट्रेन, आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

टैक्सी ड्राइवर के इस फिल्म के गीत को आवाजें दी आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी ने। गीतकार हैं फारूक कैसर और संगीतकार हैं ओपी नैयर।

ये था लता मंगेशकर का गाया फिल्म जूली का गीत। इसके संगीतकार थे राजेश रोशन और गीतकार आनंद बख्शी।

ये था फिल्म गीत गीत ये था फिल्म गीता मेरा नाम का गाना, स्वर लता मंगेशकर का था, बोल राजेंद्र कृष्ण के और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी। इस गाने के साथ ही फौजी साथियों, आज का जयमाला कार्यक्रम समाप्त होता है। जय हिंद।

0: जिदे इस प्रोग्राम च तुसी सुने दलेर मेहंदी दे गाए गीत। यह आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे, 5 सितंबर और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ।

0: ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਵਾ ਮਹਿਲ।
1: आइए सुने कार्यक्रम हवा महल।

आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं प्रहसन विवाह यंत्र। आज प्रसारित होगा इसका दूसरा भाग। इसके लेखक हैं एन आर टंडन, निर्देशन मुख्तार अहमद का है।

0: वो हल्के हरे रंग की साड़ी पहन लो रानी, वो तुम्हें अच्छी लगती है।
1: मैं तो गुलाबी रंग की ही साड़ी पहनूंगी।
0: अब हर बात में जिद ना किया करो, खाना अपनी पसंद का और पहनना दूसरों की पसंद का होना चाहिए।
1: मैं हमेशा तुम्हारी पसंद के कपड़े पहनती हूँ, आज ही अपनी पसंद की साड़ी निकाली है तो तुमने टोक दिया। लो, मैं नहीं जाती सिनेमा।
0: अच्छा भाई, अपनी पसंद की पहनो, पर जल्दी करो। और सुनो, पिक्चर अंग्रेजी देखेंगे, हिंदी पिक्चरों में हमें आनंद नहीं आता।
1: ओहो, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरा तुम्हारा स्वभाव नहीं मिलता, मुझे बाहर जाने के लिए ना कहा करो। मैं कहाँ तक तुम्हारे स्वभाव का अनुकरण करूँ? मुझे गर्म खाना अच्छा लगता है तो तुम्हें ठंडा, मुझे स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है तुम्हें लाइट, मुझे गुलाबी रंग पसंद है तुम्हें हल्का हरा, मुझे हिंदी पिक्चर में आनंद आता है तो तुम्हें अंग्रेजी में। इस तरह मेरा तुम्हारा निभा होना कठिन है। मुझे मेरे मैकेन भिजवा दो और तुम अपनी मनमानी किया करो।
0: हाँ हाँ, चलो छोड़ आता हूँ, बात बात में तुम्हारी जिद मुझे अच्छी नहीं लगती।
1: तो ब्याह कर क्यों लाए थे मुझे, जब मेरे स्वभाव से तुम्हारा स्वभाव नहीं मिलता था?
0: किसी के स्वभाव का पता तो उसके व्यवहार करने पर ही चलता है। काश के कोई ऐसा यंत्र होता जिससे विवाह से पूर्व पति पत्नी के स्वभाव की रूपरेखा एक दूसरे को पता चल जाती।
2: तो देखा आपने, आज प्रायः प्रत्येक गृहस्थ दुखी है, कारण कि लाख जन्म पत्रियां मिलाने पर भी पत्नी और पति एक जैसे गुण व स्वभाव वाले नहीं होते। मेरा विवाह यंत्र इस प्रकार के विवाहों की रोकथाम करने में सहायक होगा।
3: अब हमारी उत्सुकता और अधिक न बढ़ाओ शांति दत्त जी, हमें तुरंत अपना विवाह यंत्र दिखाओ।
2: क्यों, क्या भाभी से तुम्हारी खटपर रहने लगी?
3: बस पूछो मत भैया, जनसेवा के बहाने बचता फिरता हूँ ग्रह कलह से। क्यों बंधु, कोई ऐसा यंत्र भी बना रहे हो जिससे विवाहितों का भी कुछ कल्याण हो?
2: इस समय विवाहितों की अपेक्षा कुमारों की समस्या अधिक चिंताजनक है। जिस युवक या युवती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखो वो इनकार कर देता है। वैवाहिक जीवन के भाषण कांड देखकर लोग विवाह से भागने लगे हैं, इसलिए पहले मैंने ऐसे विवाह यंत्र का आविष्कार किया है जिसे युवक और युवतियां अपनी अपनी रुचि के अनुसार अपना जीवन साथी चुनकर सुखी रह सकें। ये देखो, ये है विवाह यंत्र।
3: यार, ये विवाह यंत्र है या वजन तोलने की मशीन?
2: तुमने ठीक समझा, वजन तोलने की मशीन में ही कुछ संशोधन करके मैंने विवाह यंत्र का आविष्कार किया है।
3: वो कैसे भाई?
2: जेब से एक रुपया निकालो। हाँ, अब इस मशीन पर खड़े हो जाओ। देखो, जब ये सुई घूमना बंद कर दे

0: इस सुराख में ये रुपया छोड़ देना।
1: अरे ये कार्ड कैसा?
0: ये केशव सुत जी की होने वाली पत्नी का विवरण पत्र है। इसके द्वारा कुमारी जी का फोटो देखो, क्यों पसंद है ना बहू केशव सुत?
2: हाय हाय हाय, हम कमाल कर दिया तुमने तो शांति दत्त, सचमुच अपने लिए ऐसी ही पत्नी की कल्पना की है मैंने।
0: तो चित्र के नीचे लिखे पते पर इनसे भेंट कर सकते हो।
2: है? क्यों मजाक कर रहे हो शांति, चौराहे पर पिटवाने की सलाह है क्या?
0: नहीं भाई नहीं, ये देवी जी तुम्हारे गले में जयमाल पहनाएंगी।
1: अरे क्यों चक्कर में डाल रहे हो बेचारे को, बात खोल कर समझा दो।
0: बात अत्यंत सरल है जनसेवक, विवाह के इच्छुक युवक युवतियों के चित्र कार्ड जिन पर उनकी अवस्था विवरण ठीक वजन ऊंचाई मोटाई शिक्षा अभिरुचि विशेष गुण आदि का विवरण लिखा हुआ है, इस मशीन के भीतर एक खास हिसाब से रख दिए गए हैं। किसको कौन सा वर उपयुक्त होगा इसका सार ये यंत्र निकालता है।
1: वो कैसे भाई?
0: सुनो, मेरी धारणा है कि मनुष्य की सभी भावनाएं तरंगों के रूप में उसके मस्तिष्क में घूमती रहती हैं। जब वो एकत्रित होकर किसी एक बात पर विचार करता है तो उसकी दूसरी निर्भर भावनाएं इधर उधर बिखर जाती हैं और उसकी सारी शक्ति उस एक वस्तु पर केंद्रित हो जाती है जिससे उसके मन पटल पर उस वस्तु का आकार बन जाता है जिसे वो प्राप्त करना चाहता है। जब कोई व्यक्ति इस विवाह यंत्र पर खड़ा होता है उस समय उसकी भावना तरंगों की शक्ति से मशीन में लगा हुआ ड्राई फ्रेम छुपा हुआ सुकोमल है तरंगित होता है और जिससे वो सुई घूमती है। अब जहां उसकी कल्पित प्रियसी का चित्र कार्ड लगा होता है वहां जाकर ये सुई अटक जाती है। रुपया डालने से कार्ड के बाहर आने की विधि तौलने की मशीन की भांति है।
2: जियो शांति जियो, सचमुच तुमने समाज की एक बहुत विकट समस्या का समाधान कर दिया। मैं तुरंत ही अपनी पत्रिका का विशेषांक निकालूंगा और तुम्हारे इस विवाह यंत्र को प्रसिद्ध करके जनता की सेवा करूंगा।
3: भाई कमाल का यंत्र निकाला है,
4: समाज की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया है। अब लड़के लड़कियों को विवाह करने से इनकार ना होगा।
5: अब माँ बाप को कन्याओं को विवाह की चिंता न रहेगी, वर के लिए दर दर की ठोकरें न खानी पड़ेगी।
4: साहब अब घर घर में आनंद छा जाएगा
5: और घरों की अशांति प्रसन्नता में बदल जाएगी।
6: अरे बेटी है ना? तुम तो पगली हुई हो बेटी, भला रोना क्यों? हमें प्रसन्न होना चाहिए कि हमें इधर उधर मारे मारे फिरना नहीं पड़ा।
7: पिताजी।
6: और तुम्हें पति भी तुम्हारी रुचि के अनुकूल ही मिला, ऐसा पति जिसका आज विज्ञान जगत में बड़ा नाम है, जिसने आज विज्ञान के चरण जन सेवा की ओर मोड़ दिए। नहीं बेटा तुम्हें रोना नहीं चाहिए।

0: पिताजी पिताजी
1: क्या है?
0: मुझे भूख लगी है ना।
1: तेरा सर तो नहीं फिर गया? मैं खाना दूंगा तुझे, जा अपनी माँ से मांग।
0: माँ संगीत का अभ्यास करी है पिताजी।
1: तो बस चल चुकी गृहस्थी, इधर बाप गाना गा रहे उधर माँ तंबोरा लिए बैठी है। अजी मैंने कहा सुनती हो, ये माधुरी खाना मांग रही है
2: तो दे दो ना उठकर।
1: तुम्हारा दिमाग तो अपनी जगह पर है, यानी कि अब मैं मिश्रा का काम करूंगा।
2: क्या मैं ही मिश्रानी बनी रहूंगी? मैं आपसे कुछ कम हूँ क्या किसी बात में?
1: तो हो जाने दो गृहस्थी बर्बाद, यहाँ तो ख्याल पूरा करके ही उठेंगे। अरे माधुरी तू थोड़ी देर और खेला जा, भाग चल।
0: मुझे भूख लगी
3: लगता कर चाट चाट लगता कर।

बहुत परेशान है मैडम तुम्हारा नौकरी से। हम बोलता है डॉक्टरी छोड़ कर घर बैठो, हमारा खुद का प्रैक्टिस बहुत अच्छा चल रहा है, घर का सारा अरेंजमेंट अपसेट हो गया है, लंच का

0: ब्रेकफास्ट मिलता है और डिनर का टाइम लंच।
1: अरे मुन्नू, ओ मुन्नू, डॉक्टर साहब आ गया है।
0: 2 घंटा मेरे को आए हुआ, सारा पेपर पढ़ लिया, आधा घंटा आराम भी कर लिया। देखो मैडम, खाना लाओ, अभी इस घर में एक ही डॉक्टर रहेगा।
1: क्या मतलब है आपका?
0: आई मीन टू से, या तुम डॉक्टरी करो या मैं। देखो घर का क्या हालत हो गया है, नौकर लोग घर का काम नहीं कर सकता है।
1: तो तुम ही विवाह निमंत्रण, आई मीन मैरिज इनविटेशन लेकर आए थे हमारे पिताजी के पास और बोलते थे हम डॉक्टर है और हमारा पत्नी भी लेडी डॉक्टर होना चाहिए, तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: अरे हम खुद गया था तेरा पिता के घर, ना ना ये विवाह यंत्र हमको फंसा दिया।
1: अच्छा तो ठीक है, विवाह यंत्र के पास जाकर बोलो हम डॉक्टरी नहीं छोड़ेंगे। अरे मुंडू, मुंडू, ओ मुंडू, ओ माय गॉड, बक्सा खुला पड़ा है, किधर गया मुंडू? मुंडू हमारा पर्स भी खुला है, ओ माय गॉड, डॉक्टर, डॉक्टर, मुंडू हमारा पर्स और ज्वेलरी बॉक्स लेकर चला गया।
0: जब डॉक्टर और लेडी डॉक्टर का आपस में शादी होगा बस फिर ये होगा।
2: मैंने कहा ये रैकेट घुमाती किधर चली मेरी चपला?
3: खेलने।
2: और घर?
3: घर वाले के सर।
2: अरे सुनो तो, आज घर में मेहमान आने वाले हैं।
3: तो मैं क्या करूं? तुम जो इंडिया नंबर 1 के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मुझे भी तो लेडीज चैंपियनशिप के लिए हाथ का घुमाव ठीक करना है।
2: अरे भाई, पर मेहमानों के लिए चाय पानी का प्रबंध कौन करेगा?
3: अरे भाई आप जो है घर में, टाटा।
2: अरे
3: बाय बाय।
4: अरे यार, ये रेस्टोरेंट तो खूब चल निकला।
5: ये विवाह यंत्र का चमत्कार है भाई साहब।
4: क्या मतलब?
5: घरों के चूल्हे ठंडे पड़े होंगे तो रेस्टोरेंट चलेंगे ही।
4: तो क्या तुम्हारी अभी आज रोटी नहीं पकी?
5: आज ही नहीं पकी यार, 1 महीने से यही हाल है।
4: क्यों, भाभी को क्या पीहर भेज दिया है?
5: नहीं है तो यही, उन पर आजकल कहानी लिखने का भूत सवार।
4: भाई खूब, बहुत खूब, क्यों नहीं, पति जब कभी है तो पत्नी को पीछे रहे।
6: ओहो, यंत्र यंत्र यंत्र, अब यंत्र ही बनाती रहोगी या घर गृहस्थी भी संभालोगी? अरे भाग्यवान, दाल चूल्हे पर पड़ी पड़ी जलकर कोयला हो गई और तुम्हारा अध्ययन ही समाप्त नहीं होता, अब रोटी कहाँ से खाएंगे?
7: तो जली दाल से ही खा लेना, मुझे अपना यंत्र शीघ्र पूरा करना है।
6: तुम पागल तो नहीं हो गई हो हेमा? विवाहितों को अविवाहित कैसे करोगे तुम यंत्रों से?
7: तुम्हारे विवाह यंत्र से बेजोड़ विवाह रोके जा सकते हैं, तो क्या मेरे विवाह तोड़ यंत्र से वो गठबंधन टूट नहीं सकते?
6: पर मुझे समझाओ तो ये कैसे संभव होगा?
7: जो पति या पत्नी एक दूसरे से निभाव न कर सकेंगे, उनको इस लोहे के संदूक में बिठाकर बिजली का बटन दबा दिया जाएगा।
6: ये तुम क्या कह रही हो हेमा, तुम होश में तो हो? वैज्ञानिक होकर तुम मानव के विनाश पर तुली हो।
7: मानव जब स्वयं अपने विनाश पर उतारू है तो विवाह यंत्र तोड़ दो, वैज्ञानिक क्या करेगा? सुनो, तुम्हारे विवाह यंत्र ने समाज की जो दुर्दशा की है, इससे समाज को मुक्ति दिलानी होगी।
8: अरे भाई शांतिदात्त, शांतिदात्त, जल्दी से दरवाजा खोलो।
6: क्यों, क्या हुआ?
8: अरे तुम्हारे विवाह यंत्र ने सब मामला ही चौपट कर दिया, एक जैसे पति पत्नी होने से तो समाज का ढांचा ही बदल गया।
6: अब क्या होगा, जन समूह तो बहुत निकट आ पहुंचा। हाय मेरे समाज सुधारक यंत्र,

विवाह यंत्र, अभी आपने इस प्रहसन का दूसरा और अंतिम भाग सुना। इसके लेखक एन आर टंडन, निर्देशक मुख्तार अहमद। विविध भारती की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर।

0: और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: ये आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz ते।
6: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
7: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
8: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
5: श्रोतियों, पेश है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम फार्म टू सिटी।

0: इस प्रोग्राम दे प्रोजेक्ट ने खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार।
1: किसान वीरो आओ कुदरत नाल मिलके खेती करिए, कुदरती खेती अपना के मिट्टी दी सेहत संभालो, पानी दी बचत करो, अति टिकाऊ खेती वाल कदम बताओ। सिखलाई तकनीकी मार्गदर्शन अते होर जानकारी ले अपने नेड़ले खेतीबाड़ी विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र या खेतीबाड़ी अते किसान भलाई मंत्रालय दिया सेवावां नाल संपर्क करो। कुदरती खेती अपनाओ, सेहतमंद मिट्टी दे नाल खुशहाल किसान बनाओ। जनहित विच जारी खेतीबाड़ी अते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार।
2: नमस्कार ते सत श्री अकाल प्यारे दोस्तो, प्रोग्राम फार्म टू सिटी लैके मैं बिपन सुमन हाजिर हाँ। अज का शहरी नौजवान सवेरे 7 बजे उठता है, एसी कमरे, ट्रैफिक, मैट्रो, लैपटॉप, दिन भर स्क्रीन अते रात नूं फिर स्क्रीन, पिंड, खेत, दरख्त, पंछी, सब कुछ छुट्टी वाले दिन लई रह गए हन। पर की तुहानूं पता है साडी भारत सरकार अते पंजाब सरकार ने अजिहियां बहुत सारियां ऐप्स अते AI टूल बनाए हन जो उसे मोबाइल राहीं तुहानूं वापस कुदरत दे नाल जोड़ रहे हन। जी हाँ, हुण टैक्नोलॉजी दुश्मन नहीं सगों कुदरत अते नौजवानां विचकार पुल बन गई है। अज असीं गल करांगे उन्हां सरकारी ऐप्स अते AI बारे जो खास तौर ते शहरी नौजवानां लई बनाईआं हन। शहर दी सब तों वड्डी समस्या है प्रदूषण। नौजवान नूं पता ही नहीं हुंदा कि बाहर दी हवा किन्नी खराब है। बहुत सारियां ऐप दे विचों कुछ ऐप्स असीं अज तुहाडे नाल सांझियां करांगे। पहली ऐप है सफ़र एयर, यानी कि सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वैदर फोरकास्टिंग। यह भारत सरकार दे धरती विज्ञान मंत्रालय की ऐप है। इसका काम की है, साडे अपने शहर जिमें लुधियाने, चंडीगढ़, दिल्ली की AQI यानी एयर क्वालिटी इंडैक्स नू रियल टाइम विच दसना। AI मौसम दे नाल नाल यह भी भविखबाणी करता है कि अगले 3 दिन हवा किवें रहेगी। हुण इसका नौजवानों लई की फायदा, जे AQI खराब है तो ऐप अलर्ट भेजती है, अज जॉगिंग बाहर ना करो, घर विच पौधे लगाओ। इस नाल नौजवान नू समझ आउंदी है कि दरखत क्यों जरूरी हैं। इस दी विशेषता की है कि इस विच हेल्थ एडवाइजरी भी आउंदा है कि अस्थमा वालियां नू इस समय की सावधानी रखनी चाहिए है।

0: कृषि ते किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित विच जारी।
1: हुण गल करदे आं जंगल जंगली जीव अते बायोडाइवर्सिटी वालियां ऐप्स दी। इन्हां दे विच एम आधार वांग एम पार्क्स ऐप भारत सरकार दे वातावरण मंत्रालय दी इह एप्लीकेशन बनी हुई है, जिसका काम है देश दे सारे नैशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी जानकारी देना। टिकट बुकिंग, रस्ता, नियम सब कुछ इस विच जुड़िया होया है। इस विच तुसी जानवर दी फोटो या आवाज़ भी रिकॉर्ड करो तां एआई तुहानू दसेगा कि यह हिरन है, लूमड़ी है जां चीता। नौजवानों लिए वीकेंड ते डिजिटल सफारी प्लैन करके तुसी इस एप्लीकेशन का आनंद माण सकते हो। पंजाब तो नौजवान हुण रणथंबोर जिम कॉर्बेट ऐप राही भी बुक कर सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत का पांचवां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1100 से अधिक हुई। लगभग 5000 लोग अब भी लापता। रिजर्व बैंक ने कहा, अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर का प्रवाह हुआ। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की मेजबानी करेगा। भारत का पांचवा विमान राहत और बचाव सहायता लेकर आज नेपाल पहुंच गया। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1127 हो गई है, जबकि लगभग 4900 लोग अब भी लापता हैं। बचावकर्मी मूसलाधार वर्षा और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने आज संसद में बताया कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु खतरों की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभावों को कम करने की जिम्मेदारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमेरिका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। श्री शाह ने विनाशकारी बाढ़ के प्रति भारत की त्वरित प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद व्यक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को FCNRB जमा, ECB और OFCB के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की थी। रुपए की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित ये सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण एक महीने के लिए कम कर दिया गया। अब FCNRB जमा के लिए ये योजना बंद कर दी गई है, जबकि ECB और OFCB के लिए ये सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा ने कहा है कि भारत में 7 से 8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बांगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अलनीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में श्री बांगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती दर्शाते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सकल घरेलू उत्पाद GDP आंकड़ों पर सवाल उठाने वालों की कड़ी आलोचना की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की GDP वृद्धि ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।
1: जब आप सच्चाई को तोड़ मोड़ करके लोगों का हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप विश्वासघात कर रहे हैं जनता के साथ। आखिर ये जो 7.8% का पाथ ब्रेकिंग रिकॉर्ड ग्रोथ दुनिया में और कोई देश नहीं दिखा पा रहा है, ऐसा तेजी से आर्थिक प्रगति ये कोई सरकार नहीं कर रही है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये देश के 140 करोड़ भारतवासियों का सामर्थ्य है।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री

0: बार्ट डी वेवर आज रात 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेवर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर श्री वेवर भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। एक रिपोर्ट।
1: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितम्बर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। उनके भारत डायमंड बोर्स के प्रस्तावित दौरे से द्विपक्षीय संबंधों में हीरा व्यापार के महत्व और इस क्षेत्र में आगे सहयोग की संभावनाओं को बल मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नामों की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंद का और शिकोहाबाद की रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मला यादव शामिल हैं। ट्रस्ट के अंतरिम जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन ने बताया कि ट्रस्ट के नए CEO एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाई थी। वे 30 अप्रैल 2026 को रिटायर हुए। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। श्री राम मंदिर में दान की चोरी के आरोपों के बाद CEO के चयन के लिए 6 जुलाई को 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। CEO के पद के लिए 5,500 से ज्यादा आवेदन मिले थे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल हुए। 2 दिन का यह सम्मेलन प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला का पहला सम्मेलन था। इसका उद्देश्य देश की टीम भावना को मजबूत करना, सहकारी संघवाद को प्रगाढ़ बनाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देना है। इस पहल ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर संयुक्त रूप से विचार विमर्श करने और कार्यान्वयन तथा परिणामों में तेजी लाने के लिए मंच प्रदान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों की इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने तथा 15 दिन के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती रेट कार्ड के

0: आधार पर की जा रही है।
1: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा आपके इशारों पर। जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कल तेज वर्षा होगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले दो दिनों में तेज वर्षा की आशंका है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बिगड़ रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि हुई है।
2: बिहार में गंगा नदी का पानी भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, पटना, बक्सर, भोजपुर और वैशाली समेत कई जिलों में निचले इलाकों में फैल गया है। भागलपुर जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि जिले में बाढ़ की स्थिति खतरनाक होने के बावजूद नियंत्रण में है। पटना के भद्रघाट, नौजर घाट और महावीर घाट पर गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सड़कों पर बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया है। सविता पारीख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: झारखंड में H1N1 स्वाइन फ्लू संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले 30 दिन में राज्य भर में कुल 36 रोगी मिले हैं। इनमें 18 बच्चे और किशोर शामिल हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: झारखंड में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रमुख अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने और संदिग्ध मरीजों की तत्काल जांच और उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रांची के रिम्स और जमशेदपुर के MGM अस्पताल में H1N1 और H3N2 की जाँच की आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गयी है। रिम्स के क्रिटिकल केयर विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। महेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: बंबई उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का आदेश दिया है। न्यायालय ने 6 वर्ष तक प्राथमिकी दर्ज न करने के लिए मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। न्यायालय की पीठ ने आज कहा कि उचित और ठोस जांच के लिए मामला CBI को सौंपना आवश्यक है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य सुरक्षा उपायों के बिना विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के अनुसार प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस सत्यापन, खरीदार पात्रता जांच और अनिवार्य सुरक्षा संबंधी जानकारी के बिना अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग सुविधा दी जा रही थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 374 अंक फिसलकर 76,570 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 141 अंक फिसलकर 23,914 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 1 अमरीकी डॉलर के मुकाबले 94.98 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। बलजीत कौर और स्काल जेंग रिगजिंग को भू साहसिक अभियानों, रेमो साहा को जल साहसिक अभियान और शिव प्रसाद चमोली को आजीवन उपलब्धि के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का ये टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। किदंबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने चीनी ताइपे के ची यू जेन को और तन्वी ने डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का 5वां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1200 से अधिक हुई।

0: 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। रिजर्व बैंक ने कहा, अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर का प्रवाह हुआ। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी और श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਕੇ ਲੀਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2: ਸੰਗੀਤ ਕੀ ਧੁਨ ਤਿਆਰ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਘਨਸ਼ਾਮ ਜੀ ਨੇ।

ठोकर फिल्म के इस गीत के बाद अब आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में चरित्रहीन फिल्म का गीत। इस गीत की शब्द रचना है आनंद बख्शी की और धुन तैयार की है राहुल देव बर्मन ने।

0: आचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी।
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावन इलवालर इवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंडाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वाज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: पालकी फिल्म से अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में गीत, जिसे लिखा है शकील बदायूं ने और धुन तैयार की है नौशाद ने।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ

0: 40 50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कोहरा फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं हेमंत कुमार की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं काफी आजमी ने और संगीत है हेमंत कुमार।

कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं कश्मीर की कली फिल्म से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने, शब्द रचना SH बिहारी की, धुन है OP नैयर की।

आइए अब आपको सुनवाते हैं पलकों की छांव में इस फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। गुलजार की शब्द रचना और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है गुमनाम फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और शारदा की आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल और संगीत शंकर जयकिशन का।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आइए आज प्रोग्राम में हम बात करते हैं हिंदी सिने जगत के सुनहरे दौर की बेहद खूबसूरत अदाकारा साधना की।

साधना का पूरा नाम था साधना शिवदासानी। साधना के पिता ने उनका नाम साधना इसलिए रखा क्योंकि वो उस दौर की एक्ट्रेस और डांसर साधना बोस के फैन थे। यहां मैं आपको ये भी बताता चलूं कि साधना के पिता फिल्म एक्टर हरी शिवदासानी के भाई थे और हरी शिवदासानी एक्ट्रेस बबीता के पिता यानी करिश्मा कपूर और करीना कपूर के नाना।

कराची में जन्मी साधना पार्टीशन के बाद अपने माता पिता के साथ बंबई यानी आज की मुंबई आकर बस गईं। यहाँ उनकी माँ ने उन्हें 8 साल की उम्र तक घर में ही पढ़ाया। उसके बाद वडाला मुंबई के ऑक्सिलियम कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल करा दिया और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की साधना ने जय हिंद कॉलेज चर्चगेट मुंबई से।

0: साधना के मन में फिल्मों में काम करने की इच्छा तो बचपन से ही थी और इसके लिए उनके पिता उन्हें बहुत सपोर्ट भी करते थे। बात है सन 1955 की, जबकि राज कपूर फिल्म श्री 420 बना रहे थे, तब उन्हें फिल्म के एक गाने में एक बच्ची की भी जरूरत थी। साधना के पिताजी ने इस रोल के लिए कोशिश की और साधना चुननी गई। श्री 420 फिल्म का आपको वो गीत सुनवाते हैं, ये रहा।
1: मुड़ मुड़ के

0: एक्ट्रेस नादिरा पर पिक्चराइज्ड इस गीत में साधना भी नजर आती हैं। एक्टिंग का शौक तो साधना को था ही, सो वो अपने कॉलेज के ड्रामों में भी पार्टिसिपेट किया करती थीं। ऐसे ही एक दिन एक ड्रामे में उन्हें किसी प्रोड्यूसर ने देख लिया और कास्ट कर लिया अपनी सिंधी फिल्म अबाना में। ये बात है सन 1958 की। इस फिल्म में साधना ने उस दौर की बहुत ही खूबसूरत और जानी मानी अदाकारा शीला रमानी की छोटी बहन का रोल किया था।
1: मैंने

ये जो गीत अभी आपने सुना ये था फिल्म अनीता का गीत जो साधना ने मनोज कुमार के साथ की थी। मनोज कुमार और साधना की एक और फिल्म जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता वो कौन थी? जी मैं फिल्म की ही बात कर रहा हूँ, यही उसका नाम है। और इस फिल्म का संगीत

साधना के करियर की ये सुपरहिट फिल्म थी। हालांकि साधना की हिंदी फिल्मों की पारी शुरू हुई फिल्म लव इन शिमला से, जिसे प्रोड्यूस किया शशधर मुखर्जी ने। उस समय एक एक्टिंग स्कूल भी शशधर मुखर्जी चलाया करते थे, उसमें साधना भी ट्रेनिंग ले रही थी और शशधर मुखर्जी के बेटे जॉय मुखर्जी भी उसी स्कूल में एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रहे थे। उस समय की बात है जबकि शशधर मुखर्जी को असिस्ट कर रहे थे आर के नैयर। उसी दौर में

0: एक एक्टिंग स्कूल भी शशधर मुखर्जी चलाया करते थे, उसमें साधना भी ट्रेनिंग ले रही थी और शशधर मुखर्जी के बेटे जॉय मुखर्जी भी उसी स्कूल में एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रहे थे। उस समय की बात है जबकि शशधर मुखर्जी को असिस्ट कर रहे थे आर के नैयर। उसी दौर में प्लान हुई फिल्म लव इन शिमला और डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी शशधर मुखर्जी ने सौंप दी आर के नैयर को। हीरो तय हुए जॉय मुखर्जी और हीरोइन साधना।
1: इधर आ गया,
2: घूम जा,
1: घूम गया,
2: मान जा,
1: मान गया।

लव इन शिमला फिल्म की शूटिंग से पहले का एक वाक्या आपको सुनाता हूँ। बात उस समय की है जब इस फिल्म के लिए साधना का लुक टेस्ट हुआ। अब आर के नैयर और यूनिट के कुछ और लोगों को लगा कि साधना का जो ये उठा हुआ माथा है यानी फोरहेड, ये इनकी खूबसूरती को कुछ कम कर रहा है। तब आर के नैयर ने ब्रिटिश एक्टर ऑड्री हेपबर्न के हेयर स्टाइल से इंस्पायर्ड होकर साधना के बालों को एक नया लुक दिलवाया। अब देखिए साहब, वो लुक इतना पसंद किया गया कि आज भी लड़कियां उसकी कॉपी करती हैं और वो लुक कहलाता है साधना कट।

हम बात कर रहे थे साधना कट बालों की। ऐसा नहीं है कि उस दौर में सिर्फ साधना की हेयर स्टाइलिंग को ही कॉपी किया गया। उस दौर की फैशन आइकन रही साधना। ये साधना ही थी जिन्होंने चूड़ीदार पजामा और कुर्ते का चलन शुरू किया जो आज तक फैशन में है। अब आपको सुनवाते हैं वो गाना जो हिंदी फिल्मों का आज तक का सबसे रोमांटिक गाना माना जाता है।

हम दोनों फिल्म का गाना साधना और देव आनंद पर पिक्चराइज हुआ, कभी भुलाया नहीं जा सकता, एक किंवदंती सा बन गया है। मोहब्बत करने वालों के बीच इस गाने की अपनी एक जगह है। खैर, यहाँ साधना की एक और उल्लेखनीय फिल्म का जिक्र बहुत जरूरी है जिसमें उन्होंने डबल रोल किया था, फिल्म मेरा साया। इस हिट फिल्म में साधना की जबरदस्त अदाकारी ने सभी का दिल जीत लिया और संगीत आज भी सुना जाता है।

0: दोस्तों, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, आज भी एक कहावत सी बन गई है और बेहद पसंद किया जाता है ये गाना। खैर साहब, हम बात कर रहे थे साधना की, जिन्होंने 7 मार्च 1966 को अपनी पहली फिल्म के निर्देशक आर के नैयर से शादी कर ली। अपने फिल्मी करियर में साधना ने फिल्म डायरेक्ट भी की, गीता मेरा नाम।
1: सुनिए

अब जिक्र साधना की कुछ उल्लेखनीय फिल्मों का, जिनके गीत शायद वक्त की कमी के कारण हम यहाँ आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं, लेकिन उन फिल्मों का जिक्र जरूरी है क्योंकि उनके गाने सुपर डुपर हिट हैं। चलिए हम कोशिश करेंगे आपको इन फिल्मों के गीतों की झलक सुनवाने की। एक फूल दो माली,

0: मस्ताना।
1: अपने जीवन के आखिरी समय में साधना अकेली हो गई थी और बीमार भी रहने लगी थी। 25 दिसंबर 2015 को मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन फिल्मों से उनका जो लगाव, प्यार और समर्पण था वो शायद इस गीत में व्यक्त हो रहा है।

0: तो दोस्तों, अभिनेत्री साधना पर केंद्रित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। रमेश गोखले द्वारा प्रोड्यूस इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख और स्वर अमरकांत का। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: धरती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, जीवन एक अधूरी कविता सा है ना? ये अधूरापन मन को सालता है, लेकिन लगातार आपका पीछा करता रहता है। कुछ लफ्ज अधूरे रह जाते हैं, कुछ ख्वाब, कुछ सपने, तो कभी कुछ मुलाकातें भी। हाँ, कुछ इश्क अधूरा रह जाता है, और तब कुछ आप अधूरे रह जाते हैं। हाँ, तब कुछ आप अधूरे रह जाते हैं।
1: तेरे बिना जी

जब मेरी किताब छपेगी ना तो लोग पढ़ेंगे तुम्हारी हंसी की कहानियां, तुम्हारी नाराजगी के किस्से, तुम्हारी बेरुखी की दर्दनाक गाथाएं और हाँ तुम्हारी बेवफाई भी। पर कोई नहीं पढ़ पाएगा मेरा वो खालीपन, वो अधूरापन जिसे मैं हर पल महसूस करती हूँ तुम्हारी।

कभी रात के सन्नाटे में जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब अधूरी कहानियां जेहन में तैरने लगती हैं। कहते हैं अधूरी मोहब्बत पूरी मोहब्बत से कहीं ज्यादा गहरी होती है। शायद इसीलिए अधूरी कहानियां जिंदगी की किताब में सबसे गहरी लकीर छोड़ जाती है।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती, वे टुकड़ों में मौजूद होती हैं। एक वाक्य अधूरा छूट जाता है, एक कथानक छूट जाता है, और कभी कभी एक नोटबुक अधूरे विचारों से भर जाती है। हाँ, हमें सिखाया जाता है कि हर कहानी का अंत होना चाहिए, पात्रों को अपने अंत तक पहुंचना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। ये पात्र अपने अधूरेपन के साथ पड़े रहते हैं, चुपचाप किसी कागज के कोने में, दिनों, महीनों और कभी कभी तो जीवन भर।

बिसरी हुई अधूरी याद, मुलाकात, चरागाह में खो गई गाय है, हाँ, जो रास्ता तलाशती हुई एक दिन आ जाती हैं वापस। कोई बिसरी हुई अधूरी याद, मुलाकात, चरागाह में खो गई गाय हैं, जो रास्ता तलाशती हुई एक दिन आ जाती हैं वापस, और बंद दरवाजों के बाहर रंभाती हैं। पर धीरे धीरे ये रंभाना सुनाई नहीं देता है। अपने अधूरे होने का एहसास या अधूरेपन का दर्प जिद्दी बना देता है मन को। तब मन टस से मस नहीं होता अपनी जगह से।

आज जब किताबों की अलमारी खोली तो सामने आई किताब गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती का ये उपन्यास हमने मिलकर पढ़ा था, याद है? तुम्हें कहाँ याद होगा। हाँ, आज फिर एक बार उस अधूरे प्रेम के लिए दिल भारी हो गया है। इश्क का वो पहला खत कभी फाड़ा नहीं गया मुझसे। वो प्रेम, वो जुड़ाव, वो बेबसी हर शब्द जैसे आज भी सांस ले रहा है। अपनी अधूरी प्रेम कहानी की याद दिलाता है ये खत। और हाँ, तब मन को समझा लेती हूँ ये सोचकर कि हम सब अधूरे होते हैं एक आस में।

त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, वीको टर्मरिक क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ की जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तुमका। जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी, 1000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। 5-25 सितंबर नू लकी ड्रॉ होवेगा, आज ही खरीदो। TNC अप्लाई।
5: श्रोतियों ब्रेक तो बाद लेके आए हैं जी आया नू फिल्म दा गीत। आवाजा ने अनुराधा पौडवाल ते हरभजन मानतियां।

0: ਸਰੋਤਿਓ ਇਸੀ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ।
1: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
1: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
2: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
1: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
3: नवो अखियां रूहानी कहीं, नवो चेहरा नूरानी कहीं,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
3: जग खुना थार जैसा ना कोई,
2: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाए।
1: चले आए आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 0601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172
2: और हमारा ईमेल आईडी है akashwanichandigarh@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में पानी की जरूरतों सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने आज जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने अधिक से अधिक जल बचत तकनीक अपनाने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने दो दिवसीय गहन विचार विमर्श की सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि ये सम्मेलन एक बार की कवायद नहीं रह जानी चाहिए, बल्कि निरंतर समीक्षा और आगे की भी कार्रवाई होनी चाहिए। श्री मोदी ने जनभागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि लोगों में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जल उत्सव आयोजन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। श्री मोदी ने बांध सुरक्षा के लिए प्रत्येक मानसून से पहले ठोस तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और शैक्षिक पाठ्यक्रमों में उपयुक्त रूप से शामिल स्कूली छात्रों के बीच जागरूकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में जल प्रबंधन और इसके प्रशासन से संबंधित ज्ञान और क्षमता मजबूत बनाने का आह्वान किया। भारत का पांचवा विमान राहत और बचाव सहायता लेकर आज नेपाल पहुंचा। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,200 से अधिक हो गई है, जबकि 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। बचाव कर्मी मूसलाधार बारिश और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने आज संसद में कहा कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु जोखिम की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभाव को कम करने की जिम्मेवारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमेरिका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को FCNRB जमा ECB और OFCB के निवेश को सम्मिलित करने वाले विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की। रुपये की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित यह सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण एक महीने के लिए कम कर दिया गया। अब FCNRB जमा के लिए यह योजना बंद कर दी गई है, जबकि ECB और OFCB के लिए सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री वार्डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेवर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नाम की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंदका और शिकोहाबाद के रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉ. निर्मला यादव शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का ये टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और बड़ोदरा में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 11:05 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ